मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर, और एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 5 जून 2026। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार समय हुआ है प्रातः के 5:58 और 17 सेकंड। अब हमारे आज के प्रसारण आरंभ होते हैं।

0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही क्षणों के बाद आप सुनेंगे समाचार। समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। समाचारों के तुरंत बाद एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रमों का रिले किया जाएगा।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए

0: वेल से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन। चुनौतियां भी मुस्कुराकर अपनानी चाहिए, क्योंकि चुनौतियां मनुष्य को मजबूत बना देती हैं। ये था चिंतन। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से अब श्रोता सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

प्रभु की कृपा जब भक्तों पर होती है तो भक्तों के सभी कष्ट सभी दुख दूर हो जाते हैं, मन आनंदित हो जाता है। प्रभु के चरणों में और प्रभु की सेवा में लीन होकर भक्त अपना मनुष्य रूपी जीवन सार्थक कर लेते हैं।

मनुष्य का मन जब प्रभु की भक्ति में लग जाता है तो कोई भी सांसारिक वस्तु किसी तरह की मोह माया उसे आकर्षित नहीं कर पाती, क्योंकि मनुष्य अपना पूरा जीवन प्रभु की भक्ति में न्योछावर कर देता है और ऐसा करके ही वो इस संसार रूपी भवसागर को पार कर मोक्ष की प्राप्ति करता है।

ईश्वर की महिमा अपरंपार है। प्रभु की दया का हाथ जब अपने भक्तों के सिर पर पड़ता है तो उनके कष्ट अपने आप ही दूर हो जाते हैं। प्रभु की भक्ति में मन को अपार सुख मिलता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा दैनिक आयोजन श्री रामचरित मानस गान।

श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता को वन की राह पर बढ़ते देख वनवासियों के द्रवित हृदय में स्नेह, श्रद्धा और सद्भाव उमड़ पड़ते हैं। ऐसे सुकुमार शरीर वाले वन के कठिन मार्ग पर कैसे चलेंगे? इनके कोमल रक्ताप चरणों के स्पर्श से धरती वैसे ही सकुचा जाती है जैसे वनवासियों के हृदय सकुचा रहे हैं। विधाता को यदि इन्हें वनवास ही देना था तो इनकी राह में फूल क्यों नहीं बिछा दिए? यदि सृष्टिकर्ता से मांगे मिल जाए तो वनवासी उन्हें अपनी आंखों में बसा लें। श्री राम के दर्शन के लिए गांव गांव के लोग खींचे चले आते हैं। कुछ लोग ऐसे सुकुमारों को वनवास देने वाले राजा रानी को दोष देते हैं तो दूसरे राजा की इस बात के लिए प्रशंसा करते हैं कि ऐसा करके उन्होंने राह घाट के लोगों को श्री राम के दर्शनों का सुअवसर प्रदान किया। धन्य हैं वे माता पिता जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, धन्य है वो नगर जहां से ये आए हैं, और धन्य हैं वे पर्वत, वन, गांव और ठौर जहां ये जा रहे हैं। आगे श्री राम और पीछे लक्ष्मण, तपस्वी वेश में इन दोनों के बीच सीता वैसे ही सुशोभित हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया होती है।

0: आप सुन रहे थे हमारा दैनिक आयोजन श्री रामचरित मानस गान। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि की बातें।
1: किसान बहनों और भाई राम राम। भाई कृषि की बातें मत जिक्र करेंगे इस मौसम में, भाई बागा में करने वाले कृषि कार्य के बारे में। भाई जो गर्मी का भी नाम चल रहा है, कृषि और भाई बागवानी खातर जो बहुत गर्म मौसम है वो भी चुनौतीपूर्ण है। इस समय में तेज धूप, लू, हीट वेव जिसने हम कहते हैं, इससे भी फला में बगीचा में आम, अमरूद, नींबू जितने भी हमारे भाई बाग हमने लगा रखे हैं, उन भी तेज लू तो बचाने खातर भाई हमने इसमें काम करना पड़ेगा। इसके लिए भाई नियमित रूप से जो सिंचाई है उसका हमने ध्यान रखना पड़ेगा। भाई फल और जो बगीचे हैं तेज धूप और लू तो बचाने खातर इस महीने में बागवानी से जुड़े बहुत जो जरूरी काम हैं, तरीके हैं, वो हमने इसमें अपनाने पड़ेंगे। जिसमें भाई पहला हमने जिक्र करा सिंचाई का। भीषण जो गर्मी पड़ रही है इसके कारण जो हमारे पेड़ हैं, पानी की सबसे ज़्यादा इस मौसम में भी जरूरत पड़े है, पानी हम नियमित रूप से सिंचाई करते रहें। आम, अमरूद, लीची, नींबू, पपीता जिसे जो हमारे फलदार

0: है, 7 से 10 दिन के अंतराल पर भी हमने सिंचाई करते रहना है। मिट्टी में हमने नमी बनाए रखनी है। नमी बनाने खातर पेड़ा की जो जड़ है उनके पास सूखी जो पत्ती है या पुआड़ है उनकी परत हम बिछा सके हैं। इसके बाद भाई बात हम करा कि भाई जो बूंद बूंद सिंचाई है, टपका जो सिंचाई है, यदि संभव हो तो भाई ड्रिप इरिगेशन जो सिस्टम है उसका उपयोग करें ताकि जो पानी है उसकी बचत हो जाए और भी जो वाष्पीकरण है वो भी कम हो। इसके बाद भाई जो फलों की तुड़ाई है और उनकी छटाई है उसका भी हमने पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। आम है, लीची है, इस तरह के जो फल हैं पकड़ का समय भाई आमतौर पर आ जाए है तो उनका भी सही समय पर तुड़ाई करें, छटाई करें और फिर हमने जो है बाज़ार में लेके जाना है। लीची का जो फल है इसमें भाई जो फल फटने की जो समस्या है वह इस मौसम में समस्या आम हो जाए, इसकी बचाव के लिए पेड़ और जो फलों के गुच्छे हैं उन पर भाई हल्का सा जो पानी का छिड़काव है वो हमने इसमें करते रहना है। और भाई जो नए बाग लगाए हैं गड्ढे खुदाई कर लें, बारिश का मौसम से पहले जो नया बगीचा आपने लगाना है उसके लिए हम गड्ढे की जो खुदाई का काम है वो पूरा कर लें। और भाई जिन भाइयों का मन है नया बाग लगाने का उसके लिए जो मिट्टी की जांच है 6 मीटर की गहराई तक जो मिट्टी की जांच है वो हमने करनी है। हर एक सतह का नमूना लेके जिला स्तर पर जो भी बागवानी विशेषज्ञ हैं उड़म सलाह ले सके हैं, नहीं तो भाई जो अपना चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार का जो भाई मृदा विज्ञान विभाग है उड़े इसका जो नमूना ले जाके हम मिट्टी की जांच करा सके हैं। उसी का आधार पर कौन सा हमारा एरिया है, किस तरह के जो बाग हम लगा सके हैं और किसे हमारा मौसम का अनुकूल हमने फायदा देंगे इन सब की भी जानकारी मिलेगी। भाई कीट और रोग नियंत्रण की हम बात करा, इस भाई गर्मी के मौसम में एफिडस, थ्रिप्स और जो मीली बग जैसे कीट है उनका प्रकोप भाई बढ़ जाए है। पेड़ा की जो पुताई है यानी कि तना के आसपास फंगस से बचाने खातर पेड़ा के जो निचले हिस्से हैं उन पर बोर्डो पेस्ट या फिर भाई चूने का लेप हमने इसमें लगाना है। और भाई दवाई का छिड़काव हम करें तो जरूरी है कि भाई जो बागवानी विशेषज्ञ हैं उन तक मिलके और उसका आधार पर जो कीटनाशक का छिड़काव है वो हमने बाग में करना है। गर्म हवा से बचाने खातर भी बाग के चारों तरफ हवा रोकने वाले जो पेड़ हैं जिस तरह की शीशम है, जामुन है, उनकी कतार होना जरूरी है। और भी इसके अलावा यदि पानी का हम छिड़काव करें शाम के टाइम पे तो छोटे पौधे हैं लू से बचाने खातर शाम के समय पे हल्की सिंचाई हम कर दें और फुहारा सिस्टम से यदि पत्ता पर भी हम पानी देते हैं तो इससे जो हमारे पौधे हैं वो भी छोटे मोटे जो कीट पतंगे हैं वह भी इसमें नष्ट हो जाएंगे और अच्छा एक लू से बचाने का बढ़िया पानी का छिड़काव भी माना गया है। और भी जो हमने नए बाग लगा रखे हैं शुरुआती दौर से जो हमारे पौधे हैं उन हम सावटी का सारा इसमें दें।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि की बातें, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ क्षणों के बाद आप सुनेंगे समाचार। समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज ही दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: योग भोग से भी मुक्ति देता है और रोग से भी मुक्ति देता है, और सबसे अहम बात कि मिनिमम बजट में हेल्दी लाइफस्टाइल का ये सबसे उत्तम उपाय है। इसलिए आपको ये मंत्र याद रखना है, हर रोज योग भगाएगा सारे रोग।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येवेट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने इसके विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा तथा शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की। दोनों नेताओं ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों तथा राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई शोध रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुकरण ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

शाम 7:10 पर सुनिएगा सरकार के 12 वर्ष पूरे होने से संबंधित विभिन्न विषयों पर एक विशेष श्रृंखला महिला सशक्तिकरण। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

प्रातः 7:25 पर होगा कार्यक्रम सुबह सवेरे और शाम 5:30 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युवा संसार।

शाम 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कृषि संबंधी समस्या व सुझाव विषय पर फोन इन कार्यक्रम। श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगी डॉक्टर मीनाक्षी सांगवान।

खेत खलिहान कार्यक्रम का समय रहेगा दिन में 2:30। इस कार्यक्रम में आज चारा फसलों की देखभाल विषय पर चर्चा की जाएगी।

एनसीईआरटी द्वारा तैयार प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा दिन में 12:30 पर, रात्रि 8:25 पर श्रोता सुनेंगे सुगम संगीत।

प्रातः 9 बजे होगा कार्यक्रम एक रंग। दिन में 1:10 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। फिल्म संगीत का समय रहेगा शाम 7:30 और रात्रि 9:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम एक फिल्म से।

0: ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है।
1: आकाशवाणी रोहतक से प्रस्तुत है गांधी चर्चा।

ज्यों-ज्यों मेरे जीवन में सादगी बढ़ती गई, त्यों-त्यों रोगी के लिए दवा लेने की पहले से जो अरुचि थी वह बढ़ती गई। जब मैं डरबन में वकालत करता था, तब डॉक्टर प्राणजीवन दास मेहता मुझे देखने आई थी। उस समय मुझे कमजोरी रहती थी और कभी कभी सूजन भी हो जाती थी। उन्होंने इसका इलाज किया और उससे मुझे आराम हुआ। इसके बाद देश लौटने तक कोई कहने लायक बीमारी हुई हो इसकी याद मुझे नहीं। जोहन्सबर्ग में मुझे कब्ज रहता था और जब तब सिर दर्द हो जाता था। दस्त की कोई दवा लेकर तबीयत को संभाले रहता। खाने पीने में परहेज तो सदा ही रखता था, पर उससे मैं पूर्णतया व्याधि मुक्त नहीं हुआ। मन बराबर कहा करता कि विरेचनों से मुक्ति मिल जाए तो अच्छा हो। इसी समय मैंने मैनचेस्टर में नो ब्रेकफास्ट एसोसिएशन अर्थात कलेबा त्याग संघ की स्थापना का समाचार पढ़ा। लेखक की दलील थी कि अंग्रेज बहुत बार और बहुत खाते हैं, रात को 12 बजे तक खाते रहते हैं और फिर डॉक्टर के यहाँ भटकते फिरते हैं। इस उपाधि से छूटना हो तो सवेरे का नाश्ता अर्थात ब्रेकफास्ट छोड़ देना चाहिए। मैंने देखा कि ये दलील यद्यपि मुझ पर पूरी तरह नहीं लगती थी, फिर भी अंशतः लागू होती है। मैं 3 वक्त पेट भरकर खाता था और दोपहर की चाय भी पीता था। मैं कभी अल्पाहारी नहीं था। निरामिषाहार में और मसालों के बिना जो जो स्वाद लिए जा सकते थे मैं लेता था। मैंने सोचा कि मैं सवेरे का खाना छोड़ दूं तो सिर के दर्द से ज़रूर छुटकारा पा जाऊं। मैंने सवेरे का नाश्ता छोड़ दिया। थोड़े दिन खला तो ज़रूर, पर सिर का दर्द तो चला ही गया। इससे मैंने ये नतीजा निकाला कि मेरी खुराक ज़रूरत से ज़्यादा थी। कब्ज़ की शिकायत इस परिवर्तन से नहीं गई। कूने के कट स्नान का इलाज करने से थोड़ा आराम मिला, पर जितना चाहिए थे उतना नहीं। इसी बीच उस जर्मन होटल वाले ने किसी दूसरे दोस्त ने मुझे जूस्ट की रिटर्न टू नेचर अर्थात प्रकृति की ओर लौटो नामक पुस्तक दी। मैंने मिट्टी के उपचार के बारे में पढ़ा। सूखे और हरे फल मनुष्य की कुदरती खुराक है, इस बात का भी इस लेख में जोरों से समर्थन किया है। केवल फलाहार का प्रयोग तो मैंने इस वक्त नहीं किया, पर मिट्टी का इलाज तुरंत शुरू कर दिया और उसका मुझ पर आश्चर्यजनक प्रभाव हुआ। उपचार इस प्रकार था, साफ खेत की लाल या काली मिट्टी लेकर उसमें अंदाजे से पानी मिलाया, साफ पतले गीले कपड़े में लपेटकर पेट पर रखी और उस पर पट्टी बांधी। ये पुलटिस रात को सोते वक्त बांधता और सवेरे या रात को जब नींद खुलती तो खोल देता। इससे मेरा कब्ज जाता रहा। ये मिट्टी के उपचार मैंने उसके बाद अपने अनेक साथियों पर किए और मुझे स्मरण है कि शायद ही वे किसी पर निष्फल गए हों। देश में आने के बाद मैं ऐसे उपचारों के विषय में आत्मविश्वास खो बैठा। प्रयोग करने का, एक जगह जमकर बैठने का मुझे मौका नहीं मिला। फिर भी मिट्टी के और पानी के प्रयोग के विषय में मेरी जो श्रद्धा शुरू में थी लगभग वही आज भी है। आज भी मर्यादा के अंदर रहकर मिट्टी के उपचार खुद अपने ऊपर तो करता ही हूँ, अपने साथियों को भी काम पड़ने पर उसकी सलाह देता हूँ। अभी आपने मिट्टी और पानी के प्रयोग विषय पर गांधी जी के विचार सुने और अब प्रस्तुत है बापू का प्रिय भजन।

0: इसके साथ ही आज का गांधी चर्चा का अंक यहीं पर संपन्न हुआ।
1: गांधी चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मिट्टी और पानी विषय पर गांधी जी के विचार। वाचक थे यज्ञदत्त मिश्र। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे।

सुबह सवेरे कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को अनीता पाराशर का नमस्कार और आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।

श्रोताओं, यादों का मेला तो सच में ही बहुत खूबसूरत होता है। जब यादें हम याद करने बैठते हैं, कुछ बातों को, कुछ चीज़ों को, किसी जगह को, तो हम याद करते करते उसी माहौल में, उसी समय में दोबारा से चले जाते हैं और उन लम्हों को एक बार यादों के सहारे फिर से जी लेते हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो श्रोताओं, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हर वर्ष पर्यावरण की सुरक्षा हेतु विश्व भर में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। वर्ष 1973 में पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु इस दिन को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम है जलवायु कार्रवाई। जलवायु कार्रवाई के अंतर्गत अपने क्षेत्र या समुदाय में पर्यावरण संरक्षण की गतिविधियों में भाग लेना होगा। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की वेबसाइट के माध्यम से भी जानकारी ली जा सकती है और इससे जुड़कर अपने क्षेत्र में पर्यावरण संबंधी कार्य कर सकते हैं, अपने साथ और लोगों को जोड़कर जागरूकता फैला सकते हैं और एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। तो प्रकृति के साथ जुड़ें, लेकिन प्रकृति के साथ जुड़कर आप इसका फ़ायदा तभी उठा सकते हैं जब आप इसमें भागीदार बनेंगे, क्योंकि प्रकृति के साथ रहने का अर्थ है अपने जीवन को प्राकृतिक परिवेश, हरियाली और शुद्ध वातावरण के अनुकूल ढालना। ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, तनाव को दूर करता है, शांति प्रदान करता है, बीमारियों से दूर रखता है। प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने और उसके करीब रहने के बहुत सारे फायदे हैं। तो कम से कम दिन में 20 से 30 मिनट किसी पार्क, बगीचे या खुली जगह पर टहलें। पेड़ और पौधों के बीच बैठने से मानसिक शांति मिलती है। तो पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी को बढ़ाएं और जगह जगह पर, जहां पर भी आपको जगह मिले, आप पेड़ पौधे लगाएं, उनका पालन पोषण करें, उन्हें बड़ा होता देखें। अपने लगाए पेड़ पौधों को जब हम बड़ा होता देखते हैं तो वही महसूस होता है जैसे हम अपने बच्चों को बड़ा होता देखते हैं, उन्हें दिन प्रतिदिन खिलता हुआ देखते हैं, उन पर नए नए फूल आते हुए देखते हैं। तो ये जो मनोहर दृश्य होता है, ये हमारे मन को बहुत ही प्रसन्न कर देता है और जब प्रसन्नता होती है तो तनाव कोसों दूर भाग जाता है। सुबह की धूप लें और अपने खिड़कियों में ताज़ी हवा आने दें। पेड़ पौधों से के आसपास जब हम रहते हैं तो हमें ताज़ी हवा मिलती है, लेकिन इन सब चीज़ों का फ़ायदा हम तभी उठा सकते हैं जब हम प्रकृति से जुड़ेंगे, पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देंगे, अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी फैलाएंगे कि पर्यावरण को संरक्षित रखना, उसे साफ़ सुथरा रखना हम सभी का कर्तव्य है।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: और श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे। श्रोताओं, आज 5 जून के दिन अवैध, अनधिकृत और अनियमित मत्स्य पालन के विरुद्ध लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य अवैध मछली पकड़ने, बिना रिपोर्ट किए गए शिकार और नियमों के उल्लंघन से समुद्री जैव विविधता, पर्यावरण और आजीविका को होने वाले नुकसान के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिन की स्थापना की गई थी और खाद्य एवं कृषि संगठन इसे प्रमुख रूप से आयोजित करते हैं। बिना लाइसेंस के मछली पकड़ना, प्रतिबंधित क्षेत्रों में शिकार करना और पकड़ी गई मछलियों का सही डेटा ना देना अवैध मछली पालन की श्रेणी में आता है।

और श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्कूलों की इस समय छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे घर पर ही हैं और खूब उधम मचाते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। या फिर मस्ती और उधम तक बात ठीक है, क्योंकि वो बच्चों का काम होता है। अगर बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो फिर बचपन खराब ही हो जाएगा। लेकिन आजकल बच्चे अपने बचपन को ठीक तरह से जी नहीं रहे हैं, क्योंकि आजकल बच्चों की जो रुचि है वो मोबाइल फ़ोन में बहुत ज़्यादा हो गई है, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। बच्चे बस ढूंढते हैं कि उन्हें फ़ोन मिल जाए और कहीं एक कोना मिल जाए, वहाँ उस कोने को पकड़ कर वो बहुत देर तक फ़ोन के साथ अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं, और फिर उन्हें किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। आजकल बच्चों का जो रूटीन है वो कुछ ऐसा हो गया है, लेकिन इसका बच्चों के स्वास्थ्य पर और उनकी मानसिक स्थिति पर, उनके कार्य कौशल पर बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों की छुट्टियों को उपयोगी बनाने के लिए उनसे रचनात्मक कार्य करवाएं, शारीरिक खेलों में उन्हें भाग दिलाएं, जिससे उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी हो, इस तरह के खेल उनसे खिलवाएं, बागवानी करवाएं, नई भाषाएं सीखने के लिए उन्हें प्रेरित करें, नई चीज़ें सीखने के लिए प्रेरित करें, और थोड़ा बहुत समय उन्हें अपने घर को साफ़ सुथरा रखने में, ख़ास तौर पर अपने कमरे को साफ़ रखने के लिए उन्हें प्रेरित करें, कि वो अपने कमरे में अपनी किताबों को, अपने जूतों को, अपने कपड़ों को सही तरह से रखना सीखें और अपनी छुट्टियों का सही इस्तेमाल करें। पढ़ाई के लिए भी समय निकालें, क्योंकि छुट्टियों में बच्चों का ध्यान पढ़ाई से थोड़ा सा हट जाता है, और फिर बाद में जब वो स्कूल जाते हैं तो बहुत समस्या आती है, क्योंकि पूरा एक महीना वो पढ़ते नहीं हैं और उसके बाद से फिर उन्हें याद करने में या चीज़ों को सीखने में मुश्किल आती है। तो बच्चों का जो पढ़ाई का जो समय है वो भी निर्धारित करें, खेलने का भी समय निर्धारित करें। और ऐसा भी होता है कि बच्चे अपनी दिनचर्या छुट्टियों में ख़राब कर लेते हैं, रात भर वो टाइम से सोते नहीं हैं, फिर टाइम से उठते नहीं हैं, और इसका नुकसान तब समझ में आता है जब स्कूल शुरू हो जाते हैं और उनका रूटीन तब तक पूरा खराब हो चुका होता है, तो उससे बच्चों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। तो हमें इन चीज़ों से बच्चों को बचा पाएँ, हम स्क्रीन टाइम कम करवा पाएँ, उसके लिए कुछ गतिविधियां हमें खुद बच्चों के साथ करनी होती हैं। अगर माता पिता बच्चों के साथ उनके

खेलों में रुचि लेंगे तो बच्चों की भी खेलों में रुचि बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ बच्चों को यदि पेंटिंग का शौक है, मिट्टी के खिलौने बनाने का शौक है, तो आप उसमें भी उनकी मदद कर सकते हैं या उनके साथ भागीदार बन सकते हैं। बागवानी करने के लिए बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब उनके पास उतना समय नहीं होता, लेकिन अगर आपके घर में छोटा सा बगीचा है तो आप उसमें बच्चों को रोज़ पानी देने की उनकी ड्यूटी भी लगा सकते हैं। आप उन्हें कह सकते हैं कि इस समय पर उन्हें रोज़ पौधों को पानी देना ही है। साथ ही साथ छोटे छोटे पौधे उनसे उनके हाथों से लगवाएं और उनका ध्यान रखने की जिम्मेदारी आप बच्चों पर डालें। अगर इस तरह की गतिविधियों में बच्चों की रुचि बढ़ जाएगी तो जो स्क्रीन टाइम है वो अपने आप ही कम हो जाएगा। बच्चे के द्वारा लगाए गए पौधे पर जब फूल आता है तो बच्चे को बहुत खुशी होती है और आगे उसको बागवानी में जो उसकी रुचि है वो बढ़ने लगती है, क्योंकि जब अपने द्वारा किए गए किसी काम का सकारात्मक परिणाम हम देखते हैं या बच्चा देखता है तो उसका प्रभाव भी सकारात्मक ही पड़ता है। साथ ही साथ अगर बच्चों की नृत्य में या संगीत जैसी कलाओं में रुचि है तो आप उसका मनोबल बढ़ाएं। इस तरह की क्लासेस उन्हें ज्वाइन करवा सकते हैं छुट्टियों में, जिससे उनका ये कौशल बढ़े। और अगर बच्चे टीवी देखना चाहते हैं तो उसमें अगर माता पिता भी साथ हों, कोई पारिवारिक फिल्म देखें साथ में बैठकर। बच्चों को पॉपकॉर्न खाने में बहुत रुचि होती है तो आपको बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह का माहौल बच्चों को घर पे ही दें और उनके साथ बैठकर कोई अच्छी फिल्म देखें। कोई कार्टून फिल्म भी आप कभी-कभी देख सकते हैं बच्चों के साथ। इससे बच्चों के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे और बच्चों की छुट्टियों का मज़ा बच्चे तो लेंगे ही, साथ में माता-पिता भी ले पाएंगे।

और श्रोताओं, अब आपसे इतना ही कहेंगे कि गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खूब सारा पानी पिएं, हाइड्रेट रहें, घर के बने शीतल पेय पदार्थों का और घर के बने ताज़ा संतुलित आहार का ही प्रयोग करें। बाहर का खाना बहुत कम खाएं या ना खाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो स्वास्थ्य को नुकसान ही पहुंचाता है। और साथ ही साथ अपने घर के आसपास घर में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, मच्छरों और मक्खियों से सावधान रहें, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलने का खतरा होता है। और इसी के साथ ही आज का सुबह सवेरे कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 8 बजने को हैं। कुछ ही क्षणों के बाद आप सुनेंगे समाचार। समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4-लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जन कल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज PCPIR और सरिगाम GIDC में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड़ में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
4: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
4: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस सेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसार।
3: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
5: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
3: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
0: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे स्तर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
6: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा न हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says US pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of men's under-18 Asia Cup hockey tournament in Japan today. Prime Minister Narendra Modi will visit Surat in Gujarat today to launch multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in road, power and industrial sectors. Mr. Modi will first visit Hazira and will review the ongoing industrial and infrastructure projects before addressing a large public gathering in the afternoon. Later in the evening, the Prime Minister is scheduled to visit Daman to inaugurate and lay the foundation stones for various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. A report from our correspondent.
8: In a major boost to regional infrastructure, Prime Minister Narendra Modi will dedicate key packages of 8-lane Vadodara-Mumbai Expressway to the nation today, significantly enhancing connectivity between Gujarat and Maharashtra. The Prime Minister will also lay the foundation stone for the 4-laning of critical sections of National Highway 56 to improve access to tribal regions and Statue of Unity. Catering to public welfare, the Prime Minister will also inaugurate a modern 200-bedded ESIC hospital in Surat, equipped with round-the-clock emergency and trauma care. In addition to this, several critical utility and industrial infrastructure projects will also be launched today, including the transmission network expansion in Gujarat, advanced effluent disposal system at Dahej, and Sarigam GIDC modern power distribution upgrades in Valsad. Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
7: Prime Minister Modi has called upon athletes participating in World Yogasan Championship to become global ambassadors of the Ayush Ministry's Yog 365 campaign when they return to their home countries. Speaking at the opening ceremony of the championship in Ahmedabad, Mr. Modi said the Ministry of Ayush has launched the Yog 365 campaign to encourage year-round engagement with yoga and promote healthier lifestyles across communities.
9: भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने योगा 365 अभियान शुरू किया है। मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
7: The Prime Minister said the championship represented more than a sporting competition and offered an opportunity to spread the broader message of yoga worldwide.
9: योगासन स्पोर्ट्स का एक और पक्ष है। हम जानते हैं कि हर बड़ा स्पोर्ट अपने साथ एक पूरा इकोसिस्टम लेकर आता है। ये रोजगार के नए अवसर पैदा करता है। इसलिए जैसे जैसे योगासना स्पोर्ट्स का विस्तार होगा, वैसे वैसे इससे जुड़ी नई संभावनाएं भी बढ़ेगी। ये खिलाड़ियों के लिए नई कैरियर अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। यह ट्रेनर्स, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और इवेंट मैनेजर्स के लिए भी नए अवसर बनाएगा।
7: Reserve Bank of India, RBI, will announce its bi-monthly monetary policy today. RBI Governor Sanjay Malhotra will announce the decisions made by the Monetary Policy Committee at 10 a.m. in Mumbai. The six-member MPC started its three-day deliberations on Wednesday. In April, the Reserve Bank had kept its key policy rate unchanged. Here is more from our correspondent.
4: The government has set consumer price index-based inflation target at 4% with upper tolerance of 6% and a lower tolerance level of 2% for the central bank. The CPI rose slightly to 3.48% in April, mainly due to higher prices of gold and silver jewelry, as well as some kitchen items. As the CPI is within the tolerance level, economists are expecting that the key interest rate will be kept unchanged at 5.25%. It also says that the central bank will adopt a cautious approach in view of West Asia conflict posing challenges for the inflation as well as economic growth. Jeevan Bhavsar, Akashvani News, Mumbai.
7: Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passed away in New Delhi yesterday following a prolonged illness. Dr. Kashyap was part of the high-level committee headed by former President Ramnath Kovind to prepare a legal framework on simultaneous elections. Author of over 100 books, he served as the Secretary General of Lok Sabha from 1983 to 1990. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief at the passing of Dr. Kashyap. The Appointments Committee of the Cabinet has approved a one-year extension for Tarun Kapoor, a retired 1987 batch IAS officer, as advisor to Prime Minister Narendra Modi. The Department of Personnel and Training has informed that Mr. Kapoor's extended tenure in the Prime Minister's office takes effect on the 10th of this month for a further period of 1 year. The Appointments Committee of the Cabinet has approved the appointment of Neelkanth Mishra as Executive Director, World Bank Headquarters, Washington, D.C., for a tenure of 3 years. The Department of Personnel and Training has informed that the tenure of Parameswaram Iyer has also been extended till the new incumbent assumes charge. The NDA alliance in Andhra Pradesh has decided to allot 3 of the 4 vacant Rajya Sabha seats to the Telugu Desam Party TDP and 1 seat to the Janasena Party. The decision was announced by Chief Minister N. Chandrababu Naidu after a meeting of NDA alliance partners held at its camp office in Amravati the previous night. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Russian President Vladimir Putin has hailed Moscow's strategic partnership with New Delhi and asserted that Western attempts to force India into scaling back its cooperation with Russia are futile and damaging to global stability. In an interaction with the heads of leading global news agencies, Putin lauded India's economic growth and its independent foreign policy and said Russia is determined to expand its economic engagement with the country. The Russian president said that India's diplomatic engagement with the U.S. does not hinder or undermine its time-tested relationship with Russia. He said Russia considers India as a reliable partner and it sees no negative consequences from New Delhi's bilateral relations with any other country. The Russian president also said that Russia proposed to India to work jointly on manufacturing the fifth generation Su-57 fighter jet. Putin added that his country is ready to provide India with critical technologies for major defense platforms and weapons. World Environment Day is being celebrated across the globe today. It has been observed on the 5th of June every year since 1973 as part of the United Nations Environment Program to build awareness to save life on Earth. A report.
0: The day is observed to raise global awareness to take positive environmental action to protect nature and the planet Earth. On the occasion of World Environment Day, Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav, and Minister of State, Kirti Vardhan Singh, will participate in a tree plantation program at Namo Oxygen Park at Maidan Gadi in the national capital under the Ek Ped Ma Ke Naam campaign. Several union ministers, chief ministers, ministers, MPs, MLAs will participate in World Environment Day events at the state level. The day raises awareness, mobilizes action, and promotes environmental sustainability. Through campaigns, events, and initiatives, the day inspires individuals and communities to make changes, fostering a sense of urgency and addressing environmental challenges for a sustainable future. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
7: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has extended greetings to the citizens on World Environment Day. In a social media post, Dr. Jaishankar encouraged everyone to work towards a greener, cleaner, and more sustainable future. Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav also urged the countrymen to renew their pledge to remain inspired by nature for the climate and future. Union Minister Dr. Jitendra Singh will inaugurate two-day Lavender Festival at Bhadarwa in Jammu and Kashmir tomorrow under the theme Lavender Goes Global. The fourth Lavender Festival is being held at Government Degree College, Bhadarwa in Dora District on June 6 and 7. The festival will witness enthusiastic participation of scientists, startups, aroma industries, entrepreneurs, policymakers, agribusiness stakeholders, students, progressive farmers, and representatives of fragrance and wellness companies from across the country. A two-day national workshop on seafood exports will begin in Visakhapatnam today to discuss ways to increase India's seafood exports and strengthen the sector across the country. The workshop will focus on improving seafood exports through better infrastructure, value addition, certification, traceability and policy support. Discussions will also be held on increasing the participation of startups and small businesses in the export sector. The India Meteorological Department has issued an orange alert for thunder squall conditions today over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Jammu and Kashmir, Ladakh, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan and Uttar Pradesh. Heavy to very heavy rainfall is expected during the day in places over coastal Karnataka, Kerala and Mahe, north interior Karnataka and Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. Parts of northeast India, sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Andaman and Nicobar Islands, Tripura and Andhra Pradesh are also likely to experience rainfall today. According to the Met Department, Arunachal Pradesh is expected to witness thunderstorms and lightning today. Moving on to sports, India will take on arch-rivals Pakistan in the semi-final of the Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament at Kakamegahara Hockey Stadium in Japan today. In the Women's Under-18 Asia Cup, India progressed to the semi-finals after remaining unbeaten in the group stage and will face China today. And now for a look at today's newspapers, it's over to VC Pramod.
10: Thank you, Naresh. On its front page under the headline, Push for India-Venezuela Ties, Hindustan Times carries a picture of Prime Minister Narendra Modi and Venezuela's acting president Delcy Rodriguez. The paper says the two leaders held talks on forging a long-term energy partnership and collaboration in pharmaceuticals and critical minerals. India-Venezuela vow deeper energy ties, writes the Tribune. As a court sent Lokesh Bajaj, owner of the hotel where 21 people were killed in a devastating fire, to police custody, the Delhi government said it would withdraw its bed and breakfast policy, reports the Pioneer. A picture on its front page shows family members at the last rites of the victims of the fire under the headline, Eight Fires, One Broken Family. Still seething with anger at the Congress ditching it and switching over to the TVK immediately after the Tamil Nadu Assembly elections, the DMK announced its decision to boycott the INDIA block meeting slated for the 8th of June, says a top headline in the Statesman. Rebel Rita Brata's expulsion from TMC void, writes the Asian Age, quoting the West Bengal Assembly Speaker, adding that there are 61 MLAs in the rebel camp. And its editorial, titled Funding India's Climate Future, a $1 trillion question, the Hindu writes that India will require roughly $2.5 trillion by 2030 to meet its nationally determined contributions. Over the longer term, the cost of achieving net zero emissions by 2070 is estimated at $10.1 trillion, nearly three times India's current GDP. And finally, in what climbers are calling a miracle, 52-year-old Sherpa guide, who was presumed dead at Mount Everest after he vanished during descent on May 29th, was found alive 6 days after base camp, reports the Times of India under the headline, Sherpa survives 6-day Everest ordeal, sans food, oxygen. And with that, it's back to you, Naresh.
7: Thank you, Pramod. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says U.S. pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch-rivals Pakistan in semi-final of Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament in Japan today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
11: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है लोक संगीत। लोक संगीत में आज कलाकार हैं माईलाल चिनवाल।

जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।

इसी के साथ ही आज का लोक संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। लोक संगीत कार्यक्रम में कलाकार थे माईलाल चिनवाल। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम एक रंग। एक रंग कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण के बारे में, क्योंकि आज 5 जून के दिन हम मना रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: श्रोताओ, आज हम सभी मना रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस, और इस दिन की सार्थकता को सिद्ध करना किसी एक अकेले इंसान का काम नहीं है, क्योंकि इसमें हम सभी को एकजुट होकर आना होगा और एकजुट होकर इस दिन की सार्थकता को हम सभी सिद्ध कर पाएंगे। वर्ष 1973 में पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए इस दिन को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी, और इस बार वर्ष 2026 में जलवायु कार्रवाई इस थीम के साथ हम अपने क्षेत्र या समुदाय में पर्यावरण संरक्षण की गतिविधियों में भाग लेकर इसके हिस्सेदार बन सकते हैं। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की वेबसाइट के माध्यम से भी जानकारी ली जा सकती है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, इससे जुड़कर अपने क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्य कर सकते हैं, अपने साथ और लोगों को जोड़कर जागरूकता फैला सकते हैं और एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं।

श्रोताओं, वसुंधरा को हरा भरा रखने के लिए हम सभी को प्रयास करना होगा। दिन प्रतिदिन बढ़ता प्रदूषण पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, ये चिंता और चुनौती का विषय है।

0: मद भरे पवन का क्या कहना।
1: श्रोताओ, चाहे आम आदमी हो, उद्योगपति हो, गैर सरकारी संगठन या पर्यावरणविद हो, पृथ्वी पर जैव विविधता को बचाने और सुरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण को सुधारने और उसका संरक्षण करने के लिए विश्व स्तर पर प्रयास करने होंगे। हर व्यक्ति अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएगा तभी पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित, साफ सुथरा रखा जा सकता है।

श्रोताओं, वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कारगर कदम नहीं उठाया गया तो प्रति दशक 2.0 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ेगा। बढ़ते तापमान को रोकने के लिए विश्व के सभी देशों को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा, तभी पृथ्वी के बढ़ते तापमान के खतरे को कम करना संभव हो पाएगा। विश्व स्तर पर बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2072 में 5 जून का विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में गठन सबसे सकारात्मक प्रयास है, जो विश्व स्तर पर पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा ध्यान आकर्षित करने के लिए किया गया था। वर्ष 1973 में प्रतिवर्ष 5 जून को पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओ, 1973 में 5 जून को पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की जो गठन सरकार द्वारा किया गया था वो एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास था। विश्व पर्यावरण दिवस के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम पर्यावरण संबंधी मुद्दों को चिन्हित करने तथा सतत एवं एक समान विकास के लिए प्रत्येक व्यक्ति को न केवल उसकी जिम्मेदारी से अवगत कराता है बल्कि उसकी सामर्थ्य को भी अनुभव करवाने में सक्षम है।

विश्व पर्यावरण दिवस को पूरे विश्व के आम नागरिकों, गैर सरकारी संगठनों, सरकार द्वारा विशेष समर्थन मिला। जैव विविधता के संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एवं हरियाली को संरक्षित करने के लिए यह दिन प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है, जो पर्यावरण सुधार एवं संरक्षण के लिए सबसे बड़े व सर्वाधिक विस्तृत रूप में विश्व स्तर पर मनाया जाता है।

श्रोताओं, विश्व पर्यावरण दिवस एक अभियान है जो विश्व भर में पर्यावरण के नकारात्मक प्रभावों को रोकने के लिए मनाया जाता है। इस अभियान का उद्देश्य वातावरण की स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करने और हमारे ग्रह पृथ्वी के सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए है। विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम भारत में विशेष रूप से स्कूलों और कॉलेजों में भी विभिन्न गतियों के माध्यम से मनाया जाता है। इस अवसर पर वृक्षारोपण, पर्यावरण सुरक्षा, कला प्रदर्शनी, चित्रकला प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाता है। भाषण आदि का आयोजन भी किया जाता है। युवाओं को पृथ्वी पर सुरक्षित भविष्य के लिए पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर प्रोत्साहित करने के लिए कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाता है।

श्रोताओं, पेड़ पौधे लगाने से हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। एक कविता है, कविता की कुछ पंक्तियों के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि पेड़ पौधे किस तरह से अपने फायदे बता रहे हैं और मानव से ये आग्रह कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाए जाएं। बड़ से गहराई सीखो, पीपल से सीखो ज्ञान, नीम खड़ा वह सदा कह रहा मत सहना अपमान, कहे आंवला सभी रसों को जीवन में अपना लेना, है बबूल की सीख न शत्रु कभी निकट आने देना, जीवन को सुरभित कर लो और सारे जग को महकाना, इस विद्या को चंदन से ज़्यादा कब किसने पहचाना, लता विटप और कंद मूल फल फूल सभी का है कहना, मत कमतर आंको हमको हम हर प्राणी का है गहना, प्राणों की रक्षा हम करते रोगों को भी हर लेते, बल बुद्धि यौवन हम देते कंचन सी काया करते, फिर क्यों हम पर दानव बनकर टूट पड़ा है यह मानव, बुद्धि विप्रय विनाश काले सिद्ध कर रहा यह मानव, अब भी समय शेष है मौसम में ठंडक भी है बाकी, हिमखंडों के पिघलन की परिणति क्या तुमने आकी, इससे पहले कि पानी सर ऊपर हो जाए सिर से, विश्व ऊष्मा कम करने को वृक्ष लगाओ फिर से।

श्रोताओं, पर्यावरण संरक्षण में हर एक व्यक्ति का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक आम आदमी छोटी छोटी दैनिक आदतों जैसे कम से कम कचरा फैलाना, बिजली और पानी की बचत करना, प्लास्टिक का उपयोग रोकना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, ऐसा करने से प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। कचरे को कम करने के लिए रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल के सिद्धांत को अपनाएं, प्लास्टिक का बहिष्कार करें, हमेशा कपड़े और जूट के थैलों का उपयोग करें, आवश्यकता न होने पर लाइट बंद करें, पानी की बर्बादी को रोकने के लिए कदम उठाएं, किसी को भी पानी बर्बाद न करने दें, घर के आसपास छत पर, बालकनी में, पार्क में अधिक से अधिक पौधे लगाएं, छोटी छोटी दूरियों के लिए पैदल चलें या फिर साइकिल का इस्तेमाल करें, अपने परिवार और आसपास के लोगों को पर्यावरण को साफ रखने के लिए जागरूक करें।

और श्रोताओं, अब चलते चलते आपसे यही कहेंगे, अगर प्रदूषण जो इतना फैलाएंगे तो आपदाओं से कैसे बच पाएंगे? कुछ नहीं होगा, केवल दिवस मनाने से पर्यावरण शुद्ध होगा, पेड़ लगाने से। और इसी के साथ ही आज का एक रंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 10 बजने को हैं। कुछ ही क्षणों के बाद आप समाचार सुनेंगे। समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: भारतीय रिजर्व बैंक अब से कुछ देर में द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा मुंबई में ये घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। अप्रैल में रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के लिए पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को विश्वसनीय साझेदार मानता है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से पर्यावरण संरक्षण, सतत जीवन शैली और जैव विविधता की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करने का आग्रह किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक संस्कृति का उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण न केवल एक जिम्मेदारी है बल्कि देश की संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न अंग भी है। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Daman today. He will dedicate and lay the foundation stone of multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in Surat across the road, power and industrial sectors. Mr. Modi will also inaugurate a 200-bedded ESIC hospital in Surat, providing modern secondary healthcare across key specialties. In the evening, Prime Minister Modi will travel to Daman and lay the foundation stone of development projects worth around 2,970 crore rupees. These projects span various sectors including healthcare, civil aviation, tourism, infrastructure, connectivity and public welfare. Prime Minister Narendra Modi has called upon athletes participating in World Yogasana Championship to become global ambassadors of the Ayush Ministry's Yoga 365 campaign when they return to their home countries. Speaking at the opening ceremony of the championship in Ahmedabad, Mr. Modi said Ministry of Ayush has launched Yoga 365 campaign to encourage year-round engagement with yoga and promote healthier lifestyles across communities.
1: भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने योगा 365 अभियान शुरू किया है। मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
2: The Prime Minister said the championship represented more than a sporting competition and offered an opportunity to spread the broader message of yoga worldwide. World Environment Day is being celebrated across the globe today. It has been observed on the 5th of June every year since 1973 as part of the United Nations Environment Programme to build awareness to save life on Earth. The day is observed to raise global awareness to take positive environmental action to protect natural and the planet Earth. On the occasion of World Environment Day, Union Minister for Environment, Forests and Climate Change Bhupinder Yadav and Minister of State Kirti Vardhan Singh

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार समय हुआ है प्रातः के 10:10:15। अब हमारी आज की पहली प्रसारण सभा संपन्न होती है। एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रमों का रिले जारी रहेगा। दूसरी सभा में दिन में 12:30 पर मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 267.67 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर डीटीएच और न्यूज़ ओने आईआर पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन के 12:30 और 12 सेकंड हुए हैं। हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम अब शुरू होते हैं। आरंभ में सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
3: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
3: और डोंडी दोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
2: और मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
3: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहाँ रेती हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
2: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शेडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है?
3: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
2: जी,
3: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं।
2: जी,
3: यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
2: जी,
3: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
2: श्रोताओं, जहाँ तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है, मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
3: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाशगंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते हैं।
2: क्या बात है!
3: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
2: क्या बात है! श्रोताओ, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कॉमिक गाँव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
3: और श्रोताओं, ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता
2: जी।
3: है। यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
2: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बच्चे भूटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
3: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गांव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता
2: जी।
3: है। यहाँ आज भी लोग पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं
2: जी।
3: इस डाकघर की स्थापना 5 नवम्बर 1983 को हुई थी।
2: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओं, सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है, यहाँ के डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
3: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है?
3: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
2: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
3: कक्षा 4 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है।
4: नकली हीरे।

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: खास ऐलान।
3: शांत शांत,
1: आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
4: हाँ हाँ महाराज,
1: महाराज
4: बताइए,
1: हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर
4: हैं। हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
1: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
5: जी महाराज, पूछिए, क्या प्रश्न है आपका?
1: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
6: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
0: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
1: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
0: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।
7: जी महाराज, बहुत कृपा।
8: महाराज की जय हो।
9: महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो।
1: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
0: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
1: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
4: महाराज, ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
1: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
4: इसमें संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़कर थे।
1: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
4: धन्यवाद महाराज।
0: अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
4: भाई, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा
10: हुआ? मुझे भी नकली हो सकता है।
4: क्या सबको नकली मिला? तुम भी नकली? अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया, सभी ने बोला कि नकली है।
11: महाराज की जय। महाराज की जय। महाराज की जय।
3: शांत
8: क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
4: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज। यदि आप आज्ञा दें तो हम पूछ लें महाराज।
8: कहिए, मेरी आज्ञा है। आप सभी निसंकोच कहिए।
4: जी धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। महाराज हमने इन हीरों की जांच जौहरी से करवाई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली हैं महाराज।
8: क्या? और कोई शंका?
4: जी जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है। बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
8: ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए। पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
12: महाराज की
13: जय!
12: महाराज की
13: जय!
12: महाराज की
13: जय!
1: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
14: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
15: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
16: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलर्ट हूँ मैं, चल चलूँ।

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और इस कार्यक्रम के बाद आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ

पोंगल नई फसल का त्योहार है। यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। यह जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है।

0: चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं, लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में ये तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: आपने सुना ये प्रायोजित कार्यक्रम।

आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। दिन का 1 बजने वाला है। कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। इसके बाद 1:05 पर प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। फिलहाल हिंदी समाचारों का समय है, तो चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
1: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। उद्योग संगठन SOCHM ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे।
2: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जन कल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के अगरतला में BSF के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की हर सीमा की भौगोलिक और सुरक्षात्मक चुनौतियां अलग अलग हैं, इसलिए सभी सीमाओं पर एक जैसी रणनीति के बजाय स्मार्ट मॉडल अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पर्यावरण को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अनामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अनामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इससे झलकती है। नागालैंड सरकार ने राज्य में तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी खाद्य उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध पान मसाला, सुगंधित और स्वादयुक्त चबाने योग्य उत्पादों के साथ साथ तंबाकू या निकोटीन युक्त किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ पर लागू होता है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक फिसलकर 74,274 पर, जबकि निफ्टी 43 अंक लुढ़ककर 23,374 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है। योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है।
4: भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने योगा 365 अभियान शुरू किया है। मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ। लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
3: 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल के निर्माण का जिम्मा हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम को सौंपा है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि इस अत्याधुनिक और भव्य अस्पताल का निर्माण गुरुग्राम की पुलिस लाइन के समीप किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी और विशाल स्वास्थ्य परियोजना पर लगभग 1054 करोड़ रूपये खर्च होने का अनुमान है। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम पूरे भवन के निर्माण कार्य की देखरेख करेगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अस्पताल निर्माण के संबंध में अन्य औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इस अस्पताल के बुनियादी ढांचे को 2 अलग अलग चरणों में तैयार किया जाएगा। प्रथम चरण में इस अस्पताल को 400 बेड की क्षमता के साथ तैयार किया जाएगा ताकि स्थानीय मरीजों को तुरंत आधुनिक इलाज की सुविधा मिल सके। इसके बाद अगले चरण में अस्पताल की क्षमता 600 बेड करने के लिए अतिरिक्त संरचना का निर्माण किया जाएगा। जींद पुलिस ने सफीदों के क्षेत्र में 25 मई को हुई रंगदारी मारपीट और तोड़फोड़ की घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उप पुलिस अधीक्षक ऋषभ सोडी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी तपन के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरे आरोपी गोवर्धन को मौके पर ही काबू कर लिया गया। पुलिस ने तपन के कब्जे से 1 अवैध पिस्तौल तथा 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने उनकी कार को भी कब्जे में ले लिया है। आरोपियों द्वारा की गई वारदात की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया,
5: 25 मई को पानीपत सफीद रोड पर 6-7 अज्ञात व्यक्तियों ने घुसकर बादल सानी ढाबा के जो मालिक के साथ मारपीट करी थी और ढाबे में तोड़फोड़ करी थी, और इसके अलावा उन्होंने उनसे 10,000 रुपए मंथली भी मांगी थी। और इसके कॉन्टेक्स्ट में एक FIR थाना सफीदों में 79 नंबर जो है वो दर्ज करी गई थी।
3: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की 12 फुट चौड़ाई की सभी सड़कों को अगले वर्ष मार्च तक 18 फुट चौड़ा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कल चंडीगढ़ में लोक निर्माण विभाग, भवन एवं सड़क विभाग के अगले 5 साल की कार्य योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन की सुविधा के लिए सड़कों का अच्छी हालत में और समुचित चौड़ाई का होना आवश्यक है। यह कार्य इस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि बनाई जा रही सड़कों की अच्छी गुणवत्ता, साइन बोर्ड, बर्म व सफेद पट्टी लगवाना सुनिश्चित करें। हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत प्रदेश के बुजुर्ग श्रद्धालुओं को गुजरात में श्री सोमनाथ मंदिर के दर्शन करवाने के लिए 8 जून को कुरुक्षेत्र से एक विशेष रेल रवाना होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस विशेष रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इच्छुक और पात्र श्रद्धालु आगामी 6 जून तक सरल हरियाणा पोर्टल पर जाकर अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। चयन प्रक्रिया पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी। फरीदाबाद के जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीटेक पाठ्यक्रमों को छोड़कर अन्य सभी स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 जून तक बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर राजीव कुमार ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए बढ़ाई गई है। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
6: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

कव्वाली अपने सुनी हंसते जख्म फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी बलबीर और साथियों की आवाज़ें थी, कैफ़े आज़मी के बोल थे, संगीत था मदन मोहन का, पसंद आप सभी की थी। आप हैं जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका, आशीष, गव्या मल्होत्रा, बठिंडा से अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, बिहिया आरा से पूनम देवी केसरी, संगीता बीना प्रतिज्ञा, बक्सर से सविता आर्य, पूनम पूजा, रोशनी अमृता, सुरभि खुशबू, श्रद्धानंद, अभ्यानंद परमानंद, पंकज प्रमोद, रोहित मोहित, लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, मेहराज जहां, कृष्णानगर नागपुर से नाना डोंगर दिवे, रमाताई, सीमाताई, रीमाताई, दीक्षा डोंगर दिवे, राहुल डोंगर दिवे, पटियाला से मुकेश भत्ता, नीलम, नितिन, पलक, कर्ण, गीतू, निहारिका वंश भत्ता, नई दिल्ली से उषा भीमसेन, रोहतक से महेंद्र शाह, हरिंद्र शाह, जितेंद्र, मानसी उर्वशी, अकोट से नितिन पाटिल, नलिनी पाटिल, अंजिके, आदित्य पाटिल, रघुनाथ नारे, गोपाल बोचे, किशोर, प्रदीप खोत, भिवानी से जोगेंद्र सहरावत, श्वेता स्वाति मोनू, नीरजा सहरावत, मलोट से राजीव सेतिया, रजनी आरती और तनिष सेतिया। अब सुनते हैं हमारा संसार फिल्म से एक और कव्वाली, आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों की आवाज़ें आप सुनेंगे। गीतकार संगीतकार हैं रविंद्र जैन। पसंद आप सभी के आप हैं पांडु पिंडारा से बादल सिंह गिल, कमलेश, टीनू, प्रीति, डॉक्टर अंकित और वानिका, नांदेड़ महाराष्ट्र से प्रभाकर जोंधले, आरती मेधा, सुप्रिया, प्राची, प्रफुल्ल, ग्रेसी, डॉली, अभिजीत, क्रांति परमेश्वर, घंगाला से रामनिवास अग्रवाल, प्रवीण, अभिषेक अग्रवाल, कर्मपुरा, नई दिल्ली से अनिल मदान, गौरव मानसे, निमिष, वन्य, भावना, सुमित, मीना मदान, कलाम नाहन से रजाक मोहम्मद खान, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान, रूबी जिया, भिलाई, छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता गौरव, गरिमा शर्मा, रोहतक से नरेश चावला, राजू, दीपक चावला, सुभाष अरोड़ा, राकेश, प्रवीण, मक्खनलाल, सरदारीलाल, राहुल, सोनू, दीपक, बलजीत, नवीन, हरिराम, गणेश दास, रामजी दास, नंदलाल और इनके साथी, मंडी हरजीराम से महेश गर्ग, सुषमा गर्ग, जश्न चीनू, कन्हेटी से विपिन धवन, अनिरुद्ध, साहिल धवन, बलियाली से दर्शनलाल बंसल, सुदेश, प्रवीण, ममता, कमल, गर्विश, तमन्ना बंसल, पानीपत से अनिल मदान, सार्थक, कपिल, निशु, बबली, मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, सौरभ, विशु और विनोद। आप सभी की पसंद पर हमारा संसार फिल्म से ये कव्वाली आपको सुनवाते हैं। आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों की आवाज़ें आप सुनेंगे। गीतकार संगीतकार हैं रविंद्र जैन। इन सब के साथ आइए हम भी सुनते हैं।

हमारा संसार फिल्म से ये कव्वाली आपने सुनी, आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों की आवाज़ें थीं। और अब धर्मा फिल्म से एक कव्वाली आपको सुनवाते हैं। मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ें हैं, वर्मा मलिक के बोल हैं, संगीत है सोनी कोमी का। पसंद आप सभी की आप हैं। खेड़ी चौपटा से राजमल सत्ता रेड्डी, हरिपाल जांगड़ा, महावीर दिलबाग सिंह, साहिल कीर्ति, बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता हार्दिक तन्नू, लुधियाना से विनोदपुरी अशोकपुरी, सुशील अनीता कैलाश रमापुरी, खजाना गेट अमृतसर से शुभलता प्रेम सागर, भड़बूंजी आगर से रघुनाथ मालवीय, रीना मालवीय, सुषमा दुर्गा परी, मधुबाला मिलन, सुभाष ओम प्रकाश, मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा कासिम अली, नदीम जुनेद अब्बासी, गिटोरनी नई दिल्ली से साबिर हुसैन मिरासी, मोहब्बत बेगम, जावेद शनाया, शान मोहम्मद, हुमा सुहान, तबस्सुम तरन्नुम, तराना हिना और सीमा। आप सभी की पसंद पर धर्मा फिल्म से यह कव्वाली मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ें हैं।

ये आपने सुनी धर्मा फिल्म से कव्वाली, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ें हमने सुनी। और अब कार्यक्रम की अगली पेशकश आप सभी के अनुरोध पर है। आप हैं मटोर कैथल से रामदिया, नीलम, अजय, विजय, तमन्ना, बठीना से बलकरण, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, चटोदा से सुजान वर्मा, सहोदरा आयुषी कृत, उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवानकर, सरिता, सिद्धांत, प्रिंस और एकांश, कैरो पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता शम्मी, रजनी, आकाश देव, अनहद गुरशबद, लोनी से रजा अहमद, इशरत जहां, जमाल कमाल, बुशरा, चनेटी बरेली कैंट से विनेश कुमार, रागिनी श्रीवास्तव, मुस्कान, लुदेसर से पप्पूराम गार्ड, संतोष देवी, प्रियंका साक्षी, रुचिका, मुक्तसर से बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर, रवनीत निशु, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान, लोहारू से बिल्लू चिंडालिया, सुरेंद्र, योगेंद्र, नरेंद्र, कर्मवीर सुरेश, खुर्जा से प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश, मलोट से रमेश चाचौरिया, गीता गगनदीप, आरजू चाचौरिया, महेंद्रगढ़ से विकास गांधी, ममता वंश, दिया नोनू, शगुन, सरवानिया महाराज, नीमच से गोविंद पाटीदार, ममता, पूजा पाटीदार, मधुसूदन, यशस्वी, हंसवी पाटीदार, खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता गौरव, राधिका, दीपिका सैनी। आप सभी के अनुरोध पर दुश्मन फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में गाई कव्वाली आपको सुनवा रहे हैं आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: दुश्मन फिल्म से ये कव्वाली किशोर कुमार की आवाज़ में थी, और अगली जो कव्वाली आपको सुनवाने जा रहे हैं वो अनोखी अदा फिल्म से है और किशोर कुमार की ही आवाज़ में गाई हुई है। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पसंद आप सभी की, आप हैं कायला से प्रकाश चंद भोकल, आवधिक पुनीत अजीत संदीप सक्षम, कविता सीमा प्रियंका मुस्कान साक्षी अलीशा मुन्नीलाल काफी भोकल, भिवानी से कृष्ण मेहरा कोमल किरण कपिल कुणाल मेहरा, डब्वाली से विजय बंसल उषा बंसल दीपू मोहित बंसल जेके बकोलिया सुनीता मीनू बकोलिया, चौधरीवास से राजू अग्रवाल केशव अलख प्रियांशी मांगेराम सुनील शुभम यश, पानीपत से हरीश चंद्र अनेजा तरुण ललिता गुड्डी शशि अनेजा, बोरखेड़ा पिपरामल उज्जैन से विनोद मूणत नेहा जैन दीपक मयंक चेतन नाहटा दीक्षा कुशमूणत दिलीप सिंह पंवार। आप सभी की पसंद पर अनोखी अदा फिल्म से यह कव्वाली किशोर कुमार की आवाज है। इन सब के साथ आइए हम भी सुनते हैं।
1: है दिलों का न पूछो सनम आपका।

अनोखी अदा फिल्म से ये किशोर कुमार की गाई अनोखी कव्वाली आपने सुनी। इसे जब भी सुने अच्छा लगता है। बढ़ते हैं आगे और आपको सुनवाते हैं क्रोधी फिल्म से एक कव्वाली। लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार और सुरेश वाडकर की आवाज़ें आप सुनेंगे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, गीत आनंद बख्शी का। पसंद आप सभी की आप हैं लपरी मुंडेला से चंदा चांदनी, आकाश मम्मी और पापा, कासगंज से आबाद खान, नबील आरिफा, आफरीन, असलम सैफी, इल्मा, रोपड़ से हरदेव मीका, बलविंदर, जैतक विर्क, सागबन से पालाराम गुर्जर, सुमन रवि, पवन हवलदार, मंगू रेणु, बलजीत सरपंच, महेंद्र रावत। और ये अगला खत है करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया का। झारखंड से देवेंद्र तांती, राकेश प्रकाश, निशा तांती, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा, नथाना से हरजिंदर छिंदा, जसबीर, गगन सोनी, जैस्मिन रेखा, मयूरी भोपाल से श्रवण।

क्रोधी फिल्म से ये कव्वाली आपने लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में गाई हुई सुनी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और आनंद बख्शे का गीत। श्रोताओं, गीत के कव्वाली के अंत में जो एक इंस्ट्रूमेंटल का पीस था, बहुत सूदिंग, बहुत संतोष देने वाला और मंगल की सूचना देने वाला था। अगर आपने पूरी कव्वाली सुनी तो आपने ज़रूर इसको एंजॉय किया होगा। ये था आज के कार्यक्रम की अंतिम भेंट, लेकिन इसी कव्वाली को कुछ और लोगों ने भी सुनना चाहा था। आपने पुफाली यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत वंदना, अर्पिता यशोदाबाई, धम्मित्र पीबी सिंगणकर, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, मोपका भाटापारा से भवेंद्र, लक्की हर्षित, सुमित्रा, हिपरसोगा जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो शेख, दस्तगीर शेख, फैजन बी, शाकिर इस्लाम बी शेख, बाबा शेख, करिश्मा, सिमर, सानिया, शकील पठान, बिस्मिल्ला पी, गदर शेख, नीलोफर, बिलोली नांदेड़ से चांदने अयूब सैयद, बालराजे, अमन सैयद, माहिरा सैयद, महसूल सीतामढ़ी से अक्रम हुसैन, प्रिंस, मुजम्मिल बाबू, बेगम इशरत, हुमेरा नाज, रूबीना, वसीम, सुमेरा, आरिफ, आरिज, अबीहा, ममता शर्मा, साजिया शाहिन नाज, पूनम शर्मा, नाजिया नूरी नाज, अरहान बाबू, बच्चू शेख, हमजा बाबू, चीना शेख, समस्तीपुर से शहनवाज परवेज, मसरत जहान नाज, बोराला धरन मालेगांव से दत्ता घायल, सुनीता बाई, सानिका गजानन घायल। और ये पत्र है करनाल के सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, मीनाक्षी तिवारी, शैना रफीका, और दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता छोटू, रोशनी और अजय गंगराड़े। इसी के साथ आज का आपके अनुरोध पर कार्यक्रम यहीं सिमटता है।

0: आपने सुना आपके अनुरोध पर कार्यक्रम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से 2 बजते हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, पहले अंग्रेजी में, इसके बाद हिंदी में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to dedicate and lay foundation stone of multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in Gujarat today. Centre grants tax exemption to foreign institutional investors on capital gains in government securities. RBI keeps repo rate unchanged at 5.25%, reduces GDP growth projection to 6.6% from 6.9% for the current fiscal. Nepal Foreign Minister Shishir Karnal to arrive in New Delhi on 3-day visit today. World Environment Day being observed, government inaugurates 18 Namo Oxygen Parks in New Delhi. And India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of Men's Under-18 Asia Cup Hockey in Japan this evening. Prime Minister Narendra Modi will visit Surat today to launch multiple development projects worth over 18,800 crore rupees spanning the road, power and industrial sectors. The Prime Minister will first visit Hajira and will review ongoing industrial and infrastructure operations before addressing a large public gathering in the afternoon. Later in the evening, the Prime Minister is scheduled to visit Daman to inaugurate and lay the foundation stone for various projects worth around 2,900 170 crore rupees, including major healthcare and aviation infrastructure to the nation, besides laying foundation stones for crucial maritime projects for the Union Territory of Lakshadweep. We have a report from our correspondent.
2: Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the new terminal building of Namo Airport and modern Namo Hospital in Daman today, strengthening the regional air connectivity and healthcare access for the Union Territory. He will also lay the foundation stone for several landmark infrastructure projects, including the iconic bridge, Daman Convention Centre and NIFT Campus. In a significant step for maritime development, Prime Minister will additionally lay the foundation stone for port projects worth 885 crore rupees for the Union Territory of Lakshadweep. These projects will develop multipurpose jetty on Kalpeni and Kadmat Islands, enabling year-round berthing for large passenger and cruise vessels while supporting the local fishermen with integrated fish handling and boat repair facilities.
3: Aparna Khun, Akashvani News, Surat.
1: The centre has granted tax exemption to foreign institutional investors on capital gains and interest income arising from investments in government securities. The government has promulgated the Income Tax Amendment Ordinance 2026 in this regard. The Union Finance Ministry said this step will align the taxation on government securities with many comparable jurisdictions. The exemption will be applicable from the 1st of April this year. The ministry added that the exemption will apply to any interest or capital gains arising to foreign portfolio investors on or after 1st April in respect of investments in government securities. It said similar income tax exemption is also provided for the Bank for International Settlements for any interest or capital gains from its investments in government securities. The ministry said this will ensure stable, systematic inflow of durable, patient foreign capital and long-term investors such as pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds. The Reserve Bank of India has kept key interest rates unchanged for the second consecutive monetary policy review in the current financial year. Announcing the bi-monthly monetary policy today, RBI Governor Sanjay Malhotra said the Monetary Policy Committee has unanimously decided to retain the repo rate at 5.25% while maintaining a neutral policy stance. Accordingly, the standing deposit facility rate remains at 5%, while the marginal standing facility rate and the bank rate continue at 5.5%.
4: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate under the LAF unchanged at 5.25%.
1: The RBI has revised its GDP growth projection for the current financial year downward to 6.6% from the earlier estimate of 6.9%. The central bank has also raised its inflation forecast to 5.1% from 4.6%. While inflation is expected to remain within the target range, rising fuel prices and higher input costs could exert upward pressure on prices in the coming months.
4: Let me at the very outset emphasize that the Indian economy entered this episode of global turbulence with much better fundamentals than in previous similar episodes.
1: Benchmark domestic equity indices were trading around 0.4% down during afternoon trade today. The Sensex lost 289 points to 74,071, while the Nifty dropped 100 points to 23,317 when reports last came in. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index was trading over 0.5% down, while small-cap 100 index fell 0.3% a short while ago. Union Home Minister Amit Shah today outlined a comprehensive border security vision while addressing border security force personnel at the Lankamura border outpost in Tripura. Emphasizing border security, the Home Minister said the government is determined to prevent illegal demographic changes along border areas of Tripura, West Bengal and Bihar. He informed that approval has been granted for the construction of 119 kilometers of new fencing to replace aging sections of the border fence. Mr. Shah also unveiled a smart border strategy aimed at integrating advanced technology with local civil administration to strengthen border management. A pilot project of the integrated model will be launched at 7 to 8 locations next year before wider implementation.
5: Our government is firmly committed to prevent illegal demographic changes in the border regions of Tripura, West Bengal and Bihar. To safeguard the demographic balance and strengthen border security, we have undertaken extensive border fencing measures in these areas.
1: A total of over 70,000 applications have been received through the CBSE post-result grievance redressal process from Class 12th students. This includes 7,314 applications for verification of marks and over 63,000 applications for re-evaluation. CBSE had opened the online portal for verification of issues observed in scanned copies of answer books and re-evaluation of answers on Tuesday. Following the declaration of Class 12's results on the 13th of May, a section of students expressed dissatisfaction with marks awarded and questioned the accuracy of evaluation under the on-screen marking system OSM. The Ministry of Education initiated a review of the implementation and procurement aspects of the OSM system, including examination of vendor performance, contractual obligations and quality control mechanisms. President Draupadi Murmu will confer the Padma Awards to 65 eminent personalities for the year 2026 at the second civil investiture ceremony on the 23rd of this month. Earlier last month, the President had presented Padma Awards to 66 eminent personalities at the first civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan. This year, the President has approved conferment of 131 Padma Awards, including 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. The awards are announced on the occasion of the Republic Day every year. BJP President Nitin Naveen has accepted the resignation submitted by the Tamil Nadu Party's State Chief K. Annamalai from the primary membership of the party. Annamalai had submitted his resignation to the BJP President recently. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. Nepal's Minister for Foreign Affairs, Shishir Karnal, will be on a three-day visit to India beginning today. He is visiting India at the invitation of External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. During the visit, Mr. Karnal will meet Dr. Jaishankar in New Delhi. In a statement, the Foreign Ministry of Nepal said the two sides will discuss matters of mutual interest with a view to enhancing cooperation across key areas including trade, investment, connectivity, energy and people-to-people ties. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav, along with Delhi Chief Minister Rekha Gupta, today inaugurated 18 Namo Oxygen Parks in New Delhi on the occasion of World Environment Day. The Union Minister also launched a series of environmental initiatives under the nationwide campaign Ek Ped Ma Ke Naam on the occasion. Speaking on the occasion, Mr. Yadav said, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India has emerged as a global leader in environmental action.
6: As the world faces environmental challenges, India continues to make significant progress. The country has emerged as a global leader in renewable energy, ranking among the top nations in solar energy capacity, while its forest cover continues to expand. Under the leadership of Honorable Chief Minister Rekha Gupta, the government of Delhi has launched the Dhool Mukt Delhi initiative. Additionally, 19 Namo Parks have been developed in Delhi. I encourage everyone to contribute to a greener and healthier future by planting a tree.
1: Speaking on the occasion, Delhi Chief Minister Rekha Gupta said increasing green cover is among the most important measures for improving Delhi's air quality. She announced that the Delhi government has set a target of planting 15 lakh trees across the city during the current year. During the event, three environmental publications prepared by the Delhi government were also released, which are Working Plan for Delhi, Asola Bhatti Sanctuary Management Plan and Delhi Bird Atlas. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi extended his best wishes to everyone on World Environment Day, saying initiatives like Ek Ped Ma Ke Naam have made significant contributions towards adding nearly 1.1 lakh hectares of forest every year. In a series of posts on social media, Mr. Modi remarked that the day serves to reaffirm the commitment to protecting the environment and furthering sustainable growth. Union Minister of State for Information and Broadcasting Dr. L. Murugan and Prasar Bharati Chief Executive Officer Gaurav Dwivedi today planted saplings under the Ek Ped Ma Ke Naam campaign at the premises of Akashwani in New Delhi. Talking to Akashwani News, Dr. Murugan appealed to citizens to take a pledge to protect the environment. He emphasized the need to save water, plant trees and protect and conserve them.
7: Our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji called the nation to mark a naam ek ped lagane ke liye. Importance of the environment, we have to save the water and we have to plant that.
1: U.S. President Donald Trump has said the United States has been in direct contact with Hezbollah as part of efforts to reduce tensions in Lebanon and the wider West Asia region. Speaking at the White House, Trump said progress has been made in discussions aimed at reducing violence in Lebanon. He made the remarks after being asked about reports that Hezbollah had rejected a U.S.-backed peace proposal. He said he had discussed the issue with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and other regional leaders. India will take on arch rivals Pakistan in the semi-final of the Men's Under-18 Asia Cup hockey tournament at Kakamigahara Hockey Stadium in Japan today. The match will start at 3:30 p.m. IST. India entered the last four after finishing second in Pool A with 9 points. India's Pragyananda Ramesh Babu remained in contention for the Norway Chess 2026 title after defeating world champion Gukesh Dhamaraju in round 9. The victory took Pragyananda to 15 points, just half a point behind leader Wesley, who has 15.5 points after beating Magnus Carlsen. India Meteorological Department has said conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into some more parts of Central Arabian Sea, entire Goa, parts of Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka, remaining parts of Tamil Nadu and parts of northeastern states. During the next 2 to 3 days, the weather agency predicted heavy to very heavy rainfall during the day in places over coastal Karnataka, Kerala and Mahe, north interior Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to dedicate and lay foundation stone of multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in Gujarat today. Center grants tax exemption to foreign institutional investors on capital gains in government securities. RBI keeps repo rate unchanged at 5.25%, reduces GDP growth projection to 6.6% from 6.9% for current fiscal. Nepal Foreign Minister Shishir Khanal to arrive in New Delhi on three-day visit today. World Environment Day being observed, government inaugurates 18 Namo Oxygen Parks in New Delhi. And India Today Cornage rivals Pakistan in semi-final of men's under-18 Asia Cup hockey in Japan this evening. With that, we end the midday news.
8: Namaskar. Aakashwani se dopahar samachar ke saath main Lavleen Nigam. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्यीय जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खुण, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
8: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
9: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
8: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और एटीएम में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने आरबीआई के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयरट्रंक ने भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ. जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
10: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
8: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6,40,00,000 पौधे लगाए गए हैं।
11: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ में जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40,00,000 से 60,00,000 वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सब का एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
8: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉ. मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
7: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे एस एन माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
8: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
12: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरणीय संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है, सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
8: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते

0: वे हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमेरिका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
1: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं। लोकल फॉर वोकल है, दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है, जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर डीटीएच और न्यूज़ जोन IR पर यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे खेत खलिहान कार्यक्रम।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम सुननी है सारे वन भाइयों ने दलजीत भाई की, राम राम। किसान भाइयों, मौसम कई दिन ते कुछ ऐसा बदलाव से मचाल रहा है। कल अचानक कुछ क्षेत्रों में एकदम ते तेज आंधी के साथ बारिश भी हुई है। वही तो है कुछ कम क्षेत्रों में, जितने अपने जान पहचान के भाई हैं उनते बातचीत दिन तो ही पता लग गया कि भाई कितने हल्की फुल्की है, कितने ना भी है, कितने थोड़ी सी कुछ ज़्यादा भी सुनने में आई है। लेकिन आंधी के साथ तेज बारिश आवे है तो उस टाइम पर कुछ जो पेड़ प्याड़ है हमारे वो उखड़न का डर हुआ है। चलो प्रकृति है वो अपने से आपने जिसा भी जो काम करे हमने तो उनके साथ रहना है। और बनियों का आग्रह कि पार बसाओ है भाई, खेत में कोई पेड़ खड़ा है भाई उसकी संभाल भी उसने है, घर में खड़ा है उसकी भी उसने है, फसल खड़ी है वो भी उसने संभाल है, आम बार हैं तो हमारी भी प्रकृति ने संभाल है। जैसा भी मौसम है उसके हिसाब से हमने तो अपना काम लागे रहना है। कल एकदम तो मौसम बदलाव में होया, कुछ बादलवासी हुई, बादलवाई तो आज भी है। और कृषि विश्वविद्यालय हिसार का जो पूरा अनुमान है उसके हिसाब से बात करा तो कुछ गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की आज भी संभावना जताई गई है कि आज भी मौसम थोड़ा सा बदलाव में उसके है। लेकिन फिर एक दो तीन चार दिन आगे का ध्यान करा तो कुछ अनुमान ही सा लगाया जा रहा है कि आगे फिर बदलाव में नहीं है, फिर साफ मौसम हो जाएगा। आंशिक बादल तो रहेंगे, बादलवाई तो रहेगी, लेकिन कोई बूंदाबांदी का कोई घना सा संकेत नहीं मिला है। तो मौसम ने देख के उसके हिसाब से हमने अपने काम करने हैं। काम तो ऐसा है कि अगली जो तैयारी है वो करने लाग रहे हैं। भैया ने खेत खाली पड़े हैं, कोई मिट्टी पानी की किसी ने जाँच करवानी है वो करवाने लाग रहा है, किसी ने गोबर की खाद गिरनी है वो उसमें गिरने लाग रहा है। हमने अगली फसल की रूपरेखा दिमाग में बहुत दिन पहले तैयार कर लेनी हो है, कौन से खेत में की बोना है, के कितने बीज ले के आना है, बीज लियाँ तो कौन सी दुकान पर ले कर आवा, कौन सी किस्म लेनी है, ये सारी बात दिमाग में आ जाया करें। उसके साथ साथ खेत की तैयारी करनी है। कुछ भाइयों ने गहरी जुताई कर रखी है, गहरी जुताई के महत्व तो बहुत सारे बताए गए हैं भाई। गहरी जुताई का महत्व तो के है उसमें कई बार जो इसके जानकार हूँ वो भी जिक्र करा, हम भी चौपाल में बैठा जिक्र कर दे रहा हूँ। गहरी जुताई का ये है कि भाई जब कोई ज़मीन खाली नहीं रह पाती, कुछ एक दिन के लिए मौका मिला है महीने डेढ़ महीने खातिर, मान लो किसी ने गेहूँ की कटाई करी है और फिर धान लगाने हैं, वो महीने डेढ़ महीने का जो अंतराल है उसमें मान लो मोटे मोटे डाले पाड़ के छोड़ दिए, तेज़ धूप लगेगी, तेज़ धूप लगेगी तो जो सूत्रकर्मी आदि कुछ जो ज़मीन में है वो मर जाएंगे, ज़मीन में कितने आंधी तूफान आओगे, कितने धूल के कण उड़काओगे वो टकरा के वहीं रुक जाएंगे, तासीर बदल जाएगी, नीचे तक मिट्टी हम पलट देंगे तो नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाएगी, ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाएगी। और हम जमीन ने जब सूखी ने बाह के देखा करें ना तो उसमें कोई कल्टीवेटर अरे उसमें गड्ढेगी नहीं गेहूँ काटने के तुरंत बाद, लेकिन जैसे लू चल लेंगे तो उसके बाद जमीन में कुछ फोकापन सा आ जाए अगर फिर हम उसकी बुआई सूखी कर दिया करा। और जब जमाई नहीं गड्ढे तो इतना तो जरूर कर सकें हैं, हल्की फुल्की जब बारिश हुई थी उस टाइम पर हम बुआई का काम अपना कर सकें। बहुत सारे भाइयों ने कर भी रखा है, अक्षेत्र में देखा हाँ वो कर भी देना चाहिए। तो ये काम है। अगला काम तो ये प्यौध का ही है, प्यौध बोने का टाइम चल रहा है, कुछ भाइयों ने वो भी दी, लेकिन वो कह रहा है कि तेज जब गर्मी पड़ा है और प्यौध बो रखी है उसकी मरण का डर हुआ है, थोड़े थोड़े सुई ही बाहर निकले हैं, ऊपर तेज धूप पड़ा है तो उसका डर हुआ है कि कदे खराब ना हो जा। और बार बार बोण में भी समस्या आओगी, एक बार बो दी बाद या समार दिया पानी दे दिया दोबारा वो तासीर सी नहीं बनती, तो ईसा सा मौका जब मिल जाए जो कर थोड़ा बहुत बादलवाई सी हो, एक आधी बारिश बुरिश की छीट पड़ रही हो और उस टाइम पे बुआरा हो रहा है और वो ठीक ठाक जमीन तक बाहर आ जाए तो फिर वो मार में नहीं आती। बाकी और जो दूसरे खाद हैं रसायनों का छिड़काव है उसमें वो गर्मी बन जाएगी, पौध मोन का छिड़काव करें गर्मी बन जाएगी, तो उसकी खातर तो गोबर की खाद पहले जितनी नीचे गिर जाए वो गोबर की खाद गिर दें। और पौध में प्राल कुछ ही डाल का कोई से घास फूस उसे ढकया जा, ढके पाचे के रखा कि जमीन में नमी रहेगी, पानी दोगे तो वो भी ज़्यादा टाइम तक चलेगा। और एक बात तो विशेष जो ध्यान करने की है कि नज़दीक जब पानी के साधन हो उस जगह पर भाई ने प्यौध बोनी है। ये बहुत ही घनी दूर और ट्यूबवेल चलाया आन में इतना टाइम लग गया जितना भरने में कौन लगता, तो नज़दीक बोलें बार बार पानी देने की जरूरत पड़ेगी। और विशेष सबसे ध्यान रखने की जो बात है वो यह है कि शाम का टाइम पानी देना है, सुबह पानी नहीं देना है। सुबह पानी दे दिया प्यौध में, दिन में गर्म हो जाएगा और गर्म होते हुए पौधे ने खराब कर देगा। शाम के टाइम पानी दें और आग आने वाला जो टाइम है प्यौध का उसमें देख रेख करनी है। एक तो ड्योली भैया ने थोड़ी सी नज़दीक नज़दीक काट दी होगी, क्योंकि बैठ कर जीती आ चलिया जा प्यो में तो कुछ अड़ंगा है कोई खरपतवार है वही पे काट देते ठीक से, नहीं तो फिर क्या है उस टाइम पे मार मार हो जाएगी, बारिश हो जाएगी, लाने वाले भाई कोई मिलेगा किसी ने ना मिलेगा उसमें तो फिर नहीं हो जाएगी, वह ला जो भी जिसी है और उसमें फिर जो खरपतवार गेल ला गए ना तो वो साथ है बढ़वार ले जाएंगे आगे जाके फिर वो समस्या बड़ी कर देंगे। साफ सुथरी प्योद हो जा और 20-25 दिन का जो भी टाइम लगा है 8-10 किलो बीज की जरूरत पड़ा कर भैया ने वो तो दोबारा उसका कर भी लिया, अगर जिन्हें करना है वो ही ध्यान करें इस चीज़ का। पहले दिन उसने भिगो दें, 1-1.5 दिन वो बीजी रहे तो अच्छी बात है, फिर जूट की बोरी ले लें, जूट की बोरी में उस बीज ने धर दें और 2 दिन भी छोड़ दें कोई दिक्कत नहीं, 1.5-2 दिन का टाइम उसने दे दें, उसमें थोड़े से अंकुर से फूट जाएंगे और बाहर समार रखा जो खेत एक साक रखा है उसमें बखेर दें, पानी दें, पानी दे कर भी बखेरे हैं भाई और पहले भी बखेर कर हल्का सा उसमें पानी दे दे हैं तो भी काम चल जाया करें, बस उसमें हल्का सा मिट्टी उसके ऊपर ढकी जा और फिर 1-2 दिन का जो टाइम है उसके बाद हल्का फुल्का सा अंकुर उसमें निकलना शुरू हो जा तो फिर बार बार पानी देना पड़ेगा, पानी हल्का देना है। यह बात पहले भाइयान जरूर कहूँ, हाँ कि जित भी कोई अपनी इस तरह की फसल बो जिसमें ज़्यादा पानी देने हैं उस क्षेत्र ने तो कति एक सा कर लें, अरे तो सारे खेत ने कर लें तो ठीक है, जो कंप्यूटर की गोड़ी आ रही हैं एक भी खेत में बाड़े पाँच 2-3 घंटे लेगी, थोड़ा सा खर्चा हो जाएगा, ये बात है जो आगे पानी देंगे उसमें बतेरा फर्क रह जाएगा, एक सार तो खेत ने करवाए लें। और यह भी किसान भाइयों देखने में आया है कि जिसने खेत एक सार कराया है ना उसके पानी की बचत रहे है और ज़मीन भी ठाडी हुआ है तो इस काम ने भी करवा लें। चलो ये बात तो कुछ अपनी जो इस हिसाब की थी कि भाई जो धान लाना चाहे हैं पनीर लाना चाहूँ उसके हिसाब की थी और चारा फसलों की देखभाल में क्या बात आओ कि देखभाल में तो देखो घनी सी बात नहीं आया करती इस मौके पर, इसमें तो पानी पात देने की बात आओ है, जो सी चारा फसल बो रखी उनमें और के ध्यान रखने की बात है करेंगे जिक्रो भी, लेकिन उससे पहले एक राग नहीं सुनने लगा एक कला करेंगे ओम प्रकाश और उनके साथी।
4: या जिंदगी सयन मोल परी और साच बत

समझण जोगी शानी दिखे फिर क्यों डूब मरे से। जवान उम्र में जात वीर की बड़ मैं किस ढाल

इतना सुतरा रंग रूप तो लाखा में छट जासे। बले पुरुष का सत्संग हो जाते पाप कर्म कट जासे। सती वीर हो जति पुरुष तो

0: ओम प्रकाश और उनके साथियों की गाई और रागनी सुन ली। इन के बाद में एक रागनी और सुनांगे, लेकिन उससे पहले भाइयों ने एक सूचना दे दिया, आज शुक्रवार का दिन है, 3 बजे तक लेकर 4 बजे ती फोन करें भाई, कृषि संबंधित समस्या और उनका समाधान लेने खातर डॉक्टर मीनाक्षी संगवान अपने साथ बैठेंगे। तो डॉक्टर साहब ने बताएं अपनी जो भी समस्या है और उसका समाधान देंगे। जिन फोन पर फोन करना है, 3 टेलीफोन लाइन हमारी काम करेंगी इस मौके पर, 01262 कोड लगाना है, 255446, 255447 और 255448। तो 3 बजे बैठ जाओगे, डॉक्टर साहब भी आ जाएंगे, जो भी समस्या है वो भाई बताओ और अपना समाधान लें। और भाई कार्यक्रम में जेकर चल रहा था जो चारा फसलें हैं उनकी देखभाल के बारे में, देखो इस मौके पर किसान भाइयों जो बो रखी हैं उनकी देखभाल में घनी ही जरूरत तो नहीं मानी जाती। कारण उन्हें मुख्य जरूरत वो है पानी की, चाहे पानी बारिश का मिल जाओ, चाहे ट्यूबवेल का मिल जाओ, चाहे नहर का मिल जाओ, उन्हें पानी मिल जाओ, वो ठीक ठाक अरे अपना रहेंगी। कुछ भाई तो इसे हैं कि जो जैसे गेहूं की फसल कटी उसे टाइम पे थोड़ा सा खेत खाली हुआ, या उससे थोड़ा सा पहले कोई खेत खाली है तो उस टाइम पे मक्का मक्का बोते हैं, उसमें ज्वार के भी करते हैं, न फिर घास भी बोते हैं, और कई इसे जो मक्का के चारे हैं बाजरे की भी बोने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी पीढ़ी का कोई बाजरा लेकर चारे खातर जिनने भी बो रखा है, तो उसमें पहले तो न्यू देखें भाई सोखा तो नहीं बन गया, ठीक ठाक जमाव ले रहा कि नहीं ले रहा है। अगर लगे कि सारे जमाव नहीं ले रहा, भाई का खेत ऊंचा नीचा उसके है, कितने नमी की कमी हो उसके है, उसके कारण तो हो सके है वो कितने जमाव ना ले रहा हो, तो जल्दी ही सिंचाई कर दें। सिंचाई करेंगे तो जित भी कुछ बीज रह रहेगा वो जमाव ले लेगा, चलो छोटा बड़ा तो हो जाएगा, जो पहले पौधा लिकट गया वो तो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन बाद के लिकड़े और पौधे थोड़े से छोटे रह जाया करें, चलो फिर भी पानी दें वो साथ के साथ रल जाया करें, उसमें कुछ नाइट्रोजन की खाद का छिड़काव कर दें। वो जरूरत है इस मौके पर, देखो तो न्यू कहें कि नाइट्रोजन की खाद देखो ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, उसमें फिर तासीर गर्म हो जाए, लेकिन कुछ न्यू मान कर चलें कि भाई पूरा कट्टा मान लिया हमने खेत में देना, तो तीसरी TI की मात्रा दे दें, 17-18 किलो दे दें, 20 किलो दे दें, हल्का सा उसमें एक छिट्टा सा इस तरह का दिया जा और फिर उसमें पानी लगा दिया जा। इब मुख्य तो ध्यान करना है पानी का, बाकी कीड़े बीमारी तो इस मौके पर इतने से नहीं आंदे, वो तो फिर आगे जाके जब ज़्यादा फसलों का बुआरा हो जाएगा, आगे बारिश के टाइम का मौका होगा उस टाइम पर तो उसके वो दिक्कत आ जा, लेकिन हाल में तो हमने इतना ही ध्यान करना है कि सूखा ना रह जा। और जो फसल हमने बो रखी है, जब हम बीज लेकर आ तो दुकानदार पे भी पूछा, हाँ 4 जगह तसल्ली भी करा, हाँ कि तो इंटरनेट का जमाना है, फोन पे भी देख लिया, हाँ कौन सी किस्म ठीक से, और हम भी चौपाल में बैठे हैं जो इसके जानकार हूँ, डॉक्टर हूँ, बताओ या किस्म ले लो या ले लो, बतेरी सी किस्म भी बता दें हम, वो किस्म भाइया ने इसीलिए रखी होगी जिनकी हो सके है एक दो काट लीजा, क्योंकि उसके बाद भाई धान की फसल बोना चाहेंगे। जिन्हें अगेती वो रखी है ना वो पहले ज्वार ले लेंगे, जैसे ही बारिश का मौका शुरू होगा तो उसकी कटाई करके फिर वो धान लेंगे उसमें। लेकिन कुछ भाई तो इसे हैं कि जो ई बो दी तो लंबे समय तक चलाने खातर उन्हें बो दी, उसकी ज़्यादा कटाई वाला जो बीज है वो लेकर आऊँ, लेकर भी आएंगे भाई, इसी बात नहीं है कि जिसने न्यू लागे है कि भाई हमने ई बाग धान नहीं लेने, इसमें ज्वारे रखनी है, तो फिर वो ज़्यादा कटाई आना लेकर 2-3-4 जिसे कटाई हाथ लग जा तो बहुत बढ़िया बात है। फिर बात आओ है मिलमा चारा लेने की, मिलमा चारा में बने है कि एक तो पशु खुश होकर खा ले है, अकेला चारा हो उसमें पशु भी कई बार मनसा मार के खा कर उसका स्वाद सही सा ना बने, या कुछ किस्म इसी हैं जिन्हें पशु खुश होकर खाते को ना, भाई ने चलो बो दी कितने तो बीज हाथ लग गया, ले आए ना बेरा था, जानकारी का भाव में बो गया, और उसमें कोई दूसरा जो करे मान लो लोबिया है, मक्का है, भाई और बाजरा बो रखा है ज्वार के साथ है, वो साथ में एक तो गहरा है ठीक भर जाएगा, जो एक ली ज्वार होगी ना वो कितने कितने मान लो सीधे पेटे हो गए तो उसमें ऊपर कच्ची नहीं बनती, और जब नज़दीक नज़दीक के पौधे हो जाए कई डाल का बीज बोया जा तो फिर उसमें चारा भी बढ़िया हो जाए, और मिलमा चारा पशु ने वो लागे भी ठीक से, उसने वो खुश होकर खाओ भी है। तो पहले ध्यान कर ले हैं कौन सा बोना है, बीज की बात न्यू आओ है कि बीज अपना पहले तसल्ली करके रख लिया जाया करे, भाई इतनी तो तैयारी कर ले हैं, अगले साल खातर भी न्यू देख लें, जैसे मौका आओ है कि भाई हमने बीज ने बाहर से लेकर आना है, अपना दूर है, कुछ भाई तो ज्वार का बीज बना ले हैं, और जो दूसरी फसल इस मौके की जो बोनी है उनका भी बीज बना कर लिया करें, बाजरा भी बोले हैं। फिर बाजरा की बात यह है कि इस टाइम पर जो चारा खातर जो बाजरा है उसका थोड़ा सा मात्रा ज़्यादा गिरनी पड़ेगी बीज की, जमा लो उसने कम बीज गिरेंगे ना तो वो सीधा सीधा होगा और उसके पौधे ज़्यादा बड़े होंगे, वो तो फिर आगे दाने खातर लेने खातर जब कराया जाकर इसमें थोड़ा सा बीज फालतू गिर लें, खेत ने बाले से मार लें, और नमी खेत में होगी तो जमाव ठीक लेगा। तो ये कुछ ध्यानकरण की बात थी कि जो चारा फसल है इस मौके पर उनका क्या ध्यान करना है। मुख्य बात यह है किसान भाइयों कि एक पानी का ध्यान करो, पानी का सूखा ना रह जा। जब पानी का सूखा रह गया तो वो फिर जितना अखबार निकल रहा है वो जल जाएगा, तेज धूप पड़े है, और जब बारिश का मौका ठीक ठाक हाथ लग जा तो चलो इसी बात तक कोई ना, लेकिन हमने अपना मन यूं बना के तैयार रखना है अगर जब चारे की फसल में पानी की जरूरत पड़गी तो वो हम मौके पर जरूर दे देंगे। चलो बात और भी करेंगे जो टाइम रह गया था, एक रागनी का और जो कराया था गायक कलाकार एक बार फिर ओम प्रकाश और उनके साथी।
1: हाँ बाबा जी डाट कुटी पर मत करिए।

आज हुसन जवानी रुलरी गड़ में फांस के सुती गलरी आज हुसन जवानी कदे खिलरी थी फुलवाड़ी साड़ियों

गैरा के दुख हर ले उनका बेड़ा पार उतर ले जो गैरा के दुख तिरले करके आज भलाई ले धर्म के ग

भाई यानी या तो रागनी सुने, गायक कलाकार थे ओम प्रकाश और उनके साथी। और एक बार फिर एक सूचना भाई ने दे दिया, ईबे टाइम हो गया है, 5-4 मिनट में बैठ लेंगे, डॉक्टर मीनाक्षी सांगवान बैठेंगे जो कृषि विशेषज्ञ हैं, किसी की कोई समाधान लेना है, कोई समस्या है कृषि संबंधी तो फोन करें 012-62 STD कोड रहेगा 255-446 से, 255-447 और 255-448 से। इस शुक्रवार का जो आज का मौका है वो कृषि संबंधी समस्या समाधान का है, अगली बार फिर पशुपालन संबंधी कोई इसके जानकार मार्दुर है बैठेंगे, तो पशुपालन संबंधी बात करनी है तो अगली बार फोन कर लें, और कृषि संबंधी बात करनी है तो ये 5-1 मिनट में बैठ लेंगे, डॉक्टर साहब बैठेंगे साथ में, हम भी बैठेंगे, तो अपना फोन करें और जो भी समस्या हो रखें उसका समाधान लें। और चारा फसला में जिक्र कराया था तो एक मुख्य बात यह आई थी कि भाई पानीपात की जो कमी है वह ना रहने दें, ठीक मौके पर जो बो रखा है उसमें खरपतवार घने से नहीं होंगे, और कुछ खरपतवार तो इसी हुआ करें जो चारा की गेल खाण में भी आ जाया करें, पशु गणेश उसकी दिक्कत नहीं मान्या करता, उसकी चिंता ना करें, विशेष यह रखें कि वे पानी का जुगाड़ कर लें, अपने दौरे नहीं है तो किसी दूसरे भाई दूर थे कितने तो घाट बाध करके तो अपना उसका पानी का जब्ता जरूर कर लें। ये कुछ बात थी अपने चारा संबंधी देखभाल की, तो सांझ ने अपना कार्यक्रम होगा उसमें फिर अपनी फिर जो चर्चा होगी वो सुनवाओगे भैया ने ई बे कुछ घड़ी का इशारा हो रहा है, दलजीत भाई ने जज दे दो, सारे बन भैया ने राम राम।

खेत खलिहान कार्यक्रम आपने सुना। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर डीटीएच और न्यूज़ ओन एआईआर पर यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम अब खत्म होते हैं। एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण। तीसरी सभा में शाम 5:30 पर मीडियम वेव 262.47 मीटर डीटीएच और न्यूज़ ओन एआईआर पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। हमारी विशेष सभा अब आरंभ होती है। प्रसारण सुनने के लिए जुड़ते हैं आकाशवाणी दिल्ली से।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं अमित कुमार सिंह।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता आज मेरे साथ हैं। इन्होंने अपने सात साथियों के साथ जो कर दिखाया उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में इनके नाम और इनके कार्यों की चर्चा करके आज इनको पूरे विश्व के पटल पे स्थापित किया, जिसकी प्रशंसा बस्ती ही नहीं पूरे देश में की जा रही है। आकाश गुप्ता जी जो बस्ती जनपद के लजघटा गाँव के निवासी है और ये छात्र है, इनके साथ जितने भी लोग उस अभियान में लगे हुए हैं सभी किसी न किसी विद्यालय में 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं के छात्र हैं। आकाश गुप्ता जी आपका स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मनोरमा नदी सफाई अभियान को कब आपने शुरू किया और कहां से प्रेरणा मिली आपको?
2: हमने अपनी मनोरमा नदी की सफाई का अभियान 67 दिन पहले शुरू किया। जब हमने ये शुरू किया तो हमारी नदी इतनी गंदी थी कि उसमें कचड़ा और उसके बाद ढेर सारी पूजा की सामग्रियां उसमें पड़ी हुई। किसी के यहाँ पे कार्यक्रम होता था तो वही लोग आकर अपना जो भी बाद का सामान होता था उसमें लाके नदी में फेंक देते थे, जिस वजह से हमारी नदी का स्थिति ऐसा हो गया था कि उसमें कोई भी जानवर पानी पीता नहीं था क्योंकि उसकी हालात ही ऐसी थी और कोई भी आदमी उस वहां पर नहाता भी नहीं था। तो हमने सोचा कि आज से 10 साल पहले जब हमारी नदी इतनी साफ थी, जहां पर सब लोग नहाते थे, जानवर पानी पीते थे, आखिर आज के टाइम पे वो हाल क्यों नहीं? तो हम लोगों ने सोचा कि अगर ये हमारी नदी है तो इसे साफ करने का कर्तव्य भी हमारा है। तो हम लोगों ने 6 से 7 लोगों की टीम बनाई और अपनी नदी सफाई का अभियान शुरू किया। पहले दिन हमें नहीं लगा था कि हम लोग इस नदी को इतना आगे साफ कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी नदी का अभियान का सफाई जारी रखा और आज हमारी नदी कुछ ऐसी दिखने लगी है जहां पर जानवर आकर इसमें पानी भी पीते हैं और यहां पर लोग आकर नहाते भी हैं और हमारी बहुत प्रशंसाएं भी करते हैं।
1: आकाश जी, यह अभियान शुरू करने से पहले बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि इतने गंदी नदी है, आप कैसे इसको साफ करोगे, या आपका मनोबल भी एक बार कमजोर हुआ होगा कि मैं जो है कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैं ऐसी प्रेरणा आपको आई कहां से और गांव के लोगों का क्या सहयोग और सपोर्ट रहा आपके साथ?
2: जब हम लोगों ने ये कार्य स्टार्ट किया था तो हमारे गांव के जो लोग थे उन्होंने कहा ये साफ तुम लोग नहीं कर पाएगे क्योंकि ये नदी बहुत गंदी है, इसको साफ करने के लिए सरकार को ही आगे आना पड़ेगा। लेकिन हमने कहा नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा ही साफ करेंगे लेकिन हर एक दिन काम करेंगे। और हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतना हम लोग नदी अपना साफ कर लेंगे और लोगों का भी सपोर्ट नहीं रहता था क्योंकि गांव का कोई भी हमें सपोर्ट करने नहीं आता था, कोई भी नहीं कहने आता था कि हम भी तुम्हारे साथ काम करेंगे और तुम्हारी मदद करके नदी की सफाई को आगे जारी रखेंगे।
1: आप जब उस समय नदी की स्थिति उसकी हालात देखे तो कैसा लगा?
2: पहले के टाइम पर नदी की स्थिति बहुत ही खराब थी, तो हम लोग आते थे बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे हम सभी लोग, तो हम सोचते थे कि अगर हमारी नदी इतनी गंदी, हम लोग अगर यहाँ बैठते हैं, यहाँ बदबू आ रही है, तो इसको साफ करके हम लोग यहाँ पर सुकून से बैठेंगे। तो हम लोगों ने इसकी सफाई का काम शुरू किया और इसको साफ किया।
1: करीब 2 महीने चले इस अभियान में, सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या मिली?
2: सबसे बड़ी चुनौती ये रही हमारी नदी में कि हम लोगों ने इसको साफ पूरा किया, 30 से 40 दिन तक हमने इसको लगातार साफ किया, लेकिन फिर 10 दिनों के अंदर इसके अंदर काइया जमा होने लगी और वो काइया धीरे धीरे सड़ने लगी और जिससे बहुत ज्यादा समस्या हमें होने लगी। फिर उसको साफ किया हम लोगों ने और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे कि आकर वो पूजा की सामग्रियां वापस उसमें डाल रहे थे। उसके बाद इसके अंदर से बहुत सारी कांच की बोतल्स और वो भी टूटे फूटे हालात में मिले। बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स का हाथ कट गया, पैर कट गया और यही सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि लोग आते हैं, कचरा फेंक जाते हैं, उसके बाद सहयोग भी नहीं करते, उसको साफ भी नहीं करते।
1: इस अभियान में गाँव के लोग और भी लोगों का क्या सहयोग रहा?
2: गाँव के लोग आते थे, हमें कहते थे कि हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अभी तक कोई भी गाँव वाला हमारे साथ नदी में नहीं है। अब आप सोच सकते हैं, कहने की बात अलग होती है, करने की बात अलग होती है। अगर आप हमारे साथ में चलकर नदी की सफाई करते हैं तब तो हम मानेंगे आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम साथी लोग जब से शुरू किए हैं तब से अभी तक काम कर रहे हैं।
1: क्या इस अभियान में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का कोई सहयोग आपके साथ रहा?
2: हमने एक वीडियो बनाई थी योगी जी को लेकर कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इसको शेयर किया जिस वजह से हमारी एक दिन में वीडियोस 1 करोड़ लोगों ने देख लिया और योगी जी ने उसको वीडियो देखा भी। और योगी जी से पहले मोदी जी ने मन की बात में हमारी जिक्र किया कि मैं और मेरे 7 लोगों की टीम ने मिलकर अपनी मनोरमा नदी की सफाई का पहल किया है।
1: सफाई अभियान के बाद अब तक मनोरमा नदी को आप देखते हैं तो क्या लगता है?
2: सफाई के बाद मनोरमा नदी हमारी इतनी साफ लगती है कि ये तो एक जैसे लगता है कि चमत्कार टाइप का, लेकिन ये चमत्कार नहीं, ये हमारी 67 से 68 दिनों की मेहनत है जो कि हमने लगातार की है।
1: आपको अभी क्या लगता है, इसमें और कुछ करने की जरूरत है?
2: जी, अभी हमारा काम तो जारी रहेगा जब तक कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी का पूरा गांव का हिस्सा जब तक साफ नहीं कर लेते तब तक तो हमारा काम जारी रहेगा, उसके आगे भी सोचेंगे। लेकिन हम चाहेंगे इसमें हमारी सरकार भी मदद करे क्योंकि हम कुछ युवाओं के बस का ये पूरा नदी साफ करना नहीं है।
1: जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात में आपका नाम लिए तो आपको कैसा महसूस हुआ?
2: हम लोग उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के एक छोटे से गांव लजघटा में रहते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक पटल पे हम लोगों की बात की, हमारे नाम का जिक्र किया, हमारी टीम का जिक्र किया, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे सफाई का अभियान भी अब लोग देख रहे हैं।
1: इसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा सराहना मिलने के बाद आप पर, आपकी टीम पर क्या प्रभाव पड़ा? ऐसा भी आपको लगता है कि ये जिम्मेदारियां और बढ़ गई?
2: हाँ, जिम्मेदारियां बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि अब जो हम लोग सफाई का काम करते थे 2 से 3 घंटा, अब हम लोगों ने ट्राई किया कि उसको और बढ़ाने का, और हम लोग अब धीरे धीरे और नदी को और आगे बढ़ते हुए साफ कर रहे हैं। और लक्ष्य तो यही है कि जितना हो सके हम लोग नदी को साफ रखे, जिससे कि जानवरों को और आम आदमी को परेशानी ना हो।
1: आज देश में पर्यावरण संरक्षण और पुनर्जीवन को लेकर काम करने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
2: हम यही कहना चाहेंगे, जो भी नेचर ने हमें दिया है वैसे ही हमको उसको संतुलित रखना है, कि चाहे वो नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे नहर हो, चाहे झरना हो, आप लोग उसको ऐसे सुरक्षित रखिए कि उसमें गंदगी ना फैले, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारे तकलीफ ना हो।
1: आकाश जी, आपने जिस तरह से साबित किया कि बदलाव के लिए बड़े पद या बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं बल्कि इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी यह कहानी अपने गांव, शहर, पर्यावरण के लिए कुछ सकारात्मक करने की प्रेरणा देगी।
2: अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको बड़ी मशीन या फिर कोई बड़े यंत्र की जरूरत नहीं है, आप अपने हाथों से पहले ट्राई कीजिए उसको साफ करने का। जब आप अपने हाथों से साफ करेंगे, थोड़ा बहुत हिस्सा साफ होगा, फिर आपका मन करेगा कुछ और ट्राई किया जाए, धीरे धीरे आप लोग और आगे तक सफाई करें। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास सिर्फ हाथ और पैर थे, हम लोगों ने उसी से स्टार्ट किया है। उसके बाद हम लोगों ने ट्राई किया उसमें नाव बनाने का, जिसमें हम लोग थोड़ा नाव बना भी गए थे लेकिन बीच में टूट गया। ऐसे ऐसे हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को ट्राई किया, तब जाके हमारी नदी इतनी साफ हो पाई। क्योंकि आप लोग जब किसी चीज को स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे उसकी आगे की रास्ताएं खुलते जाएंगे।
1: क्या ये आपको उपकरण से, जिसकी चर्चा मन की बात में मोदी जी ने किया, ये युवा जो है पर्यावरण या जल संरक्षण को लेकर के जागरूक है, इनके पास फावड़ा और जाल और ये ग्लव्स लेकर के ये नदी के सफाई अभियान को कर रहे हैं, क्या इस सफाई अभियान में आपको किसी ने कोई किसी तरह का सहयोग किया उसमें?
2: हम लोग जब वीडियो डालते गए उसके बाद लोगों ने इतना सपोर्ट किया, हमने उसमें अपना QR डाला जिसमें लोगों ने काफी सपोर्ट दिया, जिससे हम लोगों ने बूट्स मंगाए, ग्लव्स मंगाए और बहुत सारी चीजों को मंगाए, और बहुत सारे लोग हमारे एड्रेस पे कुछ सामान भी भेज देते हैं जिससे हमारी मदद हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा काम चलता रहा।
1: आपने कहा कि जब से हमने इस अभियान को शुरू किया तब से हम लोगों ने YouTube, Instagram और Facebook के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जोड़ा, और इस अभियान को और सफल बनाने के लिए, नदी के सफाई के लिए हमने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया और हमसे बहुत सारे लोग जुड़े। कितने लोग इससे प्रेरित हुए?
2: जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे तो 0 फॉलोअर थे, लेकिन अभी के टाइम पे अगर बात की जाए तो हमारे इंस्टाग्राम पे 63,000 फॉलोअर हो चुके हैं, फेसबुक पे 50,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं और यूट्यूब पे 10,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों का सपोर्ट हमारे साथ रहा, लोगों ने हमें काफी ज्यादा सपोर्ट किया जिससे हम लोग आज इतना ज्यादा सफल हो पाए।
1: आप जिस तरह से यह कार्य करके साबित किए बदलाव के लिए बड़े इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। आकाश जी, इसके बाद आपका क्या मिशन होगा?
2: अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो हम लोग नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में बरसात का मौसम आने वाला है तो नदी का पानी काफी ज्यादा रहेगा, जिसके अंदर हल्के उसको सफाई नहीं की जा सकेगी। तो हम लोग कोशिश करेंगे नदी के किनारे का जितना भी फील्ड है उसको हम लोग वृक्षारोपण करेंगे, जितना हो सके पीपल, बरगद, पाकड़, जामुन, ये सब पेड़ बैठाएंगे।
1: इंस्टाग्राम और फेसबुक के तहत लोगों को जोड़ करके क्या लगता है आपको कि क्या इससे लोग आपसे जुड़ रहे हैं, क्या इससे आगे और भी आपको काम करने के लिए और भी लोगों का साथ मिलेगा?
2: निश्चित सी बात है, सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा, और जब तक ये नदी सफाई नहीं होगी पूरी तब तक ये काम चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर वृक्षारोपण भी होगा, हमारी नदी का भी घाट भी बनना है, हमारी नदी पर अभी जहाँ बरगद पेड़ है वहाँ चबूतरा भी बनना है, और जब तक ये बन नहीं जाएगा तब तक ये कार्य चलता रहेगा। जब हमने इसको पहले दिन से स्टार्ट किया था तब से लेकर अभी तक हमें काफी ज्यादा लोग जाने लगे हैं, जैसे कि अभी विधायक जी ने कल परसों में आकर हमारे साथ मिलकर नदी की सफाई किया, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि अब ये अभियान जो है हमारा बहुत आगे तक जाने वाला है और साफ सफाई का काम तो चलता रहेगा।
1: समाज में कुछ नया करने का आपने एक प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे अमित कुमार सिंह। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ पर न्यूज़ ज़ोन AIR और DTH पर हम आकाशवाणी रोहतक से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं देशगान।

आप सुन रहे थे देश गान। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। 5:30 हो चुके हैं। अब आइए सुनते हैं युवा संसार कार्यक्रम।

नमस्कार, युवा संसार सुन रहे सभी साथियों का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम में मैं हूं आज आपकी अपनी रेडियो दोस्त नंदिनी। तो साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, आज है 5 जून, जो कि बेहद खास दिवस है, क्योंकि आज हम मना रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस। और आपको बता दें कि इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव पर्यावरण सम्मेलन के दौरान की गई थी, और वर्ष 1974 से इसे औपचारिक रूप से मनाया जाने लगा। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना, प्रकृति के महत्व को समझाना तथा पृथ्वी को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखने के लिए प्रेरित करना है। बढ़ता प्रदूषण, वनों की कटाई, जल संकट, ग्लोबल वार्मिंग और प्लास्टिक कचरा आज पूरी दुनिया के लिए गंभीर समस्या बन चुके हैं। ऐसे में विश्व पर्यावरण दिवस हमें ये संदेश देता है कि यदि हम अभी से पर्यावरण की रक्षा के लिए कदम नहीं उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संकट में पड़ सकता है। और एक बार साथियों, हम फिर से कह सकते हैं कि प्रकृति का संरक्षण ही मानव जीवन का संरक्षण है। स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन की पहचान है। और साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है शुक्रवार का दिन, और आज के दिन हम आपके लिए कार्यक्रम लेकर आते हैं युवा पसंद, जिसमें आपके लिखे पत्रों को हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं और सुनवाते हैं आपको आपकी ही फरमाइश के कुछ गीत। और कार्यक्रम में पहला गीत सुनवाने से पहले हम आपको बता दें कि कार्यक्रम युवा पसंद द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रोहतक, जिसका पिन कोड है 124001, इस एड्रेस पर आप हमें खत लिखकर भेज सकते हैं ताकि कार्यक्रम में नए नए नाम हम शामिल कर सकें। और बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे अपने पहले गीत के साथ, जो है फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से। गाया है आतिफ असलम ने, गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है प्रीतम ने। और साथियों, इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है डबवाली से रूप सिंह लखोदिया, करमजीत, सरवजीत, रानी, सोनू और रजनी ने। लुदेसर से आप हैं पप्पू रामगाट, संतोष देवी, लक्ष्मी, प्रियंका देवी, साक्षी और रुचिका। असालतपुरा मुरादाबाद से इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद बिलाल और मोहम्मद जुबैर अंसारी ने। आइए साथियों, सुनते हैं आप सबकी फरमाइश का ये प्यारा सा गीत।

साथियों, अभी आपने सुना ये गीत जो था फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से। गाया था आतिफ असलम ने, गीत के बोल लिखे थे इरशाद कामिल ने और संगीत दिया था प्रीतम ने। और आप सुन रहे हैं युवा पसंद कार्यक्रम, और अगले गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है जगराव से सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा, आशीष और गाव्या ने। अलीका डबवाली से आप हैं बसंत सिंहचंद, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी। महेंद्रगढ़ से इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है विकास गांधी, ममता, वंश, दिया, नोनू और शगुन ने। जतू का किशनपुर से आप हैं शबाना नाज, रिजवान, आलम शेख, मोहम्मद वकील राही और चांदनी नाज। आइए साथियों, सुनते हैं हमारे इन साथियों की फरमाइश का ये गीत जो है फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही से। गाया है बनी एंड सागर ने, गीत के बोल लिखे हैं सागर ने और संगीत दिया है हनी बनी ने।

अभी आपने सुना ये गीत जो था फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही से, गाया था बनी एंड सागर ने, गीत के बोल लिखे थे सागर ने और संगीत दिया था हनी बनी ने। साथियों, आज विश्व पर्यावरण दिवस तो हम मना ही रहे हैं, इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण दिवस और भी हम मना रहे हैं जो है इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, यानी अवैध अनरिपोर्टेड और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जी हाँ साथियों, इस दिवस का उद्देश्य समुद्री संसाधनों की रक्षा करना, मछलियों की घटती प्रजातियों को बचाना तथा अवैध मछली पकड़ने की गतिविधियों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO द्वारा इस दिन को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि अवैध मत्स्य पालन, समुद्री पर्यावरण, जैव विविधता और लाखों लोगों की आजीविका के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। कई बार बिना अनुमति के अत्यधिक मात्रा में मछलियां पकड़ी जाती हैं, जिससे समुद्री संतुलन बिगड़ता है और अनेक प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाती हैं। ये दिवस हमें ये संदेश देता है कि समुद्री जीवन की सुरक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। सरकारों, संगठनों और आम नागरिकों को मिलकर ऐसे नियमों का पालन करना चाहिए जिससे समुद्रों और नदियों की प्राकृतिक संपदा सुरक्षित रह सके। सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए जिम्मेदार मत्स्य पालन अत्यंत आवश्यक है। और साथियों, एक बार हम फिर से कह सकते हैं कि समुद्र हमारी धरोहर है और इसकी रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। और अभी आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम युवा पसंद। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे अपने अगले गीत के साथ, जिसकी फरमाइश हमें लिख भेजी है आकली दीवान मध्य प्रदेश से रामलाल चंद्रवंशी, कृष्णा चंद्रवंशी, मुकेश और सरिता शर्मा ने। सकारबरो कनाडा से आप है मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोरा। भाणा ब्रह्मणान नरवाणा से इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है मेघराज शर्मा, गौरव, सौरभ, विजय, अजय, जितेंद्र और जोगेंद्र शर्मा ने। भीलड़ गुजरात से आप हैं कल्पना मदान झा, मानव और मयंक। आइए साथियों, सुनते हैं आप सबकी फरमाइश का ये गीत जो है फिल्म सैयारा से। आवाज़ें हैं विशाल मिश्रा और हंसिका पारेख की, गीत के बोल लिखे हैं राजशेखर ने और संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

अभी आपने सुना ये गीत हमारे कुछ साथियों की फरमाइश का, जो था फिल्म सैयारा से। आवाज़ें थीं विशाल मिश्रा और हंसिका पारेख की। गीत के बोल लिखे थे राजशेखर ने और संगीत दिया था विशाल शेखर ने। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अगले गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है कूदो पाली ओडिशा से गिरधारी लाल विश्वकर्मा, सरस्वती देवी विहंगम विश्वकर्मा ने। कीर्ति नगर नई दिल्ली से आप हैं सुशांत प्रिय झा, निवेश और नियति। भीलवाड़ा राजस्थान से ये खत हमें मिला है गज

साथियों की फरमाइश का ये गीत जो है फिल्म टू स्टेट से, गाया है अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपदा ने। गीत के बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

शंकर एहसान लॉय ने। और उम्मीद करते हैं साथियों आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। और एक बार फिर से हम आपको कहेंगे कि पर्यावरण केवल प्रकृति नहीं बल्कि हमारे जीवन का आधार है। यदि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी मानव जीवन भी सुरक्षित और सुखद रहेगा। और सुनते रहिए हमारा दैनिक युवा संसार कार्यक्रम रोज़ शाम 5:30 पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। मिलेंगे फिर किसी और कार्यक्रम में। सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम। नमस्कार।

साथियों, अभी आपने सुना ये गीत जो था फिल्म टू स्टेट से। आवाज़ें थी अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपदा की। गीत के बोल लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया था

अभी आप सुन रहे थे युवा संसार कार्यक्रम आकाशवाणी का। ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने को हैं। अब हिंदी समाचार होंगे जिन्हें हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं राज्य के विकास को गति देंगी और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होंगी। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: इससे पहले सूरत में प्रधानमंत्री ने हजीरा में वर्तमान औद्योगिक तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे, जहां वे लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मोरा सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस नए केंद्र से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवाओं को मजबूती मिलेगी। श्री सिंह ने कहा कि सटीक और समय पर मौसम पूर्वानुमान से कृषि, विमानन, पर्यटन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा। असम मंत्रिपरिषद का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल रक्षम प्रसाद आचार्य ने इस अवसर पर नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर पर। 6:05 हो चुके हैं। आइए मैं आपको दे दी कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में पहले जान लीजिए आज के शेष कार्यक्रम। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने से संबंधित विभिन्न विषयों पर एक विशेष श्रृंखला महिला सशक्तिकरण सुनिएगा शाम 7:10 से। रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में आज फोन इन के तहत विषय होगा कृषि संबंधी समस्या व सुझाव। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर मीनाक्षी सांगवान। सुगम संगीत कार्यक्रम में रात्रि 8:25 पर सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। फिल्म संगीत सुनिएगा रात 7:45 पर। नाटक आप सुन सकते हैं 9:30 पर। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 10 से। और एक फिल्म से कार्यक्रम लेकर आएंगे रात 9:15 पर। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। आज के शेष कार्यक्रम आपने जानी और अब आपको बता दें कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। समाचार सेवा प्रभाग द्वारा निर्मित कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ एपिसोड नंबर 5 आप सुन पाएंगे कल शाम 5:10 से। सरकार के 12 वर्ष विषय पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रसारित कार्यक्रम युवा शक्ति शाम 7:10 से आप सुन सकते हैं। साहित्य भारती पत्रिका कार्यक्रम सुनिएगा रात 9:30। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुन पाएंगे रात्रि 10 से। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। युवा संसार में कल शाम 5:30 पर रोजगार विशेषांक युवा साथी सुन सकते हैं। प्रातः 7:30 आप सुनेंगे सुबह सवेरे कार्यक्रम। शाम 6:20

मिनट पर कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर बी के दुबे से बातचीत का विषय होगा खरीफ प्याज की नर्सरी तैयार करना। 7 बजे ग्रामीण संसार में कार्यक्रम रहेगा आपकी पसंद, जो कि होता है हरियाणवी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम। खेत खलिहान कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 2:30 पर। चर्चा होगी अरहर की काश्त। सुगम संगीत कार्यक्रम सुनिएगा कल रात्रि 8:25 पर। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं कल रात 7:45 से। 1:10 पर चित्रपट संगीत सुना जा सकता है। प्रातः 9 बजे सुनिएगा फिल्म संगीत कार्यक्रम सबरस। लोक संगीत कार्यक्रम प्रसारित होगा 8:30 पर, जिसमें कलाकार होंगे राकेश गुलोया व इनके साथी। 12:30 पर पसंद अपनी अपनी हरियाणवी लोकगीतों का यह फरमाइशी कार्यक्रम आप सुनेंगे। ये थी कार्यक्रम रूपरेखा। और अब आपको दे दें एक गुमशुदा व्यक्ति के बारे सूचना। ये सूचना मिली है ज़िला नूह से। इसके अनुसार खोरी कला नंबरी 2985D एक शिकायत मिली है, जिसके अनुसार सीता राम, जो कि 1 नवंबर 2024 से लापता है, अपने घर से सुबह 8 बजे से हुलिया इस प्रकार है। रंग सांवला, उम्र 55 साल, कद 5 फुट 5 इंच। इस व्यक्ति के बारे में कोई भी सूचना आप इस नंबर पर दे सकते हैं 7015114476। एक अन्य नंबर है 9050482676। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। 6:10 होने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिली होंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायर सिंह सैनी ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में किसान, युवा, महिलाएं और आधुनिक तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में 2738 करोड़ रुपए की जायका वित्त पोषित सतत बागवानी संवर्धन परियोजना का शुभारंभ किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने पिपली तथा भिवानी चिड़ियाघर के नवीनीकरण और पक्षी दर्शन पर्यटन सर्किट के विकास की घोषणा की। हरियाणा में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत इस वर्ष 1,50,000 पौधे लगाए जाएंगे। और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के धनकोट में बायो रिमेडिएशन प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में किसान, युवा, महिलाएं और आधुनिक तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हरियाणा को बागवानी, कृषि व्यापार, कोल्ड चेन, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि निर्यात के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री आज पंचकुला में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 2738 करोड़ रुपए की लागत से जायका वित्त पोषित सतत बागवानी संवर्धन परियोजना का शुभारंभ तथा हरियाणा कृषि व्यापार एवं कोल्ड चेन केंद्र का शिलान्यास करने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हरियाणा की धरती पर दो ऐसी ऐतिहासिक परियोजनाओं का शुभारंभ हो रहा है जो न केवल हमारे किसान की आय बदलेंगी बल्कि हरियाणा की कृषि की पूरी कहानी को नए सिरे से लिखने का ये काम करेंगी।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दोनों परियोजनाएं न केवल किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी बल्कि हरियाणा की कृषि व्यवस्था को आधुनिक, टिकाऊ एवं लाभकारी बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी। इस दौरान प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे। दोनों ने इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया, साथ ही बागवानी विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई। आज पंचकुला में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल और स्वच्छ पर्यावरण सरकार की प्राथमिकता है। वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए राज्य में 23 नए परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। स्वच्छ एवं टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सरकार 780 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में शामिल करेगी। मुख्यमंत्री ने पिपली तथा भिवानी चिड़ियाघर के नवीनीकरण की घोषणा भी की।
1: मैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के ऊपर कुछ घोषणाएं भी करना चाहूंगा। पीपली कुरुक्षेत्र में जो चिड़ियाघर है उसका नवीनीकरण किया जाएगा 70 करोड़ रुपए की लागत से, और इसी प्रकार भिवानी में जो चिड़ियाघर है उसका भी नवीनीकरण किया जाएगा 25 करोड़ रुपए की लागत से। इसी प्रकार सरस्वती संरक्षण वन में प्रवासी पक्षियों के लाभ हेतु पक्षी विहार का निर्माण किया जाएगा जिसके ऊपर 55 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।
1: कालेश्वर में जो राष्ट्रीय उद्यान में इको टूरिज्म तथा वन्य प्राणी पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और उसके मूलभूत साथियों सुविधाओं के लिए उनके विकास के लिए 10 करोड़ रुपए की आज यहाँ घोषणा करता हूँ। और इसी प्रकार पर्यटन की दृष्टि से स्थानीय प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु सुल्तानपुर जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, भिंडावास पक्षी अभयारण्य तथा कोटला झील नो को शामिल करके पक्षी दर्शन पर्यटन सर्किट का विकास किया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत इस वर्ष विभाग द्वारा कुल 1,50,00,000 पौधों का रोपण किया जाएगा।
1: इस वर्ष विभाग द्वारा हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,50,00,000 पौधे एक पेड़ माँ के नाम योजना के तहत लगाए जाएंगे जिसमें 50,00,000 पौधे वो मुफ्त वितरित किए जाएंगे। साथियों इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ, वन विभाग की सभी नर्सरियों में पौधे उगाने हेतु उपयोग में लाए गए साथियों प्लास्टिक प्लास्टिक बैग को बायो रिग्रेडेबल बैग से बदला जाएगा। पौधागिरी अभियान के तहत स्कूली बच्चों को भी 20 लाख पौधे वितरित किए जाएंगे।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर गुरुग्राम में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने धनकोट में बायो रिमेडिएशन प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया।
2: श्री मनोहर लाल ने कहा कि इस तकनीक के माध्यम से जैविक घटकों का उपयोग करके प्रदूषित पानी और कचरे का प्राकृतिक रूप से उपचार किया जाएगा। ये परियोजना गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक गेम चेंजर साबित होगी। केंद्रीय मंत्री ने हरियाणा सरकार के इन प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।
0: केंद्रीय मंत्री ने सेक्टर 102 में मटेरियल रिकवरी सुविधा और गुरुग्राम नगर निगम द्वारा शहर के 170 पार्कों तक शोधित अपशिष्ट जल पाइपलाइन बिछाने के कार्य का शिलान्यास भी किया। इस दौरान श्री मनोहर लाल, राव नरबीर सिंह व स्थानीय नागरिकों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है।
2: विशिष्ट अतिथि राव नरबीर सिंह ने कहा कि सरकार पूरे प्रदेश में हरित क्षेत्र बढ़ाने और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं और अभियानों को धरातल पर लागू किया जा रहा है।
0: विश्व पर्यावरण दिवस पर आज पंजाब के राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब लोक भवन में वृक्षारोपण अभियान का नेतृत्व करते हुए पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। वृक्षारोपण की यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: प्रारंभ किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य नागरिकों को अपनी माताओं के सम्मान में एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना तथा पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भविष्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस दौरान पारिस्थितिकीय, सजावटी एवं औषधीय महत्व रखने वाली विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। हरियाणा का 23वां जिला बनने के बाद आज हांसी में पहली बार शिकायत निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने की। बैठक में रखे गए 10 मामलों में से 7 का मौके पर निपटारा किया गया। मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि रखे गए मामलों में कुछ पारिवारिक व घरेलू थे और एक दो विकास से संबंधित थे। हांसी जिले के विकास को लेकर उन्होंने कहा,
1: अभी हांसी में डेवलपमेंट के बहुत सारे काम ऐसे हैं जो वास्तव में जुड़े हैं। जिला हेडक्वार्टर पर जिस जिस तरीके की व्यवस्थाएं चाहिए उन व्यवस्थाओं पर विधायक आदरणीय विनोद बैना जी से लगे हुए हैं। सेक्ट्रेट कहाँ पे बनना, मर्चील कहाँ पे बननी है, कोर्ट के लिए जगह, ये सब चीजों को लेके कॉम्प्लेक्स बन जाए, उस सारी व्यवस्था में विधायक जी ने अपने प्रपोजल सरकार को दिए।
0: हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा है कि लोकतंत्र की मजबूती और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण अत्यंत आवश्यक है। आज नरवाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चारों मंडलों के 225 बूथों के बूथ अध्यक्षों BLO 1 और BLA 2 की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, जबकि एक से अधिक स्थानों पर दर्ज नामों को नियम अनुसार हटाया जाना चाहिए।
2: पार्टियों की जिम्मेवारी बढ़ती है और सभी पार्टियां अपने अपने BLA 2 के माध्यम से, बूथ अध्यक्ष के माध्यम से, BLA 1 के माध्यम से वोटर सूची के शुद्धिकरण में लगे हुए हैं और सभी को प्रयास करना चाहिए कि जो एक्चुअल मतदाता है, जो जहां पर वोट पोल करेगा वहीं पर ही उसकी वोट हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है।
0: मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में किसान, युवा, महिलाएं और आधुनिक तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
3: हम आकाशवाणी रोहतक से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 262.47 मीटर पर। समय मिला सकते हैं आप स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 6:20 और 28 सेकंड हो चुके हैं। आइए सुने कृषि जगत कार्यक्रम।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सारे बण भाइयों ने दलजीत भाई की राम राम। भाई आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन फोन इन कार्यक्रम में एक बार तो पशुपालन संबंधी और एक बार कृषि संबंधी हुआ है। तो आज दिन है कृषि संबंधी समस्या और उसके समाधान का, और समस्याओं को सुनने के लिए उनका समाधान देने के लिए हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर मीनाक्षी सांगवान। आप कृषि विज्ञान केंद्र रोहतक से आए हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, हमारे जो भाई हैं खेती का काम कर रहे हैं, कुछ तो तजुर्बा उनका हो जाए काम करते करते, लेकिन फिर कुछ इसी बात आओ है कि जो आप जैसे जो बैठे हैं इसके जानकार है वो बताओ है, जब उनके कुछ फायदा हुआ है, एक आधी बात उनका ध्यान में चढ़ गया है, तो ई फोन लेना शुरू करेंगे, भैया की समस्या भी आओगी, उनके समाधान भी हम देवेंगे
2: जी।
1: तो देखते हैं लाइन पे हमारे श्रोता कौन है। हेलो।
3: हेलो,
1: हाँ जी, नाम बताओ।
3: राजवीर सांगवान, गांव पांडवान जी।
1: गांव पांडवान से राजवीर जी बोल रहे हैं, समस्या बताओ।
3: समस्या जी, बाजरे को बीज की बारिश कम बताऊं
2: जी।
1: कम बताओ है, किसने बता दी कम
3: है? को बारिश कम पूछेगी।
1: अच्छा,
3: हाँ तो हम तुमको भी पूछो भी बुआ दो।
1: चलो, बाजरा ने तो वैसे कम चाहक रहे, फिर भी चलो डॉक्टर साहब बैठे हैं, बताओगे आपने।
3: हाँ जी,
2: इसके अंदर बाजरे के अंदर जैसे अपने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार हैं, एचयू यूनिवर्सिटी आपने नाम सुना होगा, उनकी दो किस्में हैं हमारी जो नई है और बड़ी अच्छी उनकी पैदावार है। HHB 299 है और HHB 311। इनके अंदर ये खाने के हिसाब से भी बहुत बढ़िया है, लो तत्व। हाँ,
3: खाने बढ़िया है,
2: खाने में बहुत अच्छी है, खाने के लिए ही है स्पेशल और पैदावार भी बहुत अच्छी है।
3: अच्छा जी, मतलब पानी की ज्यादा मात्रा तो नहीं मांग रहे हैं?
2: नहीं, पानी ये है, ये बरानी में भी हो जाती है भैया, अब उस साइड का एरिया थोड़ा सा रेतीला सा ही है,
3: और रेतीला जी
2: जैसे ही बारिश होए बढ़िया पानी, आज मतलब बढ़िया बारिश हो जाए बिजाई कर देना इसकी, जुलाई के पहले हफ्ते तक इसकी बिजाई कर सकते हैं।
3: हाँ जी,
2: ठीक है, फिर एक पानी अगर हमें मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, जब इसकी
3: तो हाँ हाँ पानी का भी साधन है जी।
2: हाँ हाँ, फिर बढ़िया हो जाएगा, इनमें से दोनों में से कोई भी एक किस्म आप लगा सकते हो।
1: ठीक है जी, धन्यवाद।
3: अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हो जी आपका,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, नाम बताओ।
4: हाँ जी, गोशपुर से देशराज बोल रहा जी।
1: कौन बोल रहा?
4: गोशपुर से देशराज।
1: हाँ जी, बोलो बोलो, समस्या बताओ।
4: समस्या ये कि नरमा है, उसका कौन सा उखड़ रहा है?
2: क्या उखड़ रहा है नरमा का?
4: एक ही पेड़ है, एक गुलाब की नरमा हो रही है।
2: अच्छा,
4: निकलने
2: लग रही है। बारिश बुरिश कब हुई थी? पानी वानी कब लगाई है? सबसे पहले तो ये बताओ।
4: पानी लगा, बारिश हुई थी, पौन सा दिन हो गया।
2: और बिजाई कब करी थी?
4: बिजाई करी अप्रैल ने।
2: एक अप्रैल ने।
4: हाँ जी।
2: अच्छा, तो कोई उसमें आपको, क्योंकि देखो बिल्कुल शुरू में बिजाई कर ली थी और उस साइड हो सकता है अपना थोड़ी जमीन भी हल्की हो। जमीन कैसी है अपनी?
4: अच्छा,
2: कोई कीड़े बीमारी का अटैक आपने देखा हो? क्योंकि आपकी 60 दिन के आसपास होने वाली है फसल, हो ही गई।
4: 60 दिन की होने जी, बहुत 40 दिन की हुई
2: है। नहीं, अप्रैल का पूरा महीना चला गया, एक अप्रैल ने लगाई है, मई का पूरा महीना चला गया।
4: नहीं, एक अप्रैल नहीं, एक महीना।
2: हाँ, इसीलिए मैं कहा भाई, जब तक तो अब तक उसमें कई चीजें आ गई होंगी। एक मई को लगाई, तो कैसे निकल रहा है पौधा? जड़ से निकल रहा है या सूख रहा है, क्या कारण है उसमें, मतलब वो चीज बताओ क्या है?
4: जड़ से निकल रहा है, मैंने उसकी रुपाई करी, उसकी मैं बढ़िया करी थी, डीग लाला बीज है टाटा का।
2: जड़ देखिए आपने, काली हो जाती है क्या?
4: हाँ, जड़ काली हो जाए, उखाड़ के देखे पिड्डा मैंने।
2: तो उसके अंदर हो सकता है उसके अंदर विल्ट हो। बाकी एक देखो, मैं आपको सलाह दूंगी, कई बार हमें उसका सिम्टम समझ में नहीं आता, आपके पास हिसार एक बार अपना जो विभाग है के अपना टीक है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ एक बार उसका सैंपल दिखा लो, क्योंकि दो तीन कारण है सूखने के उसकी जड़ के।
4: हाँ जी।
2: है ना, अगर काली हो रही है तो फंगस के कारण है, विल्ट आ जाती है इसमें, अपने सूख भी जाता है, विल्ट भी आती है, फंगस भी लग जाती है, रूट रोट आ जाता है, जड़ गलन जिसको कहते हैं आप, है ना। एक बार आप दिखा लो सैंपल, मैं अभी आपको दवाई बता दूं कोई, और कभी वो चीज ना हो तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक बार सैंपल दिखा लो आप, यूनिवर्सिटी है ना अपने हिसार, वहां पे दिखा लो। फतेहाबाद में तो अपना केवीके भी है, केवीके में दिखा लीजिए आप। हाँ, कृषि विज्ञान केंद्र है फतेहाबाद में, वहां एक बार सैंपल दिखा लो। जड़ गलन लग रहा है ये, पर एक बार दिखा लो सैंपल, फिर भी पौधा ले जाओ,
1: पौधा पाड़ के ले जाओ कृषि विज्ञान केंद्र में, उड़ जो इसके वैज्ञानिक बैठे हैं उन्हें दिखा दो, और नहीं तो एक बार उन्हें खेत में बुला के आ जा, और तो खेत में दिखा दो लेकर कि जी यह समस्या आ रही है, वो बढ़िया तरीके से बता पाऊंगे।
2: नहीं, कई बार ऐसे होता है, आप सैंपल ले जाओ, अगर उनको नहीं फिर समझ आएगी तब खेत में आएंगे, पहले आप सैंपल ले जाओ। सबसे अच्छा तो ये है भाई, विजिट करो, सैंपल ले जाओ, फिर वहीं बता देंगे।
4: अच्छा जी,
2: ठीक है,
1: करो ये।
4: ठीक है जी,
1: ठीक है जी,
4: राम राम जी।
1: राम राम जी। डॉक्टर साहब, ईब जो मौका है, ईब कुछ जमीन खाली भी है
2: जी।
1: देखो कुछ चारे की फसल बो रखे भाइयों, वो एक अलग बात है, तो कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं कि हमारी जमीन भी ठीक रहे, अगली फसल जो बो वो भी ठीक जाओ, तो ईब इस मौका पर भाई के काम करें?
2: देखो अभी वैसे तो जून का महीना आ गया, तो जो अपने हरियाणा की बेल्ट है यहाँ पे, तो इस टाइम धान
1: लगता है। कोई श्रोता लाइन पे है? हेलो
4: जी।
1: हाँ जी, नाम बताओ।
4: राम राम जी।
1: राम राम।
4: हाँ, मैं असंत से दबाड़ा गाँव में कर्नाटक।

0: ਠੀਕ ਹੈ
1: ਹਾਂ ਜੀ
0: ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬੈਂਗਣ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਜੀ
2: ਜੀ
0: ਇਸਮੇ ਸੁੰਡੀ ਨਿਮਰ ਰਹੀ ਕੋਰੋ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਲਈ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਮਾਰ ਲਿਆ
2: ਸਪਾਈਨੋਸਾਈਡ ਆਤੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਸਪਾਈਨੋਸਾਈਡ ਵੀ ਮਾਰਦੀ
0: ਸਾਰੀ ਮਾਰਦੀ ਜੀ
2: ਨਹੀਂ ਵੋ ਤੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੈ ਸੁੰਡੀ ਕੇ ਲੀਏ ਬੈਂਗਣ ਮੇ ਔਰ ਉਸਕੇ ਤੀਨ ਸਪਰੇ ਆਪਨੇ 15 ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੁੰਡੀ ਆਏ
0: ਸੁੰਡੀ ਆਇਆ ਤੋ ਅੰਤਾ ਜੋ ਜੀ
2: ਮਹੀਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਬ ਤੋ ਫਸਲ ਵੀ ਅਗਲੀ ਲਗਨੇ ਕਾ ਸਮੇ ਆ ਗਿਆ तो अगर आपने भाई इसके अंदर देखो सबसे अच्छी जो काम करती है वो है स्पाइनोसेट दवाई है 75 ml है एक किले के अंदर 100-150 liter पानी ले लो उसमें और तीन स्प्रे कर दो एक हफ्ते के अंतराल पे
0: कौन सी जी
2: स्पाइनोसेट स्पाइनोसेट
0: स्पाइनोसेट
2: हाँ
1: स्पाइनो स्पाइनोसेट दवाई है
2: जी
0: हाँ
2: जी बताइए
0: इसमें लगाई तो किया थी बढ़ने लग रहे टिंडे से कई पेड़ में
2: टिंडे बढ़ने लग रहे हैं
0: हाँ जी अरे अरे दारी है जो पर खरबूजे में हुआ नहीं अरे अरे
2: गिया भी ऐसी वैरायटी आती है गिया की भी बीज कहाँ से लाए थे आप
0: असम से लिया था जी सेंट्रों का मेरे ख्याल में
2: देखो वैसे तो क्योंकि घिया की भी गोल घिया भी आती है लंबी घिया भी आती है धारीदार घिया भी आती है सही तरह की आती काट के देखा है आपने अभी तो छोटा होगा अभी मैं काट के देखा है क्या तो वो घिया की वैरायटी ही होगी जी ऐसे तो नहीं हो सकता कि घिया लगाई है टिंडा लग जाएगा उस पे
0: ये तो पता नहीं जी लाइट होगी ऐसी बन लग रहा है तो बाकी क्यों करें जो मारी जीरी की
2: हाँ जी हाँ जी
0: तो गर्मी में तो कई बारिश हो रहा है जी बिजली वाले गड़बड़ कर रहे लाइट जी टाइम दे रहे
2: जी जी बताइए क्या दिक्कत आई है
0: पीली हो रही जी
2: कब लगाई थी
0: मेरे ख्याल में 11-12 दिन हो लिए जी हाइब्रिड बीज है
2: अच्छा कौन सी है वैरायटी
0: 75-01 है जी
2: अच्छा हाइब्रिड है
0: हाइब्रिड है जी
2: ठीक है तो पीलीपन मतलब पानी के कारण हो रही है या क्योंकि देखो शुरू में कई बार खाद के कारण भी हो जाती है हम नहीं डालते कई बार नमक के कारण भी पीलापन आ जाता है पानी कैसा है
0: हमारा पानी सही है जी इसी बात में ना हम खाद गए थे कुड़िया खाद गए थे ऊपर को
2: हाँ हाँ हाँ ठीक है
0: तो उसके बाद सही जन्मी थी जो गर्मी हुई निकल तो सलाम दी आएगी थी
2: हाँ जी हाँ जी
0: पीलापन पकड़ने लगी जी
2: देखो
0: कोई
2: पीले
0: डीपी मार दे यूरिया मिला और नो जिंक मिला के कोई कहता कुछ क्या करा
2: हाँ नहीं कर सकते हो ऐसे तो मैं वही कह रही हूँ क्योंकि कारण कई हैं भाई आप कह रहे हो नमक नहीं है बढ़िया है पानी चेक करवा रखा है तो ठीक है अब दूसरा कारण नाइट्रोजन की कमी आ जाती है इसमें जो पोषक तत्व है उसकी कमी आ जाती है क्योंकि शुरू में हम डालते नहीं अमूमन इसके अंदर प्योद में वैसे हमारी सिफारिश है कि शुरू में भी जब आप मान लो एक किले में प्योद तैयार कर रहे हो तो 10 kilo नाइट्रोजन की है सिफारिश
0: ओ नहीं डॉक्टर साहब एक बात बताऊं चलो आपने देखा होगा मैं नाइट्रोजन यूरिया गिरा नहीं तो उसी टाइम खत्म हो जाएगी
2: ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा गिरोगे तब खत्म हो जाएगी
0: ना अभी कोई रिश्तेदार से एग्रीकल्चर इसमें कंपनी से मिला के दवाइयां मैं नाइट्रोजन हम घेर नहीं सकते पानी तो तैयार करा इसने थोड़ी डीएपी जिंक घेर दिया हम थोड़ा
2: चलो अब आपका पीलापन आ रहा है 10-15 दिन की होगी अब उसके अंदर डाल दो नहीं तो स्प्रे भी कर सकते हो पर अभी बहुत छोटी होगी जिंक यूरिया का स्प्रे 500 ग्राम जिंक और 2.5 kilo यूरिया उसका भी कर सकते
0: तो है नहीं 15-20 दिन वो तो ठीक है लेकिन पीलापन पकड़ रही है जी
2: हाँ तो उसमें अगर नाइट्रोजन की कमी है तो आप क्योंकि शुरू में भी पोषक तत्व कह रहे हो नहीं डाले तो उसकी होगी और पानी का मेरे को लगता है कई बार पानी के कारण भी हो जाती है दूसरा कई बार लो तत्व की कमी आ जाती है इसी दिन इसी दौरान आती है 10-15 दिन के अंदर ही आती है वो सफेद सफेद हो रहा है या पीला हो रहा है
0: डॉक्टर साहब हम तो नहीं सोचता नहीं जो करे शाम में पानी दे तो बिजली वाले से 3-11 दे रहे शाम में 1 घंटा मांगा था 1 घंटा दे रही सरकार से शाम में 5-6 दे देनी फिर तो प्योर में कुछ बिगड़ता नहीं
1: चलो ऐसा है सुनो आपकी जो समस्या है डॉक्टर साहब का ध्यान में आ गई है आपको बता भी दिया है आप एक चीज का ध्यान करो शाम के टाइम तो पानी दो यूरिया का छिड़काव ज्यादा ना करो सुनो बिजली वाला तो हमारे हाथ में बात नहीं है हम तो रेडियो वाले हैं हम तो हमारी बात या एकर से कहां आते हैं आप शाम के टाइम पानी दो डीएपी डालो हो डाल दो कोई दिक्कत नहीं यूरिया का डर आपके है मन में वो मत डालो और आपने जिंक का छिड़काव करना है तो जिंक का छिड़काव कर दो वो अलग से जिंक आओगी हो जाएगा ठीक ऐसी बात
2: अगर सफेद पत्ता हो रहा है तो आयरन जो हरा कशिश आता है वो भी मिला
0: रहे हाँ जी वो तो ले रहे हैं बात तो उसमें मरते को नहीं हरा कशिश है तो पंचारी की दुकान पर
2: जी जी जी जी ठीक है
1: हेलो डॉक्टर साहब लगता है श्रोता लाइन पे हैं लेकिन नहीं बात हो पा रही जिक्र करा था हमने कि इस मौके पे कृषि क्रियाएं कौन सी करनी है, थोड़ा जिक्र करो।
2: हाँ जी, देखो हमारा जो मेन एरिया है, एक तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी अभी सभी किसानों को कि खेत बचाओ अभियान अपना एक अभी चल रहा है जो 1 से 30 जून के बीच में है।
1: अच्छा,
2: तो इसका मेन मकसद यही है, सभी किसान भाइयों से अनुरोध है अपनी मिट्टी की जांच करवा के, अभी भी जैसे खाद की बात कर रहे थे,
1: हाँ
2: तो मिट्टी की पहले जांच करवाएं।
1: लगता है श्रोता लाइन पे
2: जी
1: कोई। हेलो,
0: हेलो,
1: हाँ जी, नाम बताओ।
0: जी सुरेंद्र भाई, बलजीत भाई जी को मेरा नमस्कार।
1: हाँ जी, राम राम, नाम बता दो।
0: जी जी, मैं गांव बागोत में प्रकाश संभवता बोल रहा हूँ सर।
1: हाँ जी प्रकाश जी, कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया।
1: चलो अब कोई समस्या है कृषि संबंधी वो बताओ, डॉक्टर साहब बैठे।
0: डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार।
2: जी जी नमस्कार जी।
0: जी जी बहन जी, मेरा सवाल ये था कि जिस तरह ये बाजरे की बुआई जो है ना, ये जुलाई के मध्य में या लास्ट में हो जा करेगी?
1: जी
2: जुलाई के लास्ट में।
0: हाँ जी, लास्ट में ही हो जा रहा, मध्य में भी हो जा रहा काफी बार। तो ये बहन जी, अब की बार जिस तरह ये मतलब नू लगा लो कहा कि 10 जून तक बुआई होगी, तो इसमें ये बहन जी ये जिस तरह खेत में होगा या तो खेत में बाजरा हो?
2: नहीं, आप जुलाई लास्ट कह रहे हो कि मई लास्ट कह रहे हो?
0: सॉरी,
2: क्योंकि अभी जून तो टाइम पे ही है, जून में, बल्कि 10 जुलाई 15 जुलाई तक हम इसकी टाइम की बिजाई करते हैं बाजरे की, तो जून में किसी भी टाइम जैसे भी बढ़िया बारिश होती है आप कर लो, पानी की सुविधा है तो दे के जून में वो समय वाली ही होगी बिजाई आपकी, पछेत वाली नहीं होगी।
0: जी जी मैम, तो इसमें 3 महीने वाला जो बीज है ले सकता हूँ?
2: कौन से वाला बीज?
0: 3 महीने?
2: हाँ हाँ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं,
0: आगे बीज आ जाएगा।
2: हाँ जी हाँ जी जी जी,
1: ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो डॉक्टर साहब।
2: हाँ मैं थोड़ा सा अभियान का बता रही थी, उसका बता देती हूँ कि सभी किसान भाई, देखो हमारी जमीन दिन ब दिन उसकी जो सेहत है वो खराब होती जा रही है, तो जिसमें हम खाद की बात कर रहे थे तो वो खाद हमने तभी
0: Hello?
2: डालनी है।
1: हेलो जी, नाम
0: राम
1: बताओ।
0: राम जी।
1: राम राम जी,
0: नाम वजीर है जी, गांव सिरटा जिला कठड़ा जी।
1: हाँ जी वजीर जी, बताओ क्या समस्या है?
0: समस्या है जी, अपन हल्दी का बोया 1/2 किला।
1: अच्छा,
0: उन्हों हो गए 20 दिन हो गए।
2: हाँ जी, हाँ जी।
0: अच्छा हल्दी तो जमी नहीं, उसमें गदबड़ जम गया, पराली का महंगा, उसकी दवाई का उपचार हो जाएगा?
1: गदबड़ गदबड़ किस चीज ने कहो हो?
0: संटी भी कहते हैं बांगर में दोनों।
1: अच्छा अच्छा, मतलब खरपतवारी से छाप के हो गए कि आपकी जो मुख्य फसल है उसने कोने जामने दे रहा?
0: नहीं वहां तो जमेगी, मतलब भाई उसका स्प्रे कर दिया, वो जामन में तो नहीं इफेक्ट होगा कुछ, उसका दिक्कत हो है?
1: अच्छा,
2: देखो वैसे तो कोई सिफारिश नहीं है हल्दी में ऐसे कोई भी दवाई छिड़कने की, पर आपकी हल्दी जमी नहीं है क्या बिल्कुल भी?
0: ना जमी नहीं, जमेगी, पानी दिया दूसरा।
2: अच्छा तो अभी और साठी पहले ही हो रही है?
0: हाँ पहली जमगी, पहले पानी में साठी।
2: तो जब आपने हल्दी बोई थी उस टाइम अड़ंगा था या नहीं था?
0: नहीं जी, बुरा वर्ग का बांध था बहुत बढ़िया।
2: अच्छा उसके बाद ये होगी है, तो देखो हर कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि हल्दी में हम ये कर दें, पर वैसे कोई भी चौड़ी पत्ती वाला अगर हल्दी जामी नहीं है तो चौड़ी पत्ती वाले का करोगे तो कंट्रोल हो जाएगा, पर जो अगर मैं लेकिन उसका ये असर हो सकता है कभी हल्दी ना जामे, पर वो काम करती है जो जमा जम। जी जी जी बिल्कुल, क्योंकि देखो जर्मिनेशन उसका नीचे शुरू हो गया होगा, 20 दिन हो गए आपकी
0: ऊपर तो आई नहीं।
2: हाँ उसका जमाव नीचे शुरू हो गया होगा,
0: गुंडे कैड रही है, मुंह वाले कैड रही है जमीन में ले।
2: जी जी जी, तो इसके अंदर वैसे
0: कितना उसमें दूसरा
2: एरिया कितना है वो?
0: 1/2 किला जी।
2: हाँ ज्यादा हाथ से ही निकालनी पड़ेगी वो।
1: एक थोड़ी सी मेहनत कर लो, दवाई का छिड़काव करोगे पीछे लागेंगे, धराती तो निकाल लो, छाटी तीसरी चीज जो आकर एक जगह जड़ पाओगी बहुत दूर का क्षेत्र खाली हो जाएगा।
0: हाँ,
1: कोशिश करो कुण बन ला लो और दो भैया का साथ ले लो। हाँ ना ना बैठे तो आपकी खतर। हाँ कोई बात नहीं है, आए अब तक कर सको फोन तो ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी आपका भी बहुत
1: जी डॉक्टर साहब।
2: हाँ दूसरा फिर वही है, मिट्टी की जांच के हिसाब से जैसे हमने खाद डालनी है, खाद भी अब संतुलित खाद का प्रयोग करना है, क्योंकि ज़्यादातर अब किसान भाई क्या है भाई, यूरिया है, DAP है, इनको ही खेत में डालते हैं। पहले जैसे हम हरी खाद लगाते थे, हरी खाद का भी चला गया, अब जैसे भैंस कम हो गई है तो जो हम कैचुआ खाद या हमारी जो गोबर की खाद FIM होता था वो भी कम हो गया।
1: जी हेलो।
0: राम राम।
1: राम राम, नाम बता दो।
0: नाम भाई साहब सतबीर बोल रहा है गाँव सुनारिया से।
1: सतबीर जी सुनारिया से। हाँ जी पहलवान जी बताओ, समस्या बताओ।
0: डॉक्टर साहब को भी पहले राम राम।
2: जी जी ना, नमस्कार सतबीर जी, कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया है डॉक्टर साहब। एक

0: ਧਰਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿਹਦੀ?
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਉਹ ਆਜ ਹੋ ਗਈ 12 ਦਿਨ ਕੀ ਵੱਡੀ ਆਜ ਅਮਰੀ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੀਲੀ ਪੀਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਆ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ?
1: ਦੇਖੋ ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਆਪਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਰੱਖਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਬੜੀਆ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਹਿਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਮੈਂ
0: ਨਾ ਜੀ ਨਹਿਰ ਕਾ ਕੋਨਾ ਲਗਤਾ ਟੂਬ ਲਗਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪਰ ਥੋੜਾ ਕਲਰ ਸਾ ਹੈ ਪਾਣੀ।
1: ਹਾਂ ਤੋ ਇਸਮੇ ਨਾ ਨਮਕ ਕੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕੌਣ ਸਾ ਨਮਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਗਾ, ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰੱਖਾ ਤੋ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਮਕ ਹੋਤੇ ਹੈ ਤੋ ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਸੁਨਾਰੀਆ ਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰੋਹਤਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਯੂੰ ਲਗਾ ਲੋ ਤੋ ਸਭ।
0: ਹਾਂ ਜੀ 22 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ।
1: ਹਾਂ ਤੋ ਇਸਮੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲੋ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਰੋਹਤਕ ਮੇ ਉਸਕੋ, ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਸੇ ਜਲੀ ਜਲੀ ਸੀ ਹੋਗੀ ਯਾ ਪੀਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ?
0: ਨਹੀਂ ਜਲੀ ਜਲੀ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
1: ਜਲੀ ਜਲੀ ਮੇ ਤੋ ਯਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਨਮਕ ਕਾ ਹੀ ਹੈ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਕੌਣ ਸਾ ਨਮਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਿਪਸਮ ਡਲ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲੋ ਆਪ ਪਾਣੀ ਕੋ ਤੋ ਉਸਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕੌਣ ਸਾ ਨਮਕ ਹੈ।
0: ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਬਤਾਓ ਕੁਛ ਕਿਆ ਕੁਛ ਕਰਾਂ?
1: ਨਹੀਂ ਅਭੀ ਅਬ ਜਬ ਨਮਕ ਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੇਰਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰ ਜਿਪਸਮ ਡਾਲ ਦੋ ਤੋ ਫਿਰ ਉਸਕਾ ਉਸਕਾ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਲਿਆਓ ਆਪ, ਕੱਲ ਕਰਵਾ ਦੇਂਗੇ ਆਪਕਾ ਚੈੱਕ ਸੈਂਪਲ, ਕੱਲ ਹੀ ਬਤਾ ਦੇਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਫਿਸ ਮੇਂ ਮਿਲੂੰਗੀ ਮੈਂ ਆਪਕੋ।
2: ਸਤਬੀਰ ਜੀ
1: ਹੈ ਨਾ?
0: ਹਾਂ ਜੀ।
2: ਇਹ ਬਹਿਣ ਜੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਜੀ ਯਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਰੋਹਤਕ ਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਓ।
0: ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ,
2: ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਓ, ਗਿਲ ਗਿਲ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦੇਂਗੇ, ਜੋ ਹੈਲਪ ਹੋਗੀ ਵੋ ਕਰੇਂਗੇ ਔਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
1: ਅਗਰ ਕਿਸੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਵ ਕੀ ਕਮੀ ਹੋਗੀ ਤੋ ਵੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਤਾ ਦੇਂਗੇ ਆਪਕੋ।
2: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ।
1: हाँ तो उसके अंदर अब हम संतुलित खाद की जब बात करते हैं तो उसमें हरी खाद भी हम इनकॉर्पोरेट करें, कब कर सकते हैं? इस पैडी वीट जैसे हमारा धान और गेहूं का क्षेत्र है ज़्यादातर, तो इसमें जैसे ही हमारी गेहूं की कटाई होती है उसके बाद हम हरी खाद जो हमारा जंतर है उसको हम ले सकते हैं। अगर धान भी लेना है तो बीच में हमारे पास इतना समय है कि वो खाद हम ले सकते हैं
2: जी।
1: गोबर की खाद का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, जितनी भी हमारी कृत्रिम खाद हैं इनको हम कम करें। क्या है कि जैसे हमारी मिट्टी की रिक्वायरमेंट तो है 20 किलो की है, जैसे यूरिया डाल रहे हैं हम उसमें 40 किलो,
2: ठीक,
1: तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो बार बार सबसे यही अनुरोध है, अपनी मिट्टी की जांच करवाओ, बिल्कुल नॉमिनल मतलब सारे ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट में आजकल लैब हो गई हैं, तो सारे किसान भाई अपने जो सबसे पास पड़ती है उस लैब में जाके सैंपल चेक करवा लें, उस हिसाब से अपने खेत में खाद को डालें।
2: कई दिन का टाइम लग है चेक करवाना हो तो?
1: देखो चेक करवाने में जब सीजन का टाइम जैसे अब है अप्रैल और मई का महीना होता है, इस टाइम क्या होता है कि बहुत सारे सैंपल आते हैं।
2: अच्छा,
1: तो आपको 10 दिन जी।
2: हाँ जी,
3: राम राम जी।
2: राम राम जी, नाम बता दो।
3: नाम सुदेश कुमार जी, जिला रोहतक जी, ब्लॉक खलालोर जी, तहसील गांव लाली जी।
2: ओ बड़ी अच्छी बात है, समस्या बताओ।
3: समस्या की कृषि कृषि के बारे में?
2: हाँ कृषि के बारे में।
3: अच्छा जी, DSR से धान लाने जी, मैं उसका उपचार बताओ जी कैसे क्या।
1: DSR से धान लगाना? अच्छा। डायरेक्ट सीडेड राइस, सीधी बिजाई करनी है धान की। अच्छा तो हाँ जी
3: बताओ, पानी सूखे में बो दिया जी, पानी देगी बवा जी, कितना डाला जी पासपोर्ट?
1: देखो दोनों विधि है, सूखे की भी है पानी दे के भी है। आपके किलों में क्या स्थिति है, नमक वगैरह ज्यादा है? अगर लगता है थोड़ा बहुत रहे, क्योंकि कलानौर के काफी ब्लॉक में क्या है कि नमक है।
3: हाँ जी बिल्कुल है ना? जी बात है।
1: तो उसमें अगर नमक वाला एरिया है तो हम उसमें लगा देंगे सूखे में, वो ज्यादा बढ़िया है। सूखे में लगा के ऊपर से पानी दे दें तो जो नमक है वो थोड़े नीचे चले जाएंगे, जमाव ठीक हो जाएगा। इसके अंदर अगर आपने DAP डालना है तो आप इसमें 25 किलो DAP डाल दो।
3: 25 किलो एक किलो
1: उसके अंदर। हाँ, फॉस्फोरस आपका पूरा हो जाता है, उसमें आपका नाइट्रोजन भी पूरा हो जाएगा। अगर वो नहीं मिलता तो आप NPK भी डाल सकते हो, जो आपका 19-19 वाला आता है। अगर नहीं कर रही आप DAP डाल लो उसके अंदर, नहीं सिंगल सुपर फॉस्फेट भी डाल सकते हो उसके अंदर आप। फिर आप यही डाल दो, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा खाद की भी जरूरत नहीं है, ज्यादातर बासमती लेते हैं हम। कौन सी वैरायटी लेके, कौन से बीज लेके आए हो आप?
3: हम तो 11 के बोलेंगे जी, 11 का।
1: तो ये जो 11-21 वैसे भी लंबी बढ़ जाती है, इसके अंदर ज्यादा खाद की जरूरत नहीं है। तो 25 किलो DAP आप बो दो इसके अंदर, फिर 21 दिन पे, 42 दिन पे, 3 हफ्ते बाद, फिर उसके और 2 हफ्ते बाद 20-20 25-25 किलो यूरिया और दे देना उसमें। बस इससे ज्यादा खाद मत देना जितनी बार, और एक बार में ज्यादा मत डालना, उसको अलग अलग हिस्से करके डालो, उसका ज्यादा अच्छा प्रभाव आता है।
3: एक किलो में कितना बीज डाले जी? डी ए खाद
1: 1 किले में 8 किलो बीज आपने डालना है।
3: 5 किलो की समय 5 किलो का विचार बनाया, ये 5 किलो ठीक नहीं रहेगा।
1: देखो अगर जम गया सारा तो काम चल जाएगा। कई बार क्या होता है, 8 किलो बीज ये है कि इस टाइम जब हम बिजाई करते हैं सारा बीज जमता नहीं है। अगर आपका जम गया तो कोई कम नहीं है, फिर 5 में भी काम चल जाएगा, है ना। एक इसमें आपने, आप क्योंकि बो रहे हो तो एक ये जरूर ध्यान रखना है, इसमें अड़ंगे की बहुत समस्या आती है जो सीधी बिजाई करते हैं। तो बिजाई जब आपने कर दी सूखे में, पानी का भर दिया, और पानी भी आपने दो तीन बार लगाना पड़ेगा, दो दो तीन तीन दिन के अंतराल पर, जब तक जमे नहीं वो, ठीक है। और एक अड़ंगे की दवाई डालनी है। मान लो आपने आज लगाया है, पानी का भर दिया, तो तीसरे दिन जैसे ही उसमें पैर टिकने लायक हो, आपने पेंडीमेथिलीन दवाई आती है वो, 1 लीटर 300 ml, हाँ वही
3: वाला
1: वही है वही है।
3: लगा के पानी दे दे, ठीक नहीं देगा?
1: देखो वैसे तो वो तब भी काम करेगी, पर जो हमारी सिफारिश है भाई, उसका ज्यादा अच्छा जो काम करेगी, पूरे अड़ंगे को कंट्रोल करेगी, उसके लिए हम पहले आप पानी दे दो और फिर उसका स्प्रे कर दो।
3: हाँ, तो नमी नमी की जरूरत है जी यार।
1: जी जी जी जितनी नमी होगी उतना बढ़िया काम करती है वो।
3: ये मौसम के विचार की जानकारी मिल सकती है
2: मौसम की
3: मानसून का?
2: जानकारी तो ऐसा है, आज भी मान के चलें थोड़ा बहुत छिटपुट बूंदाबांदी हो सके हैं,
1: बिल्कुल।
2: बाकी आगे कई दिन भी आंशिक बादल तो रहेंगे लेकिन कोई बूंदाबांदी के आसार नहीं है, और कोई होंगे तो तड़के सांझ ने फिर बैठेंगे, सांझ ने फिर उसकी ताजा जो भी बातचीत होगी आपने जरूर बताओगे, रेडियो सुनते रहो।
3: तड़के शाम तड़के क्या बजे बैठा रहे जी?
2: तड़के बैठेंगे 6:20 पे बैठकर 7:30 बजे तीन रागनी भी सुनवाओगे, मौसम भी बताओगे, सारी बात करेंगे। हाँ जी, उसके बीच में मौसम किसी न किसी टाइम पे बता दिया करा, कल भी बताओगे, परसों भी बताओगे, रोज़ बताओ। हाँ
3: तो आकाशवाणी सुना जी, वो तो फिर मुंबई आकाशवाणी पकड़ लिया
2: कोई
3: जी, वो
2: बात नहीं,
3: तो
2: बम्बे की भी सुनो, रोहतक की भी सुनो, दोनों सुनो,
3: जी कदे दिल्ली का पकड़ा दे कदे बॉम्बे
2: ठीक है
3: का
2: जी। ना
3: आकाश।
2: ना ठीक बात
1: एक
2: आपकी,
1: एक
2: सुनते
1: ना
2: रहो।
1: मैं मौसम के लिए ही आपको बताऊंगी, हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसकी मौसम ऐप भी है, ई कृषि मौसम करके है, तो वो ऐप भी आप जो आपके घर बच्चे हैं उनके पास उसे फ़ोन होंगे भाई, जो मल्टीमीडिया फ़ोन होते हैं उसमें डाउनलोड करवा लो, और वो अपडेट करते रहते हैं, यूनिवर्सिटी के रोज़ मैसेज आते हैं उसमें, जैसे ही बारिश का होगा या फिर सूखे का होगा, आंधी का होगा, जो भी होगा उसके अंदर मैसेज आता है।
3: नहीं जी, हमारे तो आते कल आता था, तो साल पहले आता था, अब नहीं आते जी।
1: चलो फिर से आपको जोड़
2: फिर आने
1: देंगे।
2: शुरू हो जाएंगे,
1: हाँ
2: कर लो
1: जी
2: चालू, ठीक है जी,
3: ठीक
2: बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब ज्यादा भैया की, हेलो,
4: दलजीत भाई, राम राम।
2: हाँ जी राम राम, नाम बताओ।
4: जी भाई, मैं बादल सिंह गिल, गांव पांडु पिंडारा, जिला जींद।
2: पांडु पिंडारा जिला जींद से बादल सिंह गिल बोल रहे हैं, समस्या बताओ भाई जी।
4: ऐसे है कि हमने अपने कोठी में एक पार्क सा बना रखा है, और ये फैकस के पौधे लगा रखे हैं,
1: जी
4: हाँ, इनमें इनके पत्ते सूख के ऊपर से आधे आधे,
1: अच्छा
4: तो डॉक्टर साहब ऐसा है कि उसमें कुछ जिस तरह पत्ते में देखते हैं रुई भी दिखे, ऐसा उसमें कोई सुंडी तो नहीं हो?
1: रुई सी दिख रही है, मतलब ऊपर से कैसे लग रहे हैं, गल गए या कीड़े ने
4: नहीं,
1: काट दिए या कैसे हो रहे हैं,
4: वो
1: धब्बे
4: तो
1: हो रहे
4: ऊपर
1: हैं?
4: का पत्ते वो तो सूख गए बिल्कुल, लेकिन कई कई पत्ते पर रुई सी दिखे लगी।
1: तो उसमें आपको लग रहा है कोई सुंडी का, ऐसे कोई कुछ सुंडी भी दिखी है? और कोई कितने पौधे हैं फाइकस के?
4: पौधे तक पूरी बाड़ी बना रखी है कोठी में।
1: अच्छा
4: हाँ जी, तो हम तो अगर वो बढ़िया हरे भरे तो सुंदर लग गए।
1: देखो मेरे हिसाब
4: हाँ
1: से एक बार आप अपना जो उसका सैंपल है वो दिखा लो, उसमें अगर आपको सुंडी लग रही है तो चलो उसका स्प्रे करवा दें, लेकिन सुंडी का
4: नहीं, ये तो मतलब मुझे शक है, मैंने ये नहीं कहता कि सुंदर
1: आप
4: लगी
1: पांडु
4: हो।
1: पिंडारा में हो, केवी के जींद बिल्कुल ही, मतलब पांडु पिंडारा गांव में ही आपका कृषि विज्ञान केंद्र
4: नहीं
1: है।
4: यार, मैं केवीके से 500 गज दूर बैठा हूँ।
1: हाँ तो वहां पे हैं, आप वैज्ञानिक हैं वहां पे, एक बार सैंपल दिखा लो।
4: ठीक,
2: हेलो, तो डॉक्टर साहब एक समस्या बार बार बताइए, कई श्रोताओं ने, प्योद पीली पड़े है,
1: हाँ
2: पीली पड़न का देखो एक तो धूप पड़े है।
1: नहीं बहुत सारे धूप, तो अब इतना मौसम इतना ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि बीच में जैसे बारिश हुई है फिर से
2: जी
1: ठीक हो गया था, पर अभी 2 दिन से था, तो आज पर फिर मौसम ठीक है, आज
2: हाँ
1: ज्यादा गर्मी नहीं है।
2: ठीक
1: लेकिन सबसे जो मेन कारण है वो एक तो नमक है, क्योंकि जो पानी बढ़िया पानी है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है।
2: नमक मतलब हमारी जमीन में उस पानी
1: दोनों में, क्योंकि पानी में नमक है जब भी जमीन में नमक है
2: जी,
1: है ना
2: जी।
1: तो उस नमक के सबसे ज्यादा जो मेन अगर आप देखोगे तो नमक के कारण ऊपर से थोड़ा थोड़ा वो पीला होकर जल जाता है। दूसरा कई बार भाई पोषक तत्व की कमी आ जाती है, अगर पूरा पत्ता पीला हो रहा है तो इसका मतलब वहां पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, तो उस पोषक तत्व के लिए हम कुछ करेंगे उसमें।
2: प्यौद का पूरा पत्ता,
1: हाँ पूरा पत्ता पीला हो जाए तो
2: डॉक्टर साहब वो पता तक लग दो, वो सुई ही लिख दे।
1: नहीं, वो सुई से ऊपर से अलग ही पता लग जाएगी, जो ऊपर से अगर जल गया ना हाँ, तो वो नमक का है।
2: अच्छा,
1: इसीलिए मैंने जैसे उनको कहा भी कई बार हाँ, किसान पूरी तरह से बता नहीं पाता उस बात को
2: जी, जी, जी।
1: कि भाई वो नमक का ज्यादा जला हुआ है पीला है, हम उस सैंपल को देख के और फिर बता देते हैं।
2: अच्छा,
1: कि भाई इसमें नाइट्रोजन की कमी है या फिर इसके अंदर नमक के कारण है। नमक में क्या होता है कि बिल्कुल टिप जलेगी, शुरू में तो छोटा सा ही है, बाद में धीरे धीरे किनारे भी उसके हल्के फुलके जलते हैं।
2: यानी कि पहला आपने नमक की समस्या बताई
1: हाँ,
2: और भी कोई समस्या?
1: दूसरा नाइट्रोजन है, तीसरा अगर पीला पड़ के हल, क्योंकि धान में पहले हमारे क्या था कि लोह तत्व की कमी नहीं थी हमारी जमीनों में, लेकिन अब जब हम देख रहे हैं तो लोह तत्व की, खासकर जब धान के टाइम में लोह तत्व की काफी कमी आती है।
2: अच्छा,
1: पिछले सालों से जो देखते आ रहे हैं, तो उसकी पहचान ये है कि भाई वो पीला होके और सफेद हो जाएगा आपका पत्ता।
2: अच्छा,
1: और ये शुरू में ही आ लेती है, 10-15-20 दिन के अंदर आपकी कमी आलेगी, कई बार फील्ड में जब हम इसकी ट्रांसप्लांटिंग रोपाई कर देते हैं उसके बाद भी आ जाती है।
2: अच्छा,
1: तो उसका इलाज ये है कि भाई लो फेरस सल्फेट आता है हरा कशिश, जैसे किसान भाई भी बता रहे थे कि पंसारी की दुकान से हमने ला रखा है
2: वो छिड़क दे,
1: वो उसका 0.5% है, 500 ग्राम 100 लीटर पानी में उस
2: अच्छा,
1: गोल का स्प्रे कर दें हम।
2: एक तो वो हो गया,
1: हो गया।
2: और भी कोई देसी नुस्खा हो उसका?
1: देसी इसके अंदर अब मान लो नाइट्रोजन की कमी है, फिर तो हमें यूरिया का ही करना पड़ेगा, अगर बहुत छोटी है तो यूरिया डालने के बजाय जिंक यूरिया का स्प्रे भी कर सकते हैं उसके अंदर
2: छिड़काव।
1: हाँ जी,
2: वो फायदेमंद
1: जी।
2: चलो, ये तो प्योद संबंधी बात थी, जो एक मुख्य समस्या थी उसकी तरफ ध्यान रखा है। दूसरा, ईब एक टाइम ईसा आ गया कि इस टाइम पे हरा चारा नहीं मिलता
1: जी,
2: पशु बाटे देखे जा है, तो कौन सा हरा चारा ईसा है? ये तो हर साल जरूर पड़े हमने कि इस मौके पे बोया जाए वो ठीक भी हो जाए।
1: देखो, जैसे अगर पानी की सुविधा है तो सारे किसान भाई जवार ले लेते हैं, मार्च से शुरू कर सकते हैं हम जवार को।
2: अच्छा,
1: मार्च में बिजाई कर ले, अप्रैल में कर ले, मई में कर ले, मार्च से शुरू कर सकते हैं उसकी बिजाई। लेकिन कई बार हमारे पास, कई बार क्या, ज्यादातर पानी की सुविधा नहीं है तो हम नहीं ले पाते
2: जी।
1: उसके अलावा हमारे पास नेपियर ग्रास है
2: हाँ।
1: ये भी एक इसका ऑप्शन है कि भाई नेपियर ग्रास वो पूरे साल चलता है, पेरिनियल है आपका, 2-3 साल तक उसका हम ले सकते हैं।
2: एकला बहुत उसने
1: हाँ, अकेला भी ले रहे हैं, ले सकते हैं पेरिनियल।
2: जो हमारे किसान भाई है ना
1: हाँ,
2: उनके फोन हमारे तो न्यू को हैं भाई, कौन है या ग्राज्य होगा पशु खांदे को?
1: ये तो है, देखो जो बरसीम का, जो जवार का स्वाद है और पशु इतने सालों से जब खाते आ रहे हैं उसको, तो एकदम नहीं बनता। और उतना उसके अंदर भाई, हम उसको ये कहें कि उसके जो पोषक तत्व हैं वो भी उतने उसके अंदर नहीं है जितने हमारे जवार में हैं।
2: अच्छा,
1: लेकिन वही है, जब हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है और पूरे साल जब चारा चाहिए, देखो पूरे साल की कोई फसल नहीं है,
2: कोई फसल नहीं।
1: पूरे साल के लिए जो नेपियर ग्रास है वो बहुत बढ़िया है।
2: यो तो एक बार बो दिया तो चल भी कई साल,
1: हाँ कई साल चलता है।
2: तो बोने का तरीका बता दो ना कुछ भाई, कौन है
1: इसके? वो होती है सेट्स होते हैं या गांठे कह लो, 28,000 वो गांठे सी सेट से लेने, जैसे पोरी है एक तरह से
2: हाँ।
1: वो एक किले की बिजाई के लिए 28,000 के आसपास है उसकी अमेरिका।
2: कितने लेकाओं का आपस में दे दवा दें?
1: इसकी प्रोडक्शन तो कहाँ पे है ये तो।
2: अच्छा, वैसे जो है ना, जो कर भाई बताऊं वो किए कहते हैं भाई, मैं तो एक जानकार ला रहा था उस पे लिया था कुछ का सा,
1: तो फिर
2: और ला दिया था
1: हाँ, तो फिर वो हो जाता है
2: हाँ।
1: तो इसमें बहुत ज्यादा ऐसे, क्योंकि वैरायटी भी इसमें नेपियर हाइब्रिड है एक
2: जी,
1: वही है, ज्यादा किस्में भी नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटी की भी एक ही है इसके अंदर। पर ये क्योंकि देखो उससे है ये भाई, उसके जो जिस तरह गन्ने के सेट्स होते हैं
2: जी,
1: इस तरह
2: जी,
1: से इसके सेट्स हैं, हो जाता है चल जाता है हाँ। ज्यादा इसको मेहनत भी नहीं चाहिए।
2: अच्छा, हेलो
5: जी, राम राम जी।
2: हाँ जी, राम राम, नाम बता दो।
5: राम जी, मैं दलजीत सिंह, डिस्ट्रिक्ट हांसी।
2: हांसी से बोल रहे हैं तो?
5: हाँ जी, माडा से।
2: हाँ बताओ, समस्या बताओ।
5: हाँ जी, समस्या तो ये है, मैं थोड़ा जीरी बोना चाहता हूँ, 60 की सुकम है
1: जी।
5: छिंटा देगा कितना बीज पड़ेगा?
1: 8 किलो बीज चाहिए जी, सीधी बिजाई करनी है ना, जाइए लगाने हैं या छिट्टा दे?
5: मशीन, मशीन के साथ नहीं दी, वैसे छिट्टा देगे?
1: हाँ, छिट्टा देके भी 8 किलो बीज चाहिए है।
5: अरे काफी है?
1: हाँ बहुत है, 8 किलो।
5: अच्छा, पानी एक में काम चला दो में?
1: आप किसकी बात कर रहे हो, धान की बात कर रहे हो ना?
5: आधे धान की,
1: तो एक पानी में तो क्यों कर काम चल लेगा धान का।
5: कहने का मतलब लगातार दो लगाए थे नहीं।
1: देखो ऐसा है, अगर आप पहले बताओ सुख

0: फटे तो 10 दिन भी निकल जाते हैं, 15 दिन भी, कई बार ऐसी जमीन होती है हमारे 20-25 दिन
1: ये
0: भी निकल जाते
1: तो
0: हैं।
1: मैडम ऐसा है, अब तक मतलब 10 से 15 पड़ी जाती है।
0: हाँ फिर तो, क्योंकि उसमें क्या, नहीं जमीन पे डिपेंड करता है, कई किले ऐसे
1: हाँ
0: होते हैं
1: जैसे,
0: जिसमें आपके 25 दिन भी नहीं पड़ती।
1: हाँ जी हाँ जी, रेतली
2: सुनो,
1: जमीन कौन
2: आप ना
1: फटे।
2: अपनी जमीन की तासीर का बढ़िया बेरा है।
1: हाँ जी हाँ
2: और
1: जी,
2: जुकर
1: हुण जो आ दलजीत
2: सुनो,
1: सिंह भाई थोड़ी
2: गेहूं की डाल
1: उम्र मिटी
2: बोगे
1: जाती है।
2: ना, अत गेहूं की डाल वो
1: नहीं
2: पकानी पड़ेगी, पानी उसमें देना पड़ेगा, कदे फिर पानी छोड़ दो।
1: मैं तो आई साल, नहीं आई साल बोलता हूँ वैसे।
2: हाँ होगी ठीक,
1: हाँ मैं थोड़ा, हाँ बढ़िया हो जाती है, इससे बढ़िया हो अपने प्योज वाली से।
0: हाँ और
1: बिल्कुल
0: मेहनत भी कम है जी उसमें तो, कितनी लेबर लगती है,
1: हाँ जी,
0: गार्ड लगानी
1: पानी
0: पड़ती है
1: पानी कम देने
0: बहुत।
1: पड़ते हैं जी,
0: हाँ ये तो बहुत बढ़िया तकनीक
2: और
0: है,
2: जो आप
1: मतलब
2: छींटा
1: तीन
2: दे के
1: चार
2: कर रहे
1: साल
2: हो
1: से।
2: ना,
1: हाँ जी
2: जो आपने को छींटा दे के करेंगे, एक सिफारिश वैज्ञानिक सिफारिश यह है कि जाइए ला लो, उसमें कम खरपतवार होंगे और जमाव बढ़िया हो जाएगा। छींटा देने की
1: क्या लगा
2: विधि
1: लिया,
2: ठीक नहीं
1: क्या
2: बताई
1: लगा
2: जाती,
1: लिया
2: छींटा की विधि ठीक नहीं बताई जाती, जाइए लगा लो।
1: जी, देखिए मैं दलजीत भाई, उसमें कई दफा कलड़ हो जाती है,
2: अच्छा
1: तो फिर पानी लगा हुआ
0: बारिश,
1: सफेद पीली हो जाती है।
0: हाँ
1: अच्छा
0: बारिश
1: अच्छा
0: आए तब होती है, नहीं तो नहीं होती। और सूखे में बोओगे तो दिक्कत नहीं है जी, ये लगाओगे जब, अगर आप
1: नहीं, उसमें
0: बत्तर,
1: मैडम ऐसा है, 2-3 पाले लगातार लगाने पड़ते हैं, जमा होने बाद वह पीली पीली हो जाए, सफेद सफेद सी।
2: चलो फिर
1: सब
2: तो करो इस
0: नहीं,
2: तरीके से।
0: सफेद सफेद का भी इलाज है, जो सफेद सफेद हो जाती है ना उसमें
1: अच्छा
0: लौह
1: तीन
0: तत्व की
1: चाली
0: कमी आ
1: तीन
0: जाती
1: आने
0: है
1: जाने जो मैं बोरा रखी, मैंने थोड़ा 1 एकड़ में बोरा रखी, वो कर लोगी जो ऊपर है
0: हाँ
1: जी।
0: हाँ
1: आज आज मैडम उसमें पानी लगा 10 रोज की होगी थी।
0: अच्छा,
1: हाँ ऊपर वो नीचे तो जाए मेरी सारी नीचे तो।
0: नहीं आपने एक चीज और बताई है, सफेद उसको ये मत सोचो वो कमजोर है, सफेद एक पोषक तत्व की कमी आ जाती है, जो
1: हाँ
0: सफेद
1: जी
0: हो
1: हाँ
0: रही
1: जी,
0: है
1: वो
0: ना।
1: मैं प्रोग्राम मैडम सुनता हूँ, मैं वो बताते हैं, मैं लोगों की कुछ कमी हो जाती है। हाँ
0: हाँ, उसका स्प्रे करवा दो,
1: जी
0: आप
1: हाँ
0: दो स्प्रे
1: जी
0: करवा दियो हफ्ते 10 दिन के अंतराल पे।
1: जी जी
2: जी
1: जी
2: जी
1: जी फिर
2: जी
1: ऐसा है जी, वो थोड़ी सेंगनी हो जाए है, चीते वाली अपना घर होती है।
0: देखो जो आप सीधी बिजाई लेते हो ना, उसमें शुरू के महीने 40 दिन तक आपको लगेगी कमजोर है। क्यों लगेगी? क्योंकि उसकी जड़ें बन रही है नीचे, जल्दी
1: यानी
0: पानी भी नहीं
1: कमजोर
0: देना
1: नहीं
0: हमने।
1: होती वो।
0: क्या हो जाती है?
2: हेलो, लगता है संपर्क टूट गया है। चलो इस भाई ने बताया है कि जमीन इसी हिसाब की है कि
1: हेलो
2: उसमें छींटा दे के अगर वो करें तो ये ठीक हो है। अच्छा वो कर लेंगे। श्रोता दूसरे लाइन पे है।
1: हेलो,
2: हेलो, हाँ जी नाम बताओ।
1: नाम मांगेराम बोला जी, किराड़ा से।
2: हाँ जी मांगेराम जी, बताओ समस्या बताओ।
1: निर्मल, मैं पानी लाने सोचा था, डॉक्टर साहब ने पूछा कितना दिन में लगाना चाहिए।
0: देखो 45 दिन के तो बाद बाद लगाओ। कौन से महीने में बोई थी, अप्रैल में या मई में बोई थी?
1: अप्रैल का लास्ट हफ्ता ही बोल रही जी।
0: हाँ तो 45 दिन के बाद लगा दो, अगर 45 दिन के हो गए हैं तो लगा दो।
1: हाँ तो उसमें पानी लगा के फिर खाद कूद भिजवानी
0: हाँ खाद
1: पड़ेगी
0: जरूर देना है, खाद उसके अंदर शुरू में नहीं दिया होगा आपने, क्योंकि जनरली हम
1: ना?
0: देते नहीं, हमारी सिफारिश है कि 3 बार भाई आपने देनी है, एक बार शुरू में बिजाई के टाइम पर, ज्यादातर किसान नहीं देते, और फिर उसके बाद जब भाई बोकी बनती है उस टाइम देना है ना। तो
1: हाँ जी,
0: इसमें दिया नहीं होगा तो अब दे दो उसके अंदर आप पानी दे
1: ना
0: के।
1: खाद तो पहले दिए रहा है थोड़ा सा।
0: थोड़ा दिया था?
1: हाँ
0: हाँ तो थोड़ा फिर रुक जाओ अभी, वैसे अप्रैल के मान लो 15 के आसपास लगाई होगी तो 10-15% उसके अंदर आ भी गई होंगी, वो जो छोटी छोटी
1: नहीं जी,
0: बो
1: वो लास्ट हफ्ते ही बिजाई है जी।
0: लास्ट हफ्ते की, तो थोड़ा और रुक जाओ,
1: अच्छा
0: पानी के
1: तो
0: साथ ही खाद दोगे, क्योंकि नहीं तो फिर खाद कैसे दोगे, ये भी बात है।
1: खाद खाद कैसे देनी चाहिए आप बताओ
0: नहीं
1: जी।
0: पानी के साथ ही दो, जब भी उसका असर आएगा, मान लो आपने, आपकी अगर रेतीली जमीन है तो आप पहले पानी दे दो और फिर खाद डालो। अगर आपकी,
1: रेतली कौन चिकनी जमीन है जी?
0: हाँ अगर ना, फिर चिकनी में नहीं करना, अगर रेतीली नहीं है ना तो उसमें पहले आप खाद डाल दो और फिर पानी दे देना, लेकिन रेतीली में आपने पहले खाद नहीं डालनी, नहीं तो सारी का नुकसान ही हो जाता है, पौधा नहीं ले पाता उसको।
1: यूरिया देवांगे?
0: हाँ यूरिया दे देना।
1: अच्छा कितने देनी पड़ेगी 1 एकड़ की जी?
0: देखो वैसे तो 1 एकड़ के अंदर जो अपनी सिफारिश है, आपने 3 बार उसको डालना है, मान लो 130 किलो है आपकी, हमारी सिफारिश, तो उसमें आपको तीन हिस्सों में बांट लो, लेकिन मैं फिर यही कहूंगी कि भाई मिट्टी की जांच करवाओ। मान लो आपकी को जरूरत 2 कट्टों की है तो उन 2 कट्टों को हम 3 हिस्सों में बांट लें, लेकिन आपने नहीं करवा रखी तो इस टाइम उसमें आप 1 कट्टा डाल देना।
1: आधा कट्टा। हाँ
2: ठीक
1: जी ठीक
2: ठीक है जी।
1: है जी। नमस्कार
2: हेलो
1: जी,
2: नमस्कार जी, नाम बताओ।
1: जयवीर जताई से बोल रहे हो सर। तीन
2: हाँ जयवीर जी बताओ, क्या समस्या है कृषि संबंधी।
1: जमुना के पेडे हैं जी, उनका बड़ी बड़ी लाग रही है और पुटा पड़े हैं जी, तीनों
2: किस
1: है जी।
2: खेत में है, क्रियाशील क्षेत्र में है।
1: घर जी, जमा था 600 गज का प्लाट अपने पास मकान में,
2: अच्छा
1: आया
2: कितने,
1: समलाती मंडी जी।

0: जी
1: कितनी लग रही हैं, पूरे पेड़ पे लग रही हैं, बहुत
0: हाँ सारा लग रही है जी, सारा है
1: थोड़ी तो गिरे
0: जबरदस्त।
1: भीगी फिर नीचे, उसका जितना ब्योंत है उतनी रखेगा वो, सारी तो नहीं जड़
0: अच्छा
1: रही ना,
0: अच्छा
1: कुछ तो ऐसे जड़ेंगी
0: अच्छा
1: है
0: मैं
1: ना।
0: कहूँ था यो गंदा पड़ा करे रेखा था डट जा
1: यार कुछ
0: करे।
1: ऐसे भी होता है ना पौधे के, कई बार इतना ब्योंत नहीं उसका और इतना फल आ
0: अच्छा
1: जाता है, तो कुछ तो जड़ेगा
0: अच्छा जी
1: है
0: अच्छा
1: ना।
2: ठीक है जी।
0: वैसे अपना मिसिज बोली बुलाए तू फोन कर लेने जब मैं
1: हाँ नहीं ये तो ठीक
0: अपना
1: किया आपने, ठीक
2: हाँ तो
1: है
2: ठीक है, मिसिज बोली अच्छा करे आपने फोन कर लिया, और बिना पूछे भी कर लिया करो, हम तो बैठे हैं आपको दो रहे सुनन
0: हाँ
2: खातरे।
0: जी ठीक
2: बिल्कुल ठीक है जी।
0: है जी। एक और है जी छोटी सी
1: जी
0: समस्या,
1: जी बताइए।
0: आड़ू का पेड़ा है वो इब्बा लगा था और वो पीले पीले पत्ते हो जाए जी, उनमें पानी कितना रखें।
1: पानी तो देखो मान लो गर्मी का टाइम है तो 2-3 दिन के अंदर ही देना पड़ेगा। अब जैसे बारिश आ जाएगी, खाद वगैरह उसमें डाल लिया क्या, पानी की समस्या नहीं
0: हाँ जी
1: मिलेगी।
0: गड़ी सड़ी दार दी
1: हाँ
0: दूसरी
1: हाँ
0: लगा दी थी
1: दीमक की भी, कैसे कहाँ से सूख रहा है आपका।
0: वो मतलब शायद उकर गा मार
1: अब
0: जाएगा
1: धीरे धीरे बारिश
0: ना।
1: आएगी ना तो ठीक हो जाएगा, बाकी दीमक की दवाई बीच में जरूर डालते रहा करो,
0: दीमक
1: क्लोरोपाइरीफोस
0: तो नहीं जी यार बाढ़ ग्रस्त है जी।
1: अच्छा, फिर ठीक है।
0: हाँ जी
1: हाँ
0: थैंक्स आकाशवाणी का।
1: हो जाएगा, अब जैसे बारिश आएगी ना ठीक हो जाएंगे।
0: अच्छा जी
1: खाद बीच में
0: ठीक
1: बस
0: है जी,
1: साल
0: ठीक
1: में 2 या 3 बार
0: है बात करियो जी, मिसिज तक करियो या पूछे थी बी कौन मान दिया
2: करवा दो, बात करवा दो। हाँ
3: बोले। हेलो
2: बहन जी बोलो,
3: जी, 2-3 पेड़ दोबारा के हैं
2: ये तो होगी बात है भाई साहब, तो होगी बात। और कोई समस्या तो और बताओ, बता दिया समाधान है
3: वो तो बस यही समस्या थी।
2: भाई, नहीं आओगी दिक्कत जो डॉक्टर साहब ने बताया है ना वो करो, अच्छे लगेंगी जामन मोटी मोटी। ठीक है जी।
3: ठीक
2: हेलो
3: हाँ ठीक
2: डॉक्टर साहब, चारा का जिक्र चाह रहा था। हेलो लगता है श्रोता कोई लाइन पे।
4: हेलो नमस्कार
2: हाँ
4: जी,
2: जी नमस्कार जी, नाम बता दो।
4: नाम सतीश सांगवान गांव सारंगपुर त्रिखिलाड़ी से।
2: हाँ जी बोलो सतीश जी, क्या समस्या है।
4: एक यागी बेल रखी है जी,
1: जी
4: इनका वो मादा फूल नहीं आते जी, नर फूल आते हैं सिर्फ दो
1: मादा आते ही नहीं
4: नर।
1: है,
4: हाँ नहीं आते जी, एक दो आया वो कंदगी जी।
1: वो गंद इसलिए जाते हैं, इसमें ना पोलिनेशन होता है तो कई बार, अब आजकल हमारे पहले जो कर दिया करते जो बढ़िया कीट थे अब वो कम हो गए, तो अब उसमें
4: अच्छा
1: पोलिनेशन नहीं हो पाता, प्रांगण कहते हैं उसको, वो नहीं हो पाता। तो उसके लिए आप क्या करो, जो मादा लगती है ना सुबह
4: हाँ
1: 5, 5:30, 5 बजे सिक लगाओ, 5 बजे जो नर फूल है उसको तोड़ लो एक बार, और मादा वाला है
4: अच्छा
1: उसको एक बार उसके टच करा दो। हैंड पोलिनेशन है ये, हाथ से हमें करवाना होता है, तो
4: अच्छा
1: इस सुबह सुबह पर ये बहुत जल्दी होता है, सुबह 5 बजे करवाओ इसको, लेट नहीं, जब वो खिला मिलेगा आपको पूरा, और उस टाइम
4: हाँ
1: उसके
4: हाँ सुबह सुबह खिला मिला है
1: हाँ
4: जी,
1: सुबह
4: तीन
1: सुबह
4: दिन
1: खिला मिलेगा, वो जो नर फूल है वो एक तोड़ लो, जितनी भी आपकी जो
4: अच्छा
1: गिया जिसके नीचे गिया लग रही है वो मादा है, छोटी सी गिया
4: हाँ हाँ
1: लगी
4: वो मादा है,
1: मिलेगी
4: वो एक
1: उन,
4: आध आता है जाते कम है वो
1: वो
4: मादा
1: इसलिए
4: वाले।
1: गल
4: अच्छा
1: जाता है, वो आएगा कोई बात नहीं, आएगा वो गंद जाता है, खराब हो जाता है क्योंकि पोलिनेशन नहीं होता, फिर आगे बनती ही नहीं गिया। तो सुबह सुबह उस
4: अच्छा
1: एक फूल को तोड़ो और जितने भी गिया बन रही है उनके ऊपर टच करा दो उसको,
4: ठीक है
1: ठीक
4: जी,
1: है।
4: ठीक धन्यवाद।
2: ठीक है जी धन्यवाद जी। हेलो
5: हेलो नमस्कार डॉक्टर साहब जी।
1: हाँ
2: हाँ
1: जी
2: जी डॉक्टर
1: नमस्कार
2: साहब सुन
1: जी,
2: रहे हैं, नाम बता दो
5: राम प्रकाश जी,
1: कहाँ
5: जी
1: से।
5: भिवानी से जी।
2: हाँ जी
1: जी
2: समस्या
1: बताइए
2: बताओ
5: सर, धान लगाने थे धाना बारे में कुछ जानकारी
1: जी,
5: देनी थी,
1: जी बताइए।
5: तो एक तो थोड़ी ही 2 किलिया में थोड़ी ही नूनी नहीं बोलते हैं आप
1: ठीक है,
5: वो है, तो उसमें कौन सा बीज कामयाब होगा, ज्यादा तो कौन थोड़ी नूनी है।
1: देखो सबसे पहले तो थोड़ी ज्यादा काम है, कैसे पता लगेगा, आपने चेक करवा ली अपनी।
5: नहीं चेक नहीं करो, आंखों से देख लेता हूँ उसमें ज्यादा मान लो जी, मेरा
1: नहीं
5: कहने का मतलब
1: हाँ
5: है
1: हाँ मैं
5: अच्छा जी।
1: आपको वैरायटी किस्म बताऊंगी कौन सी लगानी है उसमें, लेकिन एक बार देखो आपके लिए बढ़िया रहेगा वो, कि भाई आप उसको चेक करवा लो अपनी मिट्टी को, पानी को भी चेक करवा लो, मिट्टी को भी चेक करवा लो, क्योंकि मिट्टी में नमक पानी से ही आया है,
5: हाँ जी हाँ जी
1: नहर का
5: बिल्कुल
1: पानी लगता है पास थोड़ा बहुत।
5: हाँ लग गया जी।
1: हाँ तो जैसे एक पुरानी किस्म है काफी, CSR 30 है बासमती की, आपने सुना होगा नाम, काफी पुरानी है, लंबी भी बढ़ती है, लेकिन जो नमक वाला एरिया है अपने उसमें कामयाब है वो,
5: कौन सी जी,
1: CSR 30, 30 नंबर आर,
5: CSR 30
1: हाँ जी तीस तीस
5: नंबर
1: नंबर है ये, नमक वाले उसमें चल जाएगी।
5: बासमती वैरायटी है जी,
1: किसकी है, हाँ बासमती की है ये,
5: ठीक है जी।
1: हाँ जी
2: ठीक है जी।
5: और अरे
1: हाँ जी
5: सर
1: जी
5: एक
1: जी
5: और
1: बताइए।
5: अपना 1121 की को बढ़िया वैरायटी बता दे, 10 किल्या की दौड़ बनानी है उसके लिए
1: देखो
5: टाइम कम से कम।
1: 1121 खुद ही एक किस्म है जो
5: अच्छा जी
1: PB 1121 है, पूसा बासमती 1121, इसकी जो और एडवांस आई है वो 17-18 है।
5: नहीं वो नीचे कर हरियाणा पूछा करके बोला, देखो इसके बारे में जानकारी लेनी है
1: हरियाणा। ये पूसा बासमती है सारी, ये अपनी जो पूसा से ही है सारी किस्में ना, 11-21 है। अगर कम अवधि की लेनी है 15-09 है, 16-92 है, 11-21 की और बढ़िया ज्वारी है वो 17-18 है।
5: अच्छा,
1: फिर इसकी आपकी 18-85 भी है जो सबसे लेटेस्ट है 11-21 की, उसी में पीबी 18-85 है।
5: हाँ जी
1: जी जी। और जो दो नई आई हैं वो तो दूसरी सिद्ध विजय की हैं, 1985 और 1979 हैं। आपने तो सिद्ध विजय नहीं लेने ना, आपने तो नर्सरी बनानी है। हाँ बिल्कुल है, सबसे बढ़िया टाइम चल रहा है सिद्ध विजय का, 1 से 20 जून के बीच में सबसे उचित समय यही है। अब जैसे ही आप का खेत आ जाए पानी दे के, अगर आप लगाना चाहते हो पानी दे के लगा लो। आप सूखे में अगर बिजाई, नमक बता रहे हो तो सूखे में करो ज्यादा बढ़िया रहेगा, सूखे में बिजाई कर दो और उसके ऊपर से उसको फिर पानी का भर दो।
2: ठीक है जी, धन्यवाद।
5: ठीक है जी, धन्यवाद जी आपका, धन्यवाद आपने मेरे को जानकारी दी।
2: कोई बात नहीं, आप भी सम्मानीय हमारे लिए, धन्यवाद। हेलो
6: हेलो
2: जी,
6: दलजीत भाई राम राम।
2: हाँ जी राम राम, कौन बोलिया?
6: मुन्ना बोला था, गांव तिवाड़ा।
2: मुन्ना तिवाड़ा थे? हाँ बोलो भाई
6: जी, नमस्कार
1: जी। जी नमस्कार जी, बताइए।
6: सरकारी पे बीज आ गया थी?
1: किस चीज का बीज?
6: ग्वार बाजरे का।
1: कहाँ पे?
6: अपने तंदुर की दादरी लग गए हैं
1: जी जी, जो सरकारी दुकान है उस पे पूछ लो, आ गया होगा। अब तो समय आ गया बिजाई का, अपने बाजरे का भी आ गया और ग्वार का भी आ गया।
6: हाँ ग्वार बाजरे का, दोनों का आ गया। तो
1: पता कर लीजिए, आपको पता करना पड़ेगा वहाँ पे
6: जो HS... किस्म लावा थे जी?
1: हैं?
6: उसी किस्म लावा?
1: देखो बाजरा अगर आपने बोना है तो बाजरे की जो सबसे नई जो किस्में हैं जो यूनिवर्सिटी ने निकाली हैं वो HHB 299 और 311 हैं। दोनों में लो तत्व बहुत ज्यादा है और खाने के हिसाब से बहुत अच्छी हैं दोनों। और पैदावार भी
6: कितनी है बंजी?
1: पैदावार इसकी 15 से 20 क्विंटल के बीच में है। अगर बहुत बढ़िया करें तो और ऊपर भी ले सकते हैं। एवरेज इसकी 15 क्विंटल के आसपास आ जाती है, लेकिन बढ़िया करें तो हम 15 से 20, 22, 25 इतने भी ले सकते हैं इसकी, 20 तक 22 तक ले सकते हैं। HHB 299 और HHB 311।
6: HHB 311 HHB 299।
1: जी जी,
6: 99 और 11 में पैदावार में तो अलग अलग फर्क होगा कुल से?
1: नहीं बराबर सी ही है दोनों की, 15-16 15-16 इतनी है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है।
6: अच्छा, अपने रेतीली जमीन है और नमकीन पानी है, बन जाएगा?
1: देखो नमकीन पानी की समस्या है, रेतीली जमीन में कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा, बहुत अच्छा होएगा। लेकिन एक आधा पानी उस पे, जैसे शुरू का मान लो बारिश में बोओगे तो वहाँ तो पानी देना ही नहीं फिर उस टाइम, तो जमाव बढ़िया हो गया तो फिर एक आधा नमकीन पानी भी सहन कर लेगी।
6: अच्छा, कितना पानी लगे?
1: देखो दो पानी हम इसमें सजेस्ट करते हैं, एक भी लग गया तो काम चल जाएगा।
6: अच्छा।
1: रेतीली जमीन है पर दो देने ही पड़ेंगे, रेतीली में तो जल्दी नमी उड़ जाती है ना, तो दो
6: हाँ
1: दो दो दो तो इसमें पक्का देने ही पड़ेंगे, 2 से 3। एक आधी नहर आए उस टाइम दे देना, बारिश का हो जाएगा फिर बीच में एक आधी बारिश आ जाएंगे, क्या पता एक पानी में ही काम चल जाए, ज्यादा नमक वाला ना देना पड़े, क्योंकि नमक का पानी तो जितना कम दोगे उतनी फसल हमारी बढ़िया होगी। बात ये है,
6: नहर कड़ा हो रहा जी, पहाड़ा धरती है ठीक भाई।
1: कौन सा एरिया है?
2: तिवाड़ा।
1: अच्छा अच्छा ठीक है, दादरी के पास है।
2: हाँ। चलो जो भी है इससे में काम चलाना पड़ेगा, तो इतने दिन तक चल रहा है कभी चल जाएगा।
6: और ग्वार में कौन सी किस्म है भाई?
1: ग्वार में है HG 563 है और HG 365 है, 563 नई है और HG हाँ, और 2-20 220 कह लो 2-20 है तो ये भी है, और 563 भी बहुत बढ़िया है।
6: दोनों की अलग अलग पैदावार कितनी? हाँ
1: इनकी भी, इनकी 8 से 10 क्विंटल है आपकी।
6: अच्छा
1: जी,
6: तो कब तक कर सका इसकी? 15 जून पर है बिजाई।
1: हाँ मतलब जैसे ही बारिश ठीक हो जाए अब कर सकते हो, आपकी जुलाई तक कर सकते हो, 15 जुलाई तक, बाकी उस टाइम इतनी बारिशें आ जाती हैं फिर बात नहीं बनती। जून एंड में कर लो या जुलाई के पहले हफ्ते में कर लो, अगर दूसरे हफ्ते तक जाते हैं तो फिर कई बार ऐसे लगातार सी बारिश हो जाए तो फिर जमने भी नहीं देती।
6: अच्छा,
1: तो 15 जून के बाद अब कभी भी कर लो उसको, कोई दिक्कत नहीं है।
6: 15 जून के बाद दोनों की क्या टाइम आ जाएगा?
1: जी जी जी, जुलाई का भी मतलब आखिरी हफ्ता ले लो जून का।
6: अच्छा
1: जी, और जुलाई का पहला हफ्ता। वैसे तो इनका क्या होता है कि भाई ज्यादातर बरानी लेते हैं तो ऑन सेट ऑफ मॉनसून है, भाई जैसे ही बारिश आपके आ जाती है बढ़िया तो आप इनकी बिजाई कर दो।
6: ईद के मौसम का क्या हाल चाल है, क्या जानकारी है अपने कृषि विषय दलाई सार की?
2: मौसम की जानकारी आज की तो यह है कि छिटपुट बूंदाबांदी के आसार दिखे हैं, लेकिन काल ते फिर मौसम साफ बता रखा है, कोई बदलाव होगा ना तो तड़के सांझ ने परसों सांझ ने फिर बैठेंगे फिर बता भी देंगे।
6: आपने कृषि जगत में जानकारी दी आपने भाई,
2: कृषि जगत में तो आज यह बातचीत है जो आपकी गेल बतलाने लग रही है चल लगी, तड़के जरूर देवेंगे आपने जानकारी।
6: हाँ तड़के और हमेशा ही दे दिया करो यार, एक ये बाजार भाव लगते दिया करो,
2: चलो
6: कमाने लगते
2: जरूर, वैसे तो देवे है फिर आपने कह दिया तो और पक्का कर दिया।
6: हाँ कर दिया करो।
2: ठीक है जी, धन्यवाद।
6: ठीक है, राम राम जी।
2: राम राम जी, राम राम। आज डॉक्टर साहब बहुत सारे भाइयों के फोन आए
1: जी,
2: अलग अलग तरह की समस्या आई है
1: जी,
2: और उम्मीद है कि उन्हें पूरा समाधान भी मिला है, क्योंकि कुछ तो इसी समस्या थी जो कॉमन सी बन जाती थी कि कई भैया की एक डाल की समस्या थी, लेकिन उनमें भी कुछ ना कुछ बात अलग लिकटक आई है।
1: हाँ जी,
2: उनकी भैया की समस्या का समाधान जरूर हो गया इसी उम्मीद करें हैं। और आज की जो बातचीत थी, इस कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया, डॉक्टर मीनाक्षी सांगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करेंगे कि जो आपके जो बताई और जो बात से वो भैया के ध्यान में चढ़ जाएंगी और इनका अनुसरण करते हुए आगे अपना खेतीबाड़ी का जो काम है वो सुचारू रूप से।
7: आप सुन रहे थे कृषि जगत कार्यक्रम आकाशवाणी का, ये रोहतक केंद्र है। 7:10 होने को है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा।

0: component of the scheme. We were encouraging them for filing intellectual property rights. That was the fourth component of the scheme. We were pushing them towards greening and sustainable manufacturing, which was another component of the scheme. So we have now added AI also to that, so that MSMEs are not left behind in this new technology.
1: Bharat Kheda ji, thank you so much for being with us. We have unfortunately run out of time, but the discussion can be endless. That is the scope of the micro, small and medium enterprises. Thank you so much for being with us.
0: Thank you.
2: In the special series, 12 Years of the Modi Government, you are listening to an exclusive interview with Bharat Kheda, Secretary, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, on major reforms and initiatives for the growth and empowerment of MSMEs. Interviewer was Arjun J. Chaudhary. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashvani.
3: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव भरत खेड़ा के साथ विशेष साक्षात्कार कर रहे थे अर्जुन जे चौधरी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। 7:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं आनंद बख्शी के लिखे इस गीत के साथ, जिसे संगीत से संवारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल, मनहर और सुखविंदर की कर्मा फिल्म से।

फिल्म किस गीत के बाद, आइए अब सुनते हैं दीवाना फिल्म से गाना। अलका याग्निक और विनोद राठौड़ के युगल स्वरों में समीर ने इस गीत को रचा है और नदीम श्रवण ने इसके लिए संगीत बनाया।

चमत्कार फिल्म से गीत हमने सुना, जिसमें आवाज़ें थीं अलका याग्निक और कुमार सानू के। फिल्म संगीत कार्यक्रम में अगला गाना शामिल कर रहे हैं, आओ प्यार करें, इस फिल्म से हमने इसे लिया है। आवाज़ कुमार सानू की है।

ये गीत हमने सुना राम लखन फिल्म से। आवाज़ें थी मनहर उदास, अनुराधा पौडवाल और इनके साथियों की। आनंद बख्शी ने इस गीत को रचा था और इसके लिए धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इस गीत के साथ ही संपन्न हुआ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी रोहतक से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर। 8:25 हुए हैं। आप प्रस्तुत है सुगम संगीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज कलाकार हैं राजेंद्र मेहता और मीना मेहता। सुनते हैं इनके स्वरों में कुछ गज़लें।

इस गज़ल के साथ ही संपन्न हुआ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। 8:45 होने को हैं। अब समाचार होंगे पहले हिंदी में और उसके बाद 9 बजे अंग्रेजी में। रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए

0: विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से

0: एक हैं।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि BSF जहां जहां है, SSB जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर

0: है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
1: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
2: With Nepal, we have an expansive agenda.
1: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
2: Partnership that we have with Nepal.
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री

0: अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects in Gujarat and Daman. Prime Minister emphasizes on self-reliance in energy sector, says India actively leading towards green future by balancing economic growth and ecological preservation. Country's GDP growth rate estimated at 7.7% in 2025-26 following strong momentum by the economy. Home Minister Amit Shah says smart border project in its final execution stage, pilot rollout to be introduced next year at sensitive border locations. Southwest monsoon advances further into more parts of Arabian Sea, Goa and Karnataka. And in hockey, India enter final of men's under 18 Asia Cup, beating Pakistan 5-3 in semi-final at Kakamigahara in Japan. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat today, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial one-fifth of the nation's green energy share. He said the current global energy crisis highlights the critical importance of self-reliance in energy. He said the world is gradually progressing towards a greener future and India is actively contributing to this transition.
2: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city.
2: Surat सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी, साथ ही यहां सूरत मेट्रो का भी विस्तार हो रहा है। ये सारे कदम हरित शहर के रूप में सूरत की पहचान को और सशक्त करेंगे।
1: After reaching Surat this afternoon, the Prime Minister first visited Hazira and reviewed the ongoing industrial and infrastructure operations. Later in the evening, Mr. Modi launched various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. These projects include major healthcare and aviation infrastructure.
2: आज भी यहाँ कनेक्टिविटी, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसे जुड़ी अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। विकास के ये काम दमन और पूरी यूनियन टेरिटरी के लिए यहाँ के लोगों के जीवन को आसान बनाएंगे। इनसे युवाओं के लिए नए अवसर तैयार होंगे।
1: Prime Minister Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a robust 7.7% growth in the fiscal year 2025-26 despite a global economic crisis.
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8

ये गीत हमने सुना जिसमें आवाज़ें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, और इस गीत के साथ ही संपन्न हुआ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। एक फिल्म से आज की फिल्म थी तेरे घर के सामने।

रात्रि श्रोताओं, रात्रि की 9:30 हो चुके हैं। आकाशवाणी रोहतक आप सुन रहे हैं और प्रस्तुत है नाटक रेत का समुंदर। लेखक हैं कृष्ण मानव और प्रस्तुति श्याम गुप्ता की।

0: गंगू, अरे ओ गंगू, ये तुमने बुहार किया है?
1: हाँ बीबी।
0: तेरा सर जहाँ देखो बस मिट्टी और ये सिगरेट के टुकड़े। हाँ बीबी जी, 6 महीने हो गए तुझे इस घर में, पर अभी तक समझ नहीं आई। अच्छा जा बुहारी ले आ।
1: जी।
0: ये कपड़े जहाँ देखो धब्बे, बस कुछ नहीं कर सकता, मुफ्त की रोटियां तोड़ता है, सभी कुछ तो मुझे करना पड़ता है। कहने को तो माशे जी ने नौकर रख दिया है।
1: ले आया बुहारी बीबी जी।
0: ला मुझे दे। और हाँ सुन, तू जा बर्तनों का ढेर लगा है। ओहो तो डाली ना क्रॉकरी, अरे अभी तो लाई थी ये प्लेटे, कोई काम भी कर सकता है ये नहीं?
1: जी फिसल कर गिर गई बीबी जी।
0: फिसल कर गिर गई, अरे तू क्यों नहीं फिसला? अच्छा बटोर ये टुकड़े, मैं किए देती हूँ बर्तन साफ। और हाँ तकिए के गिलाफ उतार दे, तेल के दाग भी नहीं उतरे।
1: जी
0: बस जी जी, इसके सिवाय भी कुछ जानते हो? गंगू, अरे ओ गंगू।
1: जी बीबी जी।
0: ले ये कपड़े फैला दे, देख कोई दाग न लगने पाए।
1: और ये तकिए के गिलाफ बीबी जी?
0: अरे कहा ना, डाल दे इनको, धोए देती हूँ। और जा चाय भी बना दे।
1: जी।
0: सुन फिर बाजार से तरकारी भी ले आना।
1: जी।
0: सुबह से शाम हो गई काम करते करते। गंगू साहब आ गए?
1: जी अभी तो नहीं आए।
0: जरा घड़ी देख क्या टाइम हुआ है,
1: 5:30 बज गए।
0: कभी समय पर आए हैं जो आ जाएंगे, कभी उनके मित्रों की पार्टी, कभी बॉस ने रोक लिया, और कभी बॉस के घर जाना पड़ा फाइलों पर दस्तखत कराने के लिए। आज भी कोई घड़ा घड़ाया बहाना सामने आ जाएगा। ये नौकरी है या कोई बंधन? गंगू राकेश क्यों नहीं आया?
1: जी जी वो मैं नहीं जानता, पर कह रहे थे कि आज कॉलेज में फैशन वैशन है।
0: ये फैशन नहीं बुद्धू, फंक्शन कहो। बस ये भी तो बाप पर गया है, हंसना तो जैसे इसने सीखा नहीं। गंगू खाना तैयार है या नहीं?
1: जी तैयार है।
0: तरकारी कैसे बनाई है जरा देखूं तो?
1: अभी लाया, ये लो बीबी जी।
0: ओफो गंगू, मुझे ये बता तुझे आता क्या है? तरकारी में नमक ज्यादा है, घर की सफाई तू कर नहीं सकता, अब और तरकारी बनानी पड़ेगी।
1: जी जी आपने तो।
0: हाँ हाँ मैंने छौंक लगाया था, पर नमक तो तुमने ही डाला था।
1: जी बीबी जी
0: ओफो, ये जी जी सुनते तो मेरे कान पक गए। ले जे काट प्याज, मटर के दाने निकाल दे और मैं मसाला भूनती हूँ।
1: अभी तो
2: मम्मी, आज तुम्हारे बेटे ने प्राइज जीता है मम्मी, ये देखो। ये देखो, जानती हो मम्मी किस टॉपिक पर? टॉपिक था प्रतीक्षा। सिद्ध कर दिया मम्मी तुम्हारे बेटे ने कि जन्म के साथ प्रतीक्षा भी जन्म लेती है।
0: सो तो है ही।
2: यही नहीं मम्मी, हर क्षण प्रतीक्षा का क्षण है। देखो ना, अब तुम मेरी प्रतीक्षा कर रही थी और अब पापा की है ना।
0: अरे ये क्या, कोट पर दाग लगा है।
2: दाग? अरे मम्मी लग गया, रंग का है, कच्चा रंग है, अब झाड़ते ही छूट जाएगा। वो सत्यन है ना मम्मी, बस उसके साथ रंगोली मनाता रहा इसलिए
0: रंग लग गया। ड्राई क्लीनिंग में 3 रुपए लगते हैं, और ड्राई क्लीनर्स का भी क्या भरोसा, गर्म कपड़े कोई हर रोज धुलवाए जाते हैं। ले दे के एक ही तो कोट है तुम्हारे पास, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए।
2: ओ मम्मी, तुम्हें तो बस कपड़ों की लगी रहती है, ये साफ नहीं है, वो साफ नहीं है। लगता है मम्मी, लगता है तुम्हें सनक पैदा हो गई है।
0: अच्छा जी, तो मैं सनकी हूँ?
2: नहीं मेरा मतलब ये नहीं, मेरा मतलब है वो पापा आ गए।
3: ओहो, सारा दिन काम करो, शाम को दोस्तों के साथ उठो ना बैठो, तो कहते हैं जोर का गुलाम हो गया। राकेश तुम अभी आए क्या?
2: यस पापा।
0: ये कोई तुमसे कम निकलेगा तो जल्दी घर लौट आए।
2: आज तो फंक्शन था ना मम्मी।
0: कल क्या था?
2: वो कल प्रोफेसर ने एक्स्ट्रा क्लास ली।
0: और परसों?
3: अरे अब रहने भी दो, तुम्हारी तो आदत बन गई है भगवान रोज पूछताछ करने की। अरे आखिर तो लड़का है, देर सवेर हो ही जाती है। ये लो कोट, खूंटी पे टांग दो।
0: जरा रुको, देखो तो खूंटी पर मनोरेत जमा है। टांग दो कोट खूंटी पर, पहले साफ करो इसे। हाँ अब टांग दो।
3: टांगता हूँ। वैसे वंदना, एक बात पूछूं?
0: पूछो।
3: तुम्हें बस घर की सफाई, कामकाज, यही सब कुछ नजर आता है?
0: इस छोटी सी तनख्वाह में यदि मैं घर का कामकाज संभाल लेती हूँ, इसे सुंदर बनाए रखती हूँ, तो कोई आपत्ति है इसमें? बजाय तारीफ करने के तुम दोनों बाप बेटा मुझे सनकी होने की संज्ञा देते हो।
3: देखो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात है कि बात बात पर मीन मेक करना ये अच्छा नहीं लगता है। फिर तुम्हारे पास गंगू तो है काम करने के लिए।
0: गंगू जो है काम करने के लिए, गंगू को तो सिवाय जी कहने के कुछ आता ही नहीं। घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है, तुम पर नहीं। चलो चलो हाथ धोकर आओ, गंगू ने खाना लगा दिया है।
3: वाह भगवान, पत्नी हो तो तुम्हारे जैसे।

0: जाने सारा दिन कैसे कटेगा। पता नहीं इतवार की छुट्टी क्यों हो जाती है। अब बेटा राकेश।
1: यस पापा।
0: तुम क्या कर रहे हो?
1: प्रोफेसर के घर जाने की तैयारी।
0: अच्छा,
1: वो सत्यन भी जाएगा। वो केमिस्ट्री की एक चैप्टर की नोटिंग्स लेनी है पापा।
0: अच्छा देखो तो जरा तुम्हारी मम्मी क्या कर रही हैं।
2: तुमको तुझे कितनी बार समझाया, ठीक तरह से काम किया था, सारा दिन मेरा सिर खाता रहता है।
1: पापा सुन लिया, बेचारे गंगू पर झाड़ पड़ रही है।
2: तो फिर मेरी बुराई में लगे हो बाप बेटा। जल्दी से ये कुर्ता उतार दो, धोना है और दूसरा पहन लो।
0: लेकिन इस कुर्ते को हुआ क्या है?
2: क्या नहीं हुआ, रात भर से पहन रहे हो, क्या मैला नहीं होगा?
0: मैला?
1: मैं चलता हूँ पापा।
2: तू कहाँ जा रहा है?
1: पढ़ने और कहाँ,
2: छुट्टी के दिन भी।
1: हाँ मम्मी। अच्छा पापा मैं चलता हूँ।
0: लो ये कुर्ता। वैसे वरना एक बात है, जितना खर्चा तुम सफाई में करती हो ना, उससे दो आदमी की रोटी चल सकती। रोटी
2: लो, सुन लो, सफाई में भी पैसे लगते हैं। हड्डियां मैं तोड़वाती हूँ और इनको है पैसे की चिंता। अच्छा ये पहन लो, मुझे देर हो रही है, घर का सारा काम पड़ा है।
0: तुमसे तो बात करना भी मुसीबत है। हाँ सुनो भाई, एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है।
2: वो कैसी?
0: एक सर्कुलर निकला है कि दिसंबर तक छुट्टियां अवेल ना की तो लैप्स हो जाएंगे। इतवार तो मुझसे कटता नहीं है और ये छुट्टियां।
2: मैं कहती हूँ ले लो छुट्टियां।
0: क्या यहाँ इस घर में काम बंटवाने के लिए? अरे भाई मर्द तो बाहर अच्छा लगता है, मित्र मिलते हैं, बातें होती हैं और कभी कभी तो हम बातों ही बातों में राज पलट देते हैं। अरे खूब जमती है हमारी तो। और अगर यहाँ रहा ना तो तुम्हारे साथ बिस्तरे की चादरें ही पलटता रहूंगा।
2: सुनो इन छुट्टियों में बंबई चलेंगे।
0: क्या
2: कुछ चेंज हो जाएगा?
0: बंबई? ये आज नई नई बात कैसे सुन रहा हूँ। वैसे बाय द वे हमारी शादी को कितने साल हुए हैं?
2: 20 तो हो ही गए होंगे।
0: 20?
2: हाँ।
0: कभी हम पहले बार गए?
2: मगर कुछ चेंज हो जाए तो इसमें हर्ज क्या है?
0: नहीं, हर्ज तो कुछ नहीं है, मगर तुम कहो। हाँ वहाँ सिर्फ तुम होगी, मैं होऊंगा, दूसरा कोई आदमी नहीं होगा, ना ही कोई बात करने वाला होगा, ना किसी से जान पहचान।
2: राकेश जो होगा हमारे साथ।
0: राकेश?
2: हाँ।
0: बेटे के साथ इधर उधर की क्या गप मारेंगे, क्या जोड़ बैठेगा?
2: गप्पों के बिना पेट नहीं भरता।
0: भरता है तुम्हारे हाथ का खाना खाकर।
2: तुम्हें तो मजाक सूझता है हर वक्त। सुनो इस बार बहुत मन कर रहा है कहीं जाने को, कुछ चेंज के लिए प्लीज।
0: ठीक है वो तो हो जाएगा, लेकिन पहले अभी ये कपड़े तो संभालो, तुम्हें धोने जो हैं।
1: मम्मी मेरे मोजे कहाँ हैं? मम्मी
2: धो दिए।
1: ओहो बस तुम्हें
2: इसलिए कि कल बंबई जाना है।
1: बंबई?
2: तुम्हारे पापा को एक महीने की छुट्टियां जो मिल रही हैं।
1: मगर मैं तो मैसूर जा रहा हूँ मम्मी, हमारा ट्रिप जा रहा है। वो सत्यन है ना, वो भी जा रहा है ज्योग्राफिकल रीडिंग के लिए, कन्याकुमारी तक जाएंगे हम लोग।
2: मगर ज्योग्राफी तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है।
1: ओफो, नॉलेज के लिए मम्मी, प्रोफेसरों के साथ खुले वातावरण में प्रकृति का अध्ययन, ऐसे मौके कम मिलते हैं मम्मी, स्टडी भी तो हो जाएगी।
2: ओफो स्टडी स्टडी, राकेश किताबी कीड़े बने रहोगे।
1: मम्मी मुझे स्कॉलरशिप लेना है, एंड आई डोंट वांट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी। तुम और पापा तो जा ही रहे हो ना, तो जाओ।
2: तुम्हारे पापा बड़ी मुश्किल से माने थे, अब तुम नहीं जाओगे तो शायद वो भी।
1: जरूर जाएंगे मम्मी, आई विल से पापा डोंट ब्रेक मम्मीज हार्ट। ओके
2: फिर भी।
1: ओ नो मम्मी, जरूर जाएंगे,

0: ये तुम्हारी जिद है, मैं कहता हूं अभी रख दो सामान। अरे क्या खाक मजा आएगा, सोचा था राकेश साथ में होगा, उसके किताबों के साथ समय काट लूंगा।
1: और कुछ बीवी जी?
2: खाने पीने का सारा सामान बन गया?
1: जी बन गया।
0: सुनो वंदा, अब भी समय है, कैंसिल कर दो।
3: ओ नो पापा, जब मम्मी कहती है तो चले जाओ ना।
0: मगर बेटे हमें तुम्हारी चिंता लगी रहेगी।
3: ओ, मैं कौन सा यहाँ रहूंगा पापा, परसों हमारा भी तो ट्रिप जा रहा है, घर बैठे चिंता ना होगी बल्कि ज्यादा होगी।
2: राकेश ठीक कहता है। गाड़ी कितने बजे है?
3: 4:30 बजे। अरे 3:30 तो बज ही गए। मम्मी पापा गेट रेडी, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ।
2: ओफो, ये गंगू जाने फिर कहाँ मर गया।
1: जी बिस्तर मांग रहा हूँ बीबी जी, अभी आया।
0: लो आ गई टैक्सी।
3: अरे गंगू
1: जी,
3: वो बिस्तर उठा ले
1: अभी। हाँ,
3: और हाँ वो पीछे डिक्की में रख देना।
2: अरे चल ना, बाकी सामान मैं ले आती हूँ, क्या घंटे से।
0: बैठ जाओ सब कोई बैठ जाओ। राकेश भाई तुम जरा ताला लगा कर आओ।
3: ओके पापा।
0: गंगू तू आगे बैठ।
1: जी बाबा।
0: लग गया ताला?
3: यस पापा।
0: आ जाओ, आओ ये टैक्सी वाले, चल चला।

ये लो पापा टिकट। पापा गाड़ी का स्टॉपेज 5 ही मिनट का है, अच्छी तरह जल्दी करना, बस गाड़ी आने ही वाली है। मम्मी तुम चली जाना, हम सामान लगा लेंगे। लो गाड़ी आ गई।

0: बेटा जरा सीट नंबर देखना, मेरे ख्याल से यही कंपार्टमेंट है। देखो,
1: मिस्टर एंड मिसेस के
0: यस
1: पापा
0: यस,
1: यही
0: हाँ
1: है, बर्थ नंबर 7071। गंगू
0: जी,
1: सामान उठा,
0: अभी दो।
1: मम्मी गेट इन, बस यही है। हाँ गंगू ऊपर रख दे सामान, आओ जल्दी बाहर आ जाओ।
2: गंगू बिस्तर
0: जी
2: खोल दे।
0: जी
2: अरे
0: मैम।
2: राकेश, ताले चाबियां लगा कर जाना। हाँ
1: अच्छा मम्मी
2: गंगू, ख्याल
1: जी।
2: रखना, घर की सफाई भी रखना। अरे हट जाना, खिड़की से गाड़ी चलने वाली है।

0: लो आ गई तुम्हारी बंबई।
1: बोले
2: जी साहब।
1: भैया जरा सामान बाहर टैक्सी तक ले जाओ।
0: लो पहुंच गए विले पार्ले।
3: शुक्र है
0: शुक्र है। नीचे उतरो। अब दरवाजा भी खटखटा दूं मैं। जरा रुको यहां पे।
4: अरे कैलाश। अरे भाई हम तो समझे थे तुम हो गए हमारी भाभी के गुलाम।
0: जरा धीरे बोलो। वो भी आई है।
4: कहाँ है वो? वो जो सामान के साथ खड़ी है।
0: हाँ।
4: अरे पांडुरंगा जरा तो वो सामान तो ले आ भाई। मेम साहब को अंदर भेजो।
0: अरे भाई देखो हम तो आए हैं सैर सपाटे के लिए। समुन्दर के किनारे रहना चाहेंगे।
4: नमस्ते भाभी जी।
3: नमस्ते।
4: अरे भाई कल चले जाना। देखो यहाँ गर्मी के मारे कितना पसीना आ रहा है। वहाँ तो सर्दी होगी।
3: हाँ बिल्कुल नहाने को जी चाहता है।
4: क्यों नहीं क्यों नहीं।

0: अब चलो भी वंदना, 9 बज गए, कब तक इस बालू से खेलती रहोगे?
1: तुम बोर हो रहे हो?
0: और क्या, कभी इधर टहलता हूँ कभी उधर टहलता हूँ, और तुम हो कि बालू को पैरों पर जमाती हो, घर बनाती हो। एक बात बताओ, घर बनाते बनाते तुम्हारा मन नहीं भरा?
1: नहीं।
0: वंदना, लगता है तुम
1: क्या लगता है
0: तुम बचपन में लौट आई हो।
1: जवानी में नहीं?
0: क्या जवानी? बाय द वे वंदना, ये परिवर्तन कैसा?
1: परिवर्तन के लिए तो आए हैं यहाँ, फिर ये रेत के घर गिरकर रेत हो जाएंगे, है ना?
0: हाँ सो तो है, अब मगर तुम इन घरों को बनाते बनाते थकती नहीं हो?
1: थकना क्या, मजा आता है।
0: ठीक है ठीक है, अच्छा तुम घर बनाओ, मैं अभी भेल पूरी लेकर आता हूँ।
1: एक घर, ये दूसरा और ये तीसरा, और अब कोई भी नहीं, और अब ये नया घर।

0: बाबा मैंने तुम्हारे बहुत से घर देख लिए हैं, लेकिन अब एक काम करो, जिस घर में ठहरे हैं वहां चले। अरे 10 बज गए बाबा।
1: 10 ही बजे है ना।
0: सॉरी मैडम, मेरे पांव तले आकर तुम्हारा बनाया घर टूट गया। अरे बहुत अच्छा हुआ साहब, बहुत अच्छा हुआ। ये भी तो कहती है कि रेत के घर है, रेत में मिल जाएंगे।
2: क्या मतलब?
0: मतलब अब मतलब तो मुझे भी नहीं मालूम है।
1: चलो अब।
0: मिस्टर आप भी चलेंगे?
2: हाँ हाँ, मैं तो जा ही रहा हूँ।
0: साथ चलिए ना, थोड़ा समय कट जाएगा। बाय द वे, आपका नाम क्या है?
2: रंजन।
0: कहाँ के रहने वाले हो? अब बंबई के नहीं लगते हो?
2: जी मैं दिल्ली रहता हूँ।
0: ऐसे
2: क्रिसमस की छुट्टियाँ थी, हवा खोरी के लिए चला आया।
0: तो भी जमेगी?
2: मैं समझा नहीं।
1: मैं समझाती हूँ, इन महाशय जी को गप फांकने के लिए साधन चाहिए और तुम चुन लिए गए।
2: आईसी, मगर आपके साथ तो आपकी पत्नी है, समय अच्छा करता होगा।
0: क्या खाक करता होगा? अरे पति पत्नी के पास कितने सब्जेक्ट होते हैं भाई। अरे दो वाक्यों में बात खत्म।
2: हो सकता है आपकी बात ठीक हो, मेरा ऐसा अनुभव नहीं है।
0: क्यों, तुम्हारी शादी नहीं हुई?
2: जी नहीं।
0: लगते तो अच्छी उम्र के हो।
1: तो क्या हुआ?
0: हुआ तो कुछ भी नहीं है
2: जी,
0: मगर
2: अभी मैं एमए कर रहा हूँ। इंजीनियर बन जाऊँ तो सोचा जा सकता है।
0: सोचा? अरे भाई एक बात है, मेरी बात मानो तो शादी की झंझट में मत पड़ना।
1: क्यों?
0: क्यों? अरे क्यों का क्या जवाब है, तुम नहीं समझोगी। अरे शादी करवा ली तो दफ्तर के बाद दूसरे बॉस की गुलामी करनी पड़ेगी, यानी कि पत्नी की।
2: शायद आपकी बात सच हो।
0: बिल्कुल सच है। कहाँ तक जाइएगा?
2: सन एंड सैंड तक।
0: हाँ
2: बस उसी होटल के पास रह रहा हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए चलिए हम एक साथ चाय पियेंगे। ये रहा हमारा दौलत खाना।
2: तो आप यहाँ रहते हैं?
0: हाँ यहाँ। सोचा था होटल में रहेंगे, हमारे दोस्त का एक बंगला खाली था, उसने ठहरने के लिए दे दिया। ओह चलो अंदर आओ। कैसी हवा चल रही है। अभी सुनो तुम चाय बना दो। ओहो ये खिड़कियाँ भी बंद नहीं की, कितनी बालू उड़कर अंदर आ गई है, सब कपड़े गंदे हो गए। रंजन तुम बैठो, मैं खिड़कियाँ बंद किए देता हूँ।
2: आप भी क्या हवा खोरी के लिए आए हैं?
0: हाँ बिल्कुल, अब मेम साहब जिद कर बैठे हैं कि बम्बई जाना है, और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि ये जवान हो गई हैं। अब बाय द वे वैसे ये एक बच्चे की माँ है?
2: शहर में अक्सर हो जाता है।
0: क्या हो जाता है?
2: यही कि चेंज। दरअसल तो सैर सपाटा है चेंज के लिए।
1: गरम गरम चाय पी
0: लो भाई, चाय पियो चाय। रंजन बाबू एक बात है, एक काम करो, कल का जो लंच है वो आप यहीं ले लें तो कैसा रहेगा?
2: जी वैसे तो कुछ नहीं, मगर मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ।
1: कौन अकेला रहने के लिए मना करता है, इनको समय काटने के लिए तुम्हारा साथ हो जाता है।
2: ठीक है, अगर आप लोग कहते हैं तो।
0: दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड।

0: खाना बहुत ही अच्छा वाला है। होटल में खाने से सच मानिए भूख आधी रह जाती है।
1: तो खाना यही खा लिया करें।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, इतना कष्ट उठाएं आप, अच्छा नहीं लगता।
2: अरे इसमें कष्ट की क्या बात है। अच्छा बैठो, मैं अभी सिगरेट लेकर आता हूँ, जाना नहीं।
1: तुम थोड़े दिनों तक हमारा साथ नहीं दे सकते?
0: मगर कुछ अच्छा नहीं लगता।
1: मैं कहूँ तो भी नहीं?
0: जी मैं समझा नहीं आपको।
1: समझने की बात ही क्या है इसमें, तुम आ जाओगे दिल बह जाएगा, आओगे ना?
0: जी
1: जानते हो ये समंदर की लहरें क्या गीत गा रही हैं?
0: लहरें गीत?
1: हाँ लहरें गीत, किनारे से टकराने के प्रयत्न में इनसे फूटता गीत। कहती है तुम मिल जाओ हम अपना अस्तित्व ही मिटा दें। जानते हो अस्तित्व की तुलना स्त्री से क्यों की जाती है?
0: और किनारे?
1: किनारे वो तो इन्हें अपने में समो लेते हैं।
0: अरे क्यों नहीं क्यों नहीं, अरे तुम्हारे हाथ का खाना अच्छा ना लगे इसमें पूछने क्या बात है। क्यों साहब अभी तक खाने की तारीफ की जा रही है?
3: जी हाँ जी।
0: अरे एक काम करो भैया, एक सर्टिफिकेट दे दो। अरे भाई तुम तो गैजेटेड ऑफिसर बनने जा रहे हो, तुम्हारे सर्टिफिकेट के लिए तो एफिडेविट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।

फिर तुम क्या सोचने लगे? वो तो एक बच्चे की माँ है, लेकिन लेकिन उसकी रहस्यमय बातें, लहरें लहरों को किनारे से टकराने के लिए कल कल करता गेल, अस्तित्व और अस्तित्व की तुलना स्त्री से तुम बहुत प्रिय लगती हो। नहीं नहीं मैं कल नहीं जाऊंगा, मगर क्या कहेंगे, जाना तो होगा ही। उसकी आंखों से जो मादकता झलकती है, लगता है मैं उसमें डूब जाऊंगा। इसका मतलब मैं कमजोर हूं जो उसकी बातों में आ जाऊंगा? नहीं मैं कमजोर नहीं हूं। फिर से जाने से क्यों डरता हूं? नहीं डरूंगा, जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा।

0: हेलो रंजन भाई, तुम आ गए।
1: हम तुम्हारे इंतजार कर रहे थे। क्यों?
2: बिल्कुल।
1: तो मैं आ गया ना भाई। आज तो इस देवी ने वो पकवान बनाए हैं कि खाते ही बनेगा।
0: अच्छा,
1: बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ।
0: बुरा क्यों मानने लगा?
1: एक काम करो, तुम यहीं आ जाओ। देखो ना कितना बड़ा बंगला है, आखिर किस लिए?
0: जी वैसे तो कुछ नहीं, मगर मैं दंपत्ति के साथ रह नहीं सकता।
1: लेकिन क्यों?
0: क्या बताऊं, एक बार मेरे मित्र अक्षय उनकी पत्नी सिद्ध कर बैठी, रंजन भैया के साथ बंबई जाएंगे।
1: तो इसमें क्या हुआ?
0: हुआ तो कुछ नहीं, मगर जब बंबई जाने के लिए तैयारी कर रहे थे कि
3: अब बस भी करो दीपा, बहुत हो चुकी शॉपिंग।
4: तुम क्या जानो परदेश में किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। बरसात के दिन नजदीक हैं, कहीं बच्चे को ठंड लग गई तो। सुना है बंबई की सर्दी बहुत जल्द पकड़ लेती है, क्यों भैया रंजन?
0: हाँ सो तो है ही।
3: हाँ हाँ, तुम तो अपनी भाभी की ही हाँ में हाँ मिलाओगे।
4: इसमें हाँ में हाँ मिलाने की क्या बात हुई, जो मैंने कहा ठीक नहीं है?
0: मेरा मतलब अक्षय।
3: मैं सब समझता हूँ, खैर छोड़ो इसे, चलो जल्दी करो।
4: चलो चलो वापिस घर चलो, नहीं खरीदना है मुझे कुछ भी, बंबई भी नहीं जाना है।
3: तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया आजकल, जब देखो पारा सातवें आसमान पर चढ़ा रहता है।
4: हाँ हाँ, मैं तो पागल हूँ, दिमाग खराब है मेरा।
0: लेकिन बंबई का प्रोग्राम नहीं रुका, बंबई पहुंचे तो सुबह फिर।
3: अब ये भी मुझे देखना था, कपड़े भूल गए वो भी मेरे, एक ही जोड़े में बंबई घूमूंगा अब मैं।
0: अरे भाई तुम मेरे कपड़े पहन लेना, तुम्हें तो फिट आते हैं ना।
3: रंजन बात कपड़ों की नहीं है, बात अकल की है। पता नहीं इन औरतों को अकल क्यों नहीं दी परमात्मा ने।
4: इसी अटैची में तो रखे थे कपड़े मैंने।
3: एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, अब कुछ बोली तो टांगे तोड़ दूंगा
0: यार।
4: हाँ हाँ, टांग तोड़ दो मेरी, जान से मार डालो मुझे। पता नहीं कौन से पाप किए थे मैंने जो यहाँ फंसी।
3: देखा देखा रंजन तुमने इसे, देखा? इसे कह दे चुप कर जाए वरना मैं धर्म से इसकी।
4: रंजन तुम हट जाओ, कर लेने दो जो इनके जी में आता है।
0: और यार भाई क्या क्या यार सब बात इतने पर ही जाती तो भी कुछ नहीं। एक रात में उनके कमरे के सामने से गुजरा।
3: हाँ हाँ, रंजन के सामने मेरी क्या दिसाल, अब वो तुम्हें मुझसे अच्छा लगता है ना?
4: शर्म नहीं आती ऐसे कहते, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने नीच हो।
3: क्यों सच्चाई कड़वी लगी?
4: बस करो भगवान के लिए बस करो।
0: बस मियां बीवी के साथ रहकर मुझे अपने दोस्त से हाथ धोना पड़ा।
4: ओ, तो इसलिए तुम्हें डर लगता है?
0: डर लगना स्वाभाविक ही है, क्यों साहब?
1: क्यों नहीं क्यों नहीं, लेकिन इस मामले में हमारी पत्नी बहुत तेज है।

0: तुम तो कविता करने लगी बंबई आकर।
1: आखिर हुआ क्या है इसे, इतना बड़ा परिवर्तन? ये तो ऐसी नहीं थी, ये तो बात बात पर काटने तोड़ती थी।
2: बस जी जी, इसके सिवाय भी कुछ जानते हो? गंगू, अरे ओ गंगू।
3: जी बीवी जी।
2: ले ये कपड़े फैला दे, देख कोई दाग न लगने पाए।
3: और ये तकिए के गिलाफ बीवी जी?
2: अरे कहा ना, डाल दे इनको, धोए देती हूँ। और जा चाय भी बना दे।
3: जी।
2: सुन, फिर बाजार से तरकारी भी ले आना।
3: जी।
2: सुबह से शाम हो गई काम करते करते। गंगू साहब आ गए?
3: जी अभी तो नहीं आए।
1: इतना बड़ा परिवर्तन, खैर
0: मुझे तो नहीं जा रही है।
2: तुम क्या जानो, मेरा समंदर कब से इन हवाओं को तरस रहा है। तुमने शायद इस समंदर के सीने को कभी नहीं चीरा, कभी नहीं, मेरे गीतों को कभी नहीं सुना। तुम्हें तो चाहिए बस दोस्तों की मंडली। काश मेरा भी कभी ख्याल किया होता।

0: सुबह हो गई। अरे तुम सो रहे हो क्या? अच्छा, मैं स्नान कर लेता हूँ। मगर सुनो, आज हमें कितने दिन हो गए यहाँ आए? हाँ, 15 दिन। और देखो ना, राकेश की कोई चिट्ठी भी नहीं आई। अरे आती तो सतीश नहीं दे जाता? वन्ना, ओ वन्ना,
1: क्या है? सोने दो ना।
0: सुनो, चलो अब लौट चले। राकेश की कोई चिट्ठी भी नहीं आई।
1: आ जाएगी, वो कौन सा बच्चा है?
0: वो तो ठीक है वन्ना, लेकिन पता नहीं क्यों आज उसकी याद बहुत सता रही है। बहुत लापरवाह हो गया है, और लगता कि तुम भी।
1: सुनो,
0: क्या है?
1: कल एलिफेंट जाएंगे।
0: नहीं, दिल्ली जाएंगे।
1: ओह नो, राकेश अकेला थोड़े ही है, और घर जाकर भी क्या वो हमें मिल जाएगा? कल एलिफेंट जाएंगे।
0: ठीक है, मगर मगर न जाने कि वो रंजन ने सुबह आने को कहा था ना।
1: ओके, मैं तैयार हो जाती हूँ। रंजन नहीं आया तो आज हम ही उसके घर चले जाते हैं।
0: ओके, गेट रेडी। अरे अरे भाई, तुम यहाँ लेटे हो और हम तुम्हारी वहां पर राह देख रहे हैं।
2: जरा तबीयत ढीली हो गई थी, रात भर सो नहीं सका।
0: अच्छा, अरे रात भर तो ये भी नहीं सो सकी, मगर है चंगी भली। सुबह एलिफेंटा की गुफाएं देखने की धुन सवार हो गई। तुम्हारे साथ कोई प्रोग्राम तय नहीं था, इसलिए कल का रखा है।
1: मगर तुम्हारे बिना तो हमें कुछ समझ भी नहीं आएगी, तुम होते तो एक्सप्लेन कर देते।
2: ठीक हो गया तो जरूर चलेंगे।
1: यह तुम्हारी देखभाल कौन करेगा?
0: कमाल है। अरे हम जो हैं, आज हम यहीं रह जाते हैं, क्यों भाई?
2: लेकिन यहाँ खाने पीने का कोई सामान तो है ही नहीं।
0: ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं होटल से ले आता हूँ। मेरे ख्याल से तुमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है।
2: नहीं
0: किया। अच्छा मैं आ रहा हूँ, अभी सामान लेके आता हूँ।
1: क्यों, नींद नहीं आई?
2: बस तुम्हारा चित्र आंखों के सामने घूमता रहा। और तुम्हें?
1: मैं उस मल्लाह की तस्वीर बनाती रही जो मेरे समंदर की लहरों से अटकेलियां करता रहा।
2: यानी
1: तुम्हारी। अब बातें कम करो, आराम ज्यादा, समझे?
2: आपका नाम?
1: वंदना।
2: मुझे आज तक आपका नाम ही नहीं पता लगा।
1: अब तो लग गया। कल चलोगे? कहते हैं बहुत अंधेरा होता है गुफा में, हाथ को हाथ सुझाई नहीं पड़ता।
2: हाँ,
1: तो क्या मेरा हाथ? तो क्या मेरा हाथ पहचान सकोगे?
2: वंदना।
0: अरे भाई, मैं तो आज तक भूल ही गया था कि मेरी पत्नी का नाम वंदना है। चलो अच्छा हुआ, देर से सही परिचय तो हो गया। बाय द वे, पेस्ट कर लिया?
2: हाँ कर लिया है।
0: अच्छा, पेस्ट कर लिया तो ब्रेकफास्ट भी हो जाए। आओ फिर बात करेंगे। लिफाफा, देखो तुम ना, ये लिफाफा किसका आया है?
1: राकेश का।
0: राकेश
1: लिखा
0: का?
1: है वो लौट आया है। और लिखा है छुट्टियां बिता कर ही आना, मेरी चिंता मत करना।
0: अरे मगर वो अकेले कैसे रह सकता है? हमें तो कल की गाड़ी से ही जाना होगा। देखो वन्ना, राकेश बच्चा है, उसकी देखभाल हम नहीं करेंगे तो हमें माँ बाप कहलाने का कोई हक नहीं है। कल की तैयारी।

0: मैं तैयार होकर आ गया हूँ।
1: अरे दरवाजे क्यों खुले?
2: वो तुम्हारे घर गए।
1: क्यों? मैं तो यहाँ आने वाला था। देखो ना, मेरी तबीयत ठीक हो गई है। 11 बजे स्टीमर बोट जाता है, उसी से हम एलिफेंटा की गुफाएं देखने जाएंगे।
2: मगर आज हम आगरा जा रहे हैं।
1: वंदना, ये तुम क्या कह रही हो?
2: हाँ रंजन, हम जा रहे हैं। मेरे भीतर जो समंदर ठांठे मार रहा था, शायद शायद वो रेत का था, रेत का समंदर।

अभी आप सुन रहे थे नाटक रेत का समंदर। लेखक थे कृष्ण मानव और प्रस्तुति श्याम गुप्ता की। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर पर।

श्रोताओं अब लीजिए सुनिए भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को नमस्कार। संतोष शेखावत की ओर से आप सभी की चिट्ठियों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। और कार्यक्रम में पहला जो गीत शामिल कर रही हैं वो हमने श्री 420 फिल्म से लिया है। आप सभी की फरमाइश पर आप हैं महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोडके नंदा हनुमान उत्तम स्वराज, राजनगर मधुबनी से हमारे श्रोता हैं कुछ विश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा रंका रानी, मौसम संगीता रुद्र रिद्धि, ऐशबाग पीली कॉलोनी लखनऊ से खत लिख भेजते हैं मुकेश गुप्ता, रानी कुसुम पलक और पंखुरी, राजनगर गांधी चौक से शांति निकेतन से मंजीत गुप्ता, सोनाली सूर्यांशी कोमल मेनका माधवी साध्वी तन्मयराज और गुनगुन, और आप हैं भटिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग अंजू और मोहित। आइए सुने आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

राष्ट्रीय 420 फिल्म से गीत हमने सुना। आवाज़ें थी मन्ना डे और लता मंगेशकर की। शैलेंद्र ने इस गीत को रचा था और इसके लिए तर्ज बनाई थी शंकर जयकिशन ने। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं दर्द फिल्म से गाना। उमा देवी की आवाज़ है, शकील बदायूनी की लिखी हुई रचना है, नौशाद का संगीत है और फरमाइश आप सभी की है। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा विमला, कनेरा मोहल्ला पटियाला से आप हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। आप हैं सबलपुर कांकेर से फागू राय यादव, ज्योति ओजस्वी, इशिका और तेजल। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां।

बरसात की रात फिल्म से गीत हमने सुना, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी, शैलेंद्र के बोल थे शंकर जयकिशन का, माफ़ कीजिए साहिर के बोल थे राजेश रोशन का संगीत था। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, चिराग फिल्म से गीत सुनते हैं, आवाज़ एक बार फिर से रफ़ी साहब की है। इन दोनों गीतों के लिए मिलीजुली फरमाइश इस प्रकार से है, पुणे से आप हैं पंकज वाडोदे, आर्य और आदि, जरुड वरुड से आप हैं बाबा साहेब वाडोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कानिरे, मेहर नगर उमड़खेड़ महाराष्ट्र से आप हैं अभिजीत घवाणकर, सरिता प्रिंस और एकांश, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत घवाणकर, प्रणीता आकाश, नागपुर से शैलेश घवाणकर, वैशाली श्वेता, सुमित ध्वनि और परी, जाभरुन दुर्गा दास से आप हैं गंगाधर जोशी, गजानन संजय, आशीष पृथ्वीराज, साध्वी और गणेश, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष, और ये ख़त मिला है लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से, लिखने वाले श्रोता हैं विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति, अनक्ष और आरू।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रोहतक से, और कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं। आपको सुनवाते हैं तेरे घर के सामने फिल्म से गीत। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, हसरत जयपुरी के बोल हैं, एसडी बर्मन का संगीत है। और इस गीत को सुनवाने के लिए फरमाइशी खत आप सभी ने लिख भेजे। आप हैं चाडुर बुलढाणा महाराष्ट्र से नारायण भाऊ, घर से रक्षा ताई, न्यू मुल्तान नगर नई दिल्ली से चिट्ठी लिख भेजते हैं सुरेंद्र खुराना, सुमित सुरभि, अमित खुराना, राजीव ढींगरा और कन्हैया लाल हैं इनके साथ। शेरगढ़ मलोट पंजाब से बलराज राम कालवा, भोला राम, लक्ष्मी बेबी, कुदरत, मनप्रीत कालवा, मीनाक्षी, हरप्रीत, शिवराजमान। और भिवानी से हमारे श्रोता हैं कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा।

पतंगा फिल्म से गीत हमने सुना, जिसमें स्वर थी मोहम्मद रफ़ी और आशा ताई की। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, श्री रामाचंद्र का संगीत था। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, आइए सुनते हैं चंद्रकांता फिल्म से गाना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। साहिर के बोल हैं, एन दत्ता का संगीत है। इन दोनों गीतों के लिए मिली जुली फरमाइश आपको बताए देते हैं। आप हैं पिरदा कोरासी से रोहित साहू, हरीश कुमार, पुष्पलता, राधा। बागपत यूपी से एहसान अली का खाता में मिला है। दिल्ली से डॉक्टर सोनम और अदीबा। बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, राज अंसारी, आसमा खातून, गुलफ राज भागलपुरी। डुमराव से हमारे श्रोता हैं वली उल्ला अंसारी और आसमानाज। काबुड़प्रिया पथरिया से आप हैं नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रेनिका प्राणिका, उत्कर्ष नेताम। आप हैं राजीम छत्तीसगढ़ से अनिल, अंजुलता, आदित्य, कृष्ण श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा से दीपक, रोशन, वंशीलाल, रेखा श्रीवास्तव, श्वेता देवी, सुरुचि, दिशा और लंबी श्रीवास्तव। केलंगा से हमारे श्रोता हैं सुंदरपाल कौशिक, अभी, निशु, देबू, परी, पीहू और पार्की कौशिक। और ये खत हमें मिला है नया पारा भिरई से। लिखने वाले हैं बसंत सूर्यवंशी, सरोज ईश्वरराज, चंद्रकांत, प्राची, टीयूषी, सूर्यवंशी।

कटी पतंग जी हाँ, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत हमने मुकेश की आवाज़ में सुना। आनंद बख्शी ने इस गीत को रचा था और इसके लिए तर्ज बनाई थी आरडी बर्मन ने। ये गीत हमने सुनवाया आप सभी की फरमाइश पर। आप हैं सीसर गांव से नजीत कौर, जसबीर कौर, हसनप्रीत कौर मान, रघुनाथपुरा से आप हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हेना, हर्षित खुशी गोस्वामी। ये श्रोता हैं वडाली देशमुख महाराष्ट्र से, राजेश खोबर खेड़े, शिव सागर, इंदिरा बाई, सुनैना खोबर खेड़े, तनुजा। खांडवी जलगांव से आप हैं राम थाड़े, दीपाली स्वराज थाड़े। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं दो बदन फिल्म से गीत। रफ़ी साहब की आवाज़ है, शकील बदायूनी ने इस गीत को रचा, रवि ने संगीत दिया और पसंद आपसे भी की। मलोट पंजाब से आप हैं छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलजीत, गगनदीप और रौनक देव कौर। खंडवा मध्य प्रदेश से चिट्ठी लिख भेजते हैं विजय मोहनिया, कविता, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, अजय, अनाया, सपना, शिवी, सलोनी। महोबा बुंदेलखंड यूपी से खत लिख भेजते हैं नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न और गौरव। और आप हैं पत्रोड़ा अनूपगढ़ से मंगल, जनागल, रोशनी, अंकुर, इंदु, सुनील, जनागल।

फिलौना फिल्म से गीत हमने सुना, आवाज़ रफ़ी साहब की थी। आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत था। इस गीत के लिए फरमाइश आपकी थी बेमेतरा छत्तीसगढ़ से पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती भाव्या सुषमा सारथी, नवागढ़ कटई से खतरिक भेजा नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत सीमा शारदा और दामिनी ने। और अब कार्यक्रम में गीत सुनवा रहे हैं किशोरदा की आवाज़ है, अमानुष फिल्म से हमने इसे लिया है। इंदिवर की रचना है, श्यामल मित्रा का संगीत है, पसंद आप सभी की है। आप हैं अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गव्या और सुच्चा पाठक। चकला बाजार सामाना से पप्पू राज खुशदिल, संगीता जिंदल, हसमुख जिंदल और खुशदिल परिवार।

रूप तेरा मस्ताना फिल्म से गीत सुनते हैं। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, आनंद बख्शी के बोल है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। पसंद आप सभी की बेरड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता, हार्दिक करमरकर, प्राची और तनु करमरकर, मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह, लाटी, विवान, लखविंदर, संधू, महावीर संधू, गुरचरण, गरोवर और रमेश मिगलानी।

0: श्रोताओं, वक्त का तगाजा है, कार्यक्रम को यहीं समेटना होगा, तो दीजिए इजाज़त संतोष शेखावत को। नमस्कार, हम आकाशवाणी रोहतक से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 262.47 मीटर पर। रात्रि की 11 बजती हैं। अब समाचार होंगे, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में, रिले कर रहे हैं आकाश।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और

0: आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।